FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 25वीं तिथि। तदनुसार 15 जून सन 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भागीदार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और

0: और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 6:05 हुए हैं। लीजिए विचार बिंदु व सुनिए कोरे कागज की महिमा विषय पर विचार।
3: कागज पर कुछ लिखा हो तो उसे पढ़ा जा सकता है। पढ़ने की महज एक शर्त है कि लिपि की जानकारी आपको होनी चाहिए। लिखने के लिए भी कुछ विचार चाहिए, कुछ भावनाएं चाहिए, कोई ना कोई बात चाहिए। पर जहाँ ये सब न हो वहाँ क्या लिखा जाए? आप समझते होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, पर आप विश्वास करें, आपके जीवन में भी ऐसा कई बार हुआ है जब आप कह उठते हैं, यह अवर्णनीय है, अकथनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे कहा नहीं जा सकता। ऐसी अकथ कथाएं शब्दों के दायरे में आ नहीं सकती। शब्द यहाँ अभिव्यक्ति का सामर्थ्य खो देते हैं। जिस चकाचौन के समक्ष शब्द गूंगे हो जाते हैं, अक्षर असमर्थ हो जाते हैं, उसके संबंध में कागज पर क्या लिखा जाए? कागज कोरा ही रह जाएगा। उसका कोरा रहना ही स्वाभाविक है। बिहारी की नायिका अपनी सखी से कहती है, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही है

0: सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात। एक नायिका कृष्ण के पास जा रही है। उससे उसकी सखी कहती है, तुम कृष्ण के पास जा रही हो, इच्छा तो थी कि तुम्हें कुछ लिख कर देती, पर कागज पर लिखते नहीं बनता, कहने में भी लज्जा आती है। जाओ कन्हैया से तुम कुछ कह देना, जो तुम्हारा हृदय कहेगा वही मेरे हृदय की बात होगी। सुना आपने, अनुभूति की तीव्रता पर शब्द कितने असमर्थ हो गए हैं, कागज कोरा का कोरा रह गया है। ऐसे ही जब हम व्यापक सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं, तब उसकी अनुभूति शब्द की पकड़ के बाहर होती है। तभी तो कबीर कहते हैं कि देख के कह कहो, कहो सो को पतियाए, अर्थात मैं देखता हूँ परमात्मा को, पर क्या कहूँ, अगर कहूँगा तो कौन विश्वास करेगा, क्योंकि वे जो कहना चाहते हैं वह शब्दों के परे है। कबीर साहब के सामने शब्दों का ऐसा अकाल बहुधा पड़ता है। भाषा उनकी अनुभूति की व्यापकता को व्यक्त करने में असमर्थ ही रहती है, कागज कोरा का कोरा रह जाता है। एक ऐसी ही घटना महाराष्ट्र के सिद्ध संत निवृत्तिनाथ के जीवन की है। उन्होंने एक दूसरे संत के पास पत्र भेजा। वे संत भी सिद्ध थे। पत्र के रूप में कोरा कागज भेजा गया था। कहते हैं उस संत ने कोरे कागज को पढ़ा, बड़े गौर से पढ़ा, उलट पलट कर पढ़ा, लिखा, कागज तो बस एक ही तरफ पढ़ा जा सकता है, पर कोरे कागज को चाहे आप जिस तरफ से भी पढ़िए। उस पत्र में न शब्द था, न अक्षर था, न रेखाएं थीं, केवल एक अजीब खालीपन था। कोई सामान्य व्यक्ति यदि उसे पढ़ते हुए देखता तो यही समझता कि इस पत्र को भेजने वाला पागल और इसे पढ़ने वाला उससे भी बड़ा पागल है। शायद वो ये नहीं समझ पाता कि जैसे इस जगत के कण कण में परमात्मा है किंतु वो दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ही इस कागज के खालीपन में भी एक उपलब्धि है जो दिखाई नहीं पड़ रही है। उस संत ने निवृत्तिनाथ का कागज पढ़ लिया और विह्वल हो उठा, परम मगन हो बोल पड़ा कि निवृत्तिनाथ जी बड़े भाग्यशाली हैं, उन्होंने पा लिया, वह सब पा लिया जिसकी अनुभूति कागज पर लिखी नहीं जा सकती, जिसकी उपलब्धि कागज वहन नहीं कर सकता। वो खाली ही रह जाएगा, एकदम कोरा का कोरा, पर इस कोरे कागज की महिमा अपार है।
1: विचार बिंदु में अभी आपने कोरे कागज की महिमा विषय पर विचार सुने, और लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

सूर्य लालिमा संग उदय नव प्रभात का झंकृत हो रहे स्वर भक्ति के नमन ईश चरणों में आनंदित हो रहा हृदय सुन भक्ति गीत आराधना के नित नव ऊर्जा भरे आकाशवाणी अल्मोड़ा प्रातः को उमंग से भरे प्रभु अर्चन की स्वर मुखरित करते हुए अपने हर श्रोताजन को हर्ष पूरित शुभकामनाएं देते हैं। आकाशवाणी अल्मोड़ा के 41वें स्थापना दिवस के स्तुति के रंग आराधना के संग भरते चलें, आस्था विश्वास आशा की ज्योत जलाते चलें, हृदय भक्ति के भाव

आइए अब सुनते हैं एक राम भजन, स्वर है हरिओम शरण का। निशा पूर्ण करी यात्रा, पक्षी गुंजन विहान प्रात का। लालिमा लिए रवि आगमन, जिह्वा भजे नाम जगदीश का। प्रकृति के सागर, सागर के मोती, मोती के साय में कृपा निधान श्री राम हैं। प्रतिबिंब हैं रघुनंदन हर प्राण का।

आइए आराधना में सुनते हैं एक और राम भजन। स्वर है शर्मा बंधु का। राम बिना जीवन की आस नहीं, नहीं कोई अर्थ रहे। जीवन मार्ग जब सूना हो जाए, लगे धैर्य की डोर टूटने। अंधकार के गहरे क्षण हो जाए, निराशा चहु ओर लगे छाने। राम नाम सुमिरन दीपक हो जाए, भीतर स्वर उजाले का लगे चमकने।

तुम सृष्टि के आधार, जीवन की मधुर पुकार, करुणा प्रेम का संसार, तेरा नाम जीवन सार, महिमा तेरी अपरंपार, रखते सदा कृपा अपार। आइए अब सुनते हैं अगली भक्ति रचना अनूप जलोटा की गाई।

आइए अब आराधना का समापन करते हैं एक राम भजन से। स्वर दे रही हैं अनुराधा पोडवाल। राम नाम है अमृत धारा, करता जीवन को साकारा। राम नाम का जाप निराला, भक्त को मिलता सहारा। राम नाम है शक्ति अपारा, बनी हृदय श्रद्धा का उचियारा।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 6:40 हुए हैं। आइए अब करते हैं आज की बात। आज की बात के साथ मैं माधुरी केड़ा सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, 15 जून की ये सुबह फिर दिलों में ही कुछ मधुर यादों को ताजा कर गया। जब हर घर में रेडियो पर ट्यून किया गया मीडियम वेव 300.3 मीटर अर्थात 999 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है और अल्मोड़ा की खूबसूरत फिजाओं में गूंजा आकाशवाणी अल्मोड़ा के उद्घोषक का मधुर स्वर। आज के दिन यानी कि 15 जून को 1986 में तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री विट्ठल नरहर गाडगिल

भारत सरकार के कर कमलों द्वारा आकाशवाणी अल्मोड़ा का उद्घाटन हुआ। हर दिल अजीज बनकर हम चले कई रंगों का कारवां लेकर, हर राह को फूलों से सजाया श्रोताओं का प्यार लेकर। आज दौरे मोबाइल है हर हाथ में सजा, आकाशवाणी अल्मोड़ा है और क्यों ना हो FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप जो है। जीना किसे कहते हैं, सच कहें तो यही तो बतलाता है हमारा विचार बिंदु। प्रभु वंदन से प्रफुल्लित होता मन आराधना में, पुरुषोत्तम प्रभु राम की महिमा गान करता श्री रामचरितमानस। लोक संस्कृति की पहचान हमारा लोक मंजरी, शैल स्वर, उत्तराखंड के लोकगीत और लोक सुर। ग्रामीण जीवन को बेहतर और आसान बनाता, विकसित करता खेती की बातें उत्तरायण किसान वाणी और ऐपण, दुनिया जहान की जानकारियां और साथ में मनोरंजन का ख्याल करता युववाणी और घर संसार कार्यक्रम, साथ ही जानकारियों की विविध रंगों से सजता विविधा। कहां पीछे रहता हमारा कुमावनी और हिंदी कार्यक्रम। हर दिन का इतिहास बताता, ज्ञान का विस्तार कराता आज की बात। बच्चों की मीठी बोली में बाल वाटिका हर रविवार सजता, पूरे दिन साथ निभाता गीत निर्झर सुरबहार मेरी पसंद, सैनिकों के लिए एक ही फनकार सदाबहार फिल्मी गीत इंद्रधनुष, आपके अनुरोध पर सबरंग सुगम संगीत सबरस और महफिल। श्रोताओं, हर वर्ष 15 जून विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे पहली बार वर्ष 2007 में मनाया गया। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद और विंड यूरोप द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। श्रोताओं, जरा कल्पना करिए, अगर कभी हमें बिना हवा के रहना पड़े तो क्या हाल होगा, हम सब कैसे सांस लेंगे, हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे कैसे लहराएंगे। इसमें दो राय नहीं कि बिन हवा जीवन संभव नहीं, इसीलिए हवा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व पवन दिवस की शुरुआत की गई। इस दिवस को भारत समेत दुनिया के 75 देशों में मनाया जाता है। ये दिवस पवन ऊर्जा, उसकी शक्ति और हमारी ऊर्जा प्रणालियों को फिर से आकार देने, हमारी अर्थव्यवस्थाओं को डिकार्बोनाइज करने और विश्व में नौकरियों और विकास को बढ़ावा देने की संभावनाओं को तलाशने का दिन है। इस दिन लोगों को पवन ऊर्जा की शक्ति और इसके द्वारा खपत के क्षेत्र में दुनिया को बदलने की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। आज 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, ये दिन जून 2006 में अस्तित्व में आया, जब 15 जून को बड़ों के लिए एक विशेष दिन घोषित किया गया। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में वृद्ध लोगों के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर देना है। ये एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जो न केवल वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि उनके अधिकारों को भी कम करता है, साथ ही बड़ों के शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय शोषण की समस्या पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करना है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2026 की थीम है जागरूकता से परे, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम को कारगर बनाना। श्रोताओं, कैंची नैनीताल भुवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में से एक बाबा नेब करौली महाराज जी की तपोस्थली माना जाता है। आज यानी कि 15 जून कैंची धाम का वार्षिक समारोह मनाया जाता है। आज भी श्रद्धालु बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। नेम करौली बाबा का जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश है। दुनिया भर में बाबा के 108 आश्रम है, लेकिन मान्यता है कि कैंची धाम उनका सबसे प्रमुख और प्रिय स्थान है। यही कारण है कि साल भर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। ये स्थान आध्यात्मिक शांति और अद्भुत ऊर्जा के लिए जाना जाता है। ये थी आज की बात और आइए अब सुनते हैं देशकांत।

अभी आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। विविधा के एक नए रंग के साथ मैं माधुरी कैड़ा, सभी श्रोताओं को मेरा स्नेही अभिवादन। दोस्तों, 15 जून का ये दिन बहुत खास अहमियत रखता है हमारे और हमारे श्रोताओं के लिए। आखिर क्या खासियत है आज के दिन की, आपके साथ साझा करती हूँ आज की विविधा में। श्रोताओं, आज की तारीख यानी कि 15 जून का दिन और सन था 1986, जब अल्मोड़ा नगर की खूबसूरत वादियों में एक आकर्षक आवाज और अंदाज के साथ गूंजा था मीडियम वेव 300.3 मीटर यानी 999 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। और ये आवाज थी पूर्व सहायक केंद्र निदेशक श्री मनोहर सिंह ब्रजवाल जी की, जो स्थानीय संस्कृति, साहित्य और कृषि से जुड़े कार्यक्रमों के संचालन और प्रसारण में एक प्रमुख हस्ती रहे। दोस्तों, इस केंद्र की स्थापना की तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री V.N. गडगिल ने। इस वक्त जब मैं आपके साथ उस दिन की बात कर रही हूँ, तो अतीत का वो सुनहरा दौर मेरी आंखों के सामने आ रहा है, जब प्रत्येक कार्यक्रम का हमें बेसब्री से इंतजार रहता था और परिवार के सभी सदस्य उन्हें बड़े चाव से सुनते थे। हर दिन अपने क्षेत्र से लेकर दुनिया भर की जानकारियां हम तक बखूबी पहुंचती थी। वो एक अलग बात है कि आकाशवाणी अल्मोड़ा अपने सतत प्रयासों से आज

भी अपने श्रोताओं के लिए कोई कमी नहीं रख रहा है। साथ ही जहां पहले इसकी क्षमता 1 किलोवाट के मीडियम वेव पर ही सीमित थी, लेकिन आज आप इसके कार्यक्रम एफएम चैनल में 100.8 मेगाहर्ट्ज और आकाशवाणी ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आसानी से सुन पा रहे हैं। लाखों की संख्या में आते खत इसकी लोकप्रियता को बयां करते हैं। वर्तमान के डिजिटल युग में जब चिट्ठी पोस्ट कार्ड बीते दिनों की बातें हो गई हैं, ऐसे में दुनिया भर से आते खत हमें अतीत से आज भी जोड़े हुए हैं। हालांकि व्हाट्सएप मैसेजेस भी बहुतायत से हम तक पहुंचते हैं। हर दिन वंदे मातरम से लेकर जय हिंद तक का ये सफर हमारे श्रोताओं से गहराई से जुड़ा है। आज जब जानकारियों और मनोरंजन के अनेक साधन सरलता से हमारे पास उपलब्ध हैं, ऐसे में आकाशवाणी की पहचान का कायम रहना वास्तव में गर्व का विषय है। दोस्तों, आप किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद जब हम तक उसकी प्रतिक्रिया पहुंचाते हैं, तो यकीन मानिए दिल से आपका आभार होता है कि कितनी तन्मयता से आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। इससे कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार की गुंजाइश भी रहती है और प्रत्येक प्रेजेंटर के अंदर बढ़िया से बढ़िया प्रस्तुति का जज्बा भी बढ़ जाता है। आकाशवाणी अल्मोड़ा के अस्तित्व में आते ही सभी श्रोताओं को कुमाऊनी संस्कृति परंपरा जीवन शैली की जानकारी घर बैठे मिलने लगी। साथ ही लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा गायन के जरिए श्रोताओं तक पहुंचाने का सुनहरा मौका मिलने लगा। अपने विचारों को वार्ता, परिचर्चा, कविताओं, कहानियों, भेंटवार्ता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का एक खूबसूरत रास्ता बना आकाशवाणी अल्मोड़ा। रेडियो को रचनात्मकता का पर्याय कहा जाए तो गलत ना होगा। साथ ही वो रेडियो ही तो है जो बोलियों को बचाने का काम करता है। दोस्तों, अब देखिए, वो आकाशवाणी अल्मोड़ा ही तो है जिसके पास कुमाऊनी लोकगीतों का अच्छा खासा खजाना है। तभी तो आकाशवाणी अल्मोड़ा में सांस्कृतिक नगरी को अपनी आवाज कहने का मंच मिल गया था 15 जून 1986 को। आगे भी आप हमारा साथ यूं ही निभाते रहें एक अच्छे मित्र के रूप में, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। हमारा हमारे श्रोताओं से बंधन अटूट रहे, साल दर साल हम अतीत के साथ भविष्य को जोड़ते रहें, इसी उम्मीद के साथ आज की विविधा से माधुरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 6:55 होने वाले हैं। आप कुछ ही पल हमें समाचार आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 250वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेऽस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखर सम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिक संकटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतन प्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृत चर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागम् अगृह्णन् फ्रांस देशस्य नीस नगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फ्रांसदेशस्य यात्रायाः परिणामे विशेषसूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेशसचिवः विक्रममिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30,000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिमबुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य गौतमबुद्धनगरस्य जेवरनगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इंडिगो एयरलाइन्स संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानम् आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरुनगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानम् अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊनगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270,000 यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊनगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्ववायुदिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायुपरिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जूनमासस्य 15 अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवाराज्ये 26,000 वैश्विकवायुदिवससम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानां ICC 20x20 विश्वचषकक्रीडायां बर्मिंघम नगरस्य एज्वेस्टन नगरे ग्रूपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तानदलं 64 पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता

0: और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन

0: तीन दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः की 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और 9:30 पर पब्लिक स्पीक। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं प्रातः 10:35 पर, दोपहर 1:05 पर, सायं 6:30 पर। गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सायं 6:50 पर। कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सायं 7:30 पर। ये सभी समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से 125वां प्रसंग। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 8:30। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई पर बजाया राग मियां की त्योड़ी। महिलाएं अपना कार्यक्रम घर संसार सुनेंगी दोपहर 12:30 पर। इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा करेंगे आकाशवाणी अल्मोड़ा स्थापना दिवस विषय पर और साथ ही बुजुर्ग का हो सम्मान विषय पर और उत्तराखंड की पिरूल वुमन श्रीमती मंजू आर शाह सी संगीता तिलारा की बातचीत आपको सुनवाएंगे। दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1306वीं कड़ी। खेती की बातें कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 2:30। इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा सुश्री पूजा ओली की जानकारी पर्वतीय क्षेत्रों में भट्ट की वैज्ञानिक खेती। हमारे युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी सुनते हैं सायं 6:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा युवा और रेडियो। साथ ही आपको सुनवाएंगे वार्ता युवाओं का साथी आकाशवाणी और वार्ताकार होंगी हिमानी रौतेला। ग्रामीण श्रोताओं के लिए उत्तरायण कार्यक्रम के प्रसारण का समय रहेगा सायं 5:45। इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा होगी विश्व बुजुर्ग दुराचार जागरूकता दिवस विषय पर और साथ ही योग बढ़ती उम्र के साथ कैसे स्वस्थ रहें का विज्ञान विषय पर। अनुभव संस्कृति और परंपरा के पुजारी सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारी इस विषय पर शशि शेखर जोशी की वार्ता भी आपको सुनवाएंगे।

ग्राम जगत कार्यक्रम का समय रहेगा साय 7 बजे। इस कार्यक्रम में आज की बातें के अंतर्गत आपसे बातें करेंगे वर्षा ऋतु में बागवानी प्रबंधन विषय पर, साथ ही चर्चा होगी जैविक खादों का उपयोग और लाभ विषय पर, और सरकार के 12 वर्ष फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता विषयों पर क्षेत्र संकलित बातचीत आपको सुनवाएंगे। कुमावनी लोकगीत आप सुनेंगे लोकमंजरी कार्यक्रम में प्रातः 7:30 पर, और स्वर कार्यक्रम में 5:05 पर। हमारी आज की गायिका होंगी शैलजा मसीह। उत्तराखंड के लोकगीतों का समय रहेगा दोपहर 2 बजे। मिले जुले गीतों और गजलों के कार्यक्रम सब रंग का आनंद लीजिएगा प्रातः 10:05 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर और रात्रि 10 बजे। सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर में प्रातः 9:05 पर। सुरबार कार्यक्रम के तहत प्रातः 10:35 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म और हमारी आज की फिल्म होगी संगीत। सैनिकों के लिए का समय रहेगा प्रातः 11 बजे। दोपहर 12 बजे आप सुनते हैं अपनी पसंद के चुनिंदा फिल्मी गीतों के साथ हमको मेरी पसंद कार्यक्रम में। एक ही फनकार का समय रहेगा दोपहर 2:45। सदाबहार फिल्मी गीतों का समय रहेगा अपराह्न 3 बजे। फिल्म संगीत 7:40 पर और रात्रि 10:30 पर। इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत फिल्म संगीत पेश करेंगे रात्रि 9:15 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगीं। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

ये था श्री रामचरितमानस से 125वां प्रसंग। गायक कलाकार थे वाणी जयराम और उत्तरा केलकर। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला। पहले मुख्य समाचार। अधिक मास की सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार सहित प्रदेश के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्थाओं के लिए पुलिस एवं प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों से राज्य के विकास के लिए सुझाव देने का आह्वान किया। और नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंची धाम में बाबा नीम करौरी महाराज के स्थापना दिवस पर आज मेले का आयोजन। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात सहित अन्य सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए। और अब समाचार विस्तार से। आज अधिक मास की सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार सहित प्रदेश के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस अवसर पर गंगा स्नान, दान पुण्य और पितरों के तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। सुबह से ही श्रद्धालु हर की पैड़ी समेत विभिन्न घाटों पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रशासन ने बताया कि श्रद्धालुओं की आवाजाही, यातायात संचालन और सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नियंत्रण कक्ष से घाटों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की लगातार निगरानी की जा रही है। गंगा घाटों पर जल पुलिस और गोताखोरों की विशेष टीमें भी तैनात हैं। इसके अलावा विभिन्न मार्गों पर यातायात डायवर्जन, पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग और भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। सभी आपातकालीन सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी

0: और तेजी से बढ़ रहे नवाचार पारितंत्र को दर्शाती है।
1: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण और विकास केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। उन्होंने कल उधम सिंह नगर जिले के खटीमा के बंडिया में भगवान शंकर और हनुमान जी की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराएं तथा धार्मिक आस्थाएं राज्य की पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा विकास के लिए निरंतर कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी समृद्ध विरासत से जुड़ी रहें। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय 416 पदों की पुनर्परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण और निर्विवाद रूप से संपन्न हुई। परीक्षा में 83,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया और कुल उपस्थिति 72.62% दर्ज की गई। आयोग के अध्यक्ष GS मार्तोलिया ने बताया कि ये परीक्षा पूर्व में निरस्त की गई थी, इसलिए इसकी शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखना आयोग के लिए बड़ी चुनौती थी। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे, जैमर और AI आधारित कैमरों की मदद से कड़ी निगरानी रखी गई। परीक्षा की व्यवस्थाओं पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी लगातार नजर बनाए रखी। पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी ने विद्यार्थियों के लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के युवाओं को कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में करियर बनाने का अवसर मिलेगा। संस्थान के निदेशक डॉ BK बंगा ने बताया कि इस पाठ्यक्रम में विज्ञान वर्ग के साथ साथ कला वर्ग के विद्यार्थी भी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद प्रवेश ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि BCA पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को रोजगार परक तकनीकी कौशल प्रदान करेगा और उच्च शिक्षा, उद्यमिता और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी नए अवसर उपलब्ध कराएगा।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल खटीमा में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग से उत्तराखंड के विकास में अपने अनुभव, ज्ञान और सुझावों के माध्यम से सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों से सकारात्मक सुझाव प्राप्त कर नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध वर्ग राष्ट्र और समाज को दिशा देने वाली महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसके विचार आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध जन समाज के ओपिनियन मेकर्स होते हैं और उनके सुझाव राज्य के विकास की मजबूत आधारशिला बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए समाज के सभी वर्गों की सहभागिता आवश्यक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में देश ने सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। नैनीताल जिले में स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम में बाबा नीम करौरी महाराज के स्थापना दिवस के अवसर पर आज मेले का आयोजन किया गया है। मेले में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मेले को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इससे पहले कल नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ने पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य, यातायात तथा अन्य यात्री सुविधाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कैंची धाम आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। वहीं कुमाऊं परिक्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक

0: निवेदिता कुकरेती ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मंदिर परिसर, पार्किंग स्थलों, बैरियरों और प्रमुख मार्गों पर बम निरोधक दस्ते द्वारा नियमित जांच कराने तथा स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय रखने के निर्देश दिए। मेले के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए डायवर्जन प्लान जारी किया है। संवेदनशील और संकरी मार्गों पर भारी वाहनों के संचालन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। मेला क्षेत्र में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए इलाकों को 4 सुपर जोन और 14 जोन में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इससे NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे होगी। नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की द्वितीय चीफ जस्टिस कप गोल्फ टूर्नामेंट का समापन कल पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। नैनीताल स्थित लोक भवन गोल्फ कोर्स में आयोजित इस प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने ट्रॉफी और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। सहसपुर में युवक की हत्या के मामले में बढ़े तनाव की खबर आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। दैनिक जागरण लिखता है, भीड़ ने आरोपित का घर जलाया, प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। खटीमा में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक में शामिल करते हुए लिखा है, प्रबुद्ध वर्ग राष्ट्र और समाज की दिशा को दिशा देने वाली शक्ति। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अधिक मास की सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार सहित प्रदेश के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्थाओं के लिए पुलिस एवं प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों से राज्य के विकास के लिए सुझाव देने का आह्वान किया। और नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंची धाम में बाबा नीब करौरी महाराज के स्थापना दिवस पर आज मेले का आयोजन। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा यातायात सहित अन्य सुविधाओं के व्यापक प्रबंध किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। हमारे आज की गायिका हैं शैलजा मसीह है।

0: लोकमंजरी कार्यक्रम में इस समय आप शैलजा मसीह के गाए कुमावनी लोकगीत सुन रहे हैं।
1: सुनील, घर तो चमक रहा है भाई।
2: नई नई लाइटें।
3: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।
1: मतलब सुरक्षा।

0: गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदें बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।

शैलजा मसीह के गाए इसी कुमावनी लोकगीत के साथ लोकमंजरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल

0: होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये

0: अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
0: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका

0: विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के DNA में शामिल, वीर अर्जुन ने PM के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार, अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है, आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार, पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा, विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है, एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा, वे खुद संगठन को परखें।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
6: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while US West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Komudi Parekh for Akashwani News, Delhi.
5: Leaders across the world have welcomed the peace deal announced between the United States and Iran, describing it as a major diplomatic breakthrough that could help restore stability in West Asia. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said that this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said that he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The visit by Mr. Modi follows President Draupadi Murmu's state visit to Slovakia in April last year and Slovak President Peter Pellegrini's visit to India for the AI Impact Summit in February this year. The visit reaffirms India's commitment towards strengthening its bilateral relationship with Slovakia in various sectors, including trade, investment, and automobile and railway manufacturing. Our correspondent reports that upon his arrival in Bratislava, Mr. Modi was given a warm welcome and accorded a traditional Slovak hospitality.
7: Prime Minister Narendra Modi was received by Slovak Foreign Minister Jure Blanar upon his arrival in Bratislava last night. Members of the Indian diaspora gathered in Bratislava welcomed him with slogans upon his arrival. Slovak musicians of the Lutnica ensemble performed Vande Mataram on the Prime Minister's arrival. Sri Narendra Modi will be accorded a ceremonial welcome today in Bratislava. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava.
5: The 52nd G7 summit will begin at Avignon in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow. His participation in the G7 summit underscores India's important role in global geopolitics. India is important for the G7 as a premier economic powerhouse, a diplomatic bridge to the developing world, and a strategic anchor in the Indo-Pacific. A report from our correspondent.
8: As the summit gets underway, reducing global imbalances has emerged as the central priority of the host nation's G7 presidency. According to the official summit framework, leaders will deliberate on geopolitical challenges, international peace and security, balanced economic growth, and key global crises during the closed-door sessions beginning today. Prime Minister Narendra Modi will participate in the outreach sessions tomorrow. India's participation in the summit will provide an opportunity to highlight the priorities and concerns of the Global South while contributing to deliberations on key global issues. Ankit Kumar, Akashvani News, Avignon, France.
5: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Commercial flight services from the Noida International Airport, located at Jewar in Gautam Buddh Nagar of Uttar Pradesh, began this morning. Our correspondent has filed this report.
9: Built in Jewar along the Yamuna Expressway Industrial Development Authority region, the airport was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on March 28th this year. The land acquisition for the airport spans around 1,334 hectares, which is nearly 3,300 acres. The airport, which has been developed as a major aviation hub, will have initial passenger handling capacity of 1.2 crore travelers in its first phase. In the future, it is expected to become a global aviation hub with the capacity of 22.5 crore passengers. In its final phase, the airport will have 5 runways, placing it among the largest airports in the world. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Lucknow.
5: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal, Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government for building modern infrastructure with the vision of making India Viksit Bharat by 2047.

अभी आपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और साथियों से शहनाई पर बजाया राग मियां की तोड़ी सुना। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जल डमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के

मिलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन अवसर पर कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्वस्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। विमानन क्षेत्र के विकास का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 के 74 से बढ़कर अब 165 हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम

0: गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। बर्मिंगम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों, कर्नाटक के कुछ भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और दक्षिण छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं गरज के साथ आंधी वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 9:05 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। आपकी संदेशों में छिपा आपका प्यार नजर आता है, गीतों की बेकरारी का एहसास दिलाता है। आप तो बस बन गए कुछ इस तरह हमदम कि हर श्रोता हमें बहुत ही खूब भाता है। आवाज के जहां से हाजिर हूं मैं माधुरी कैड़ा, सभी दोस्तों को आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्थापना दिवस की खूब सारी बधाइयों के साथ मेरा स्नेही अभिवादन। दोस्तों 15 जून 1986 से हम लगातार अपने श्रोताओं के मनोरंजन का ख्याल कर रहे हैं और गीत निर्झर तो है ही खूबसूरत गीतों के साथ मनोरंजन का कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म आम्रपाली से। इस गीत को संवेद स्वर में गाया गया है, गीत शैलेंद्र का है और शंकर जयकिशन ने इसे संगीत दिया है। ये गीत हमने किया है आप सभी के नाम। गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन कविता, संजय ढींगिया, राधा नामदेव, अनिल जैन, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई। शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हनुमान बोटके हैं हिंगोली महाराष्ट्र से और अंबेडकर चौक वाकुडी से उत्तम जमदाडे, स्वराज जमदाडे। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई, भारती देवी। झज्जर हरियाणा से हमारे श्रोता हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हमारे श्रोता दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम शमी, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। हमारे ये सभी श्रोता नाज मंजिल महसूल सीतामणि से और कलेर बिहार से हैं मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन।

लीजिए पेश है बहुत ही खूबसूरत सा गीत बूंद जो बन गई मोती फिल्म से। इस गीत को गाया है मुकेश ने, भरत व्यास ने लिखा है और सतीश भाटिया ने संगीत दिया है। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, भाई जान, भाई राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु बाबा, सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम पंचायत बढ़ीना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा ने। गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारुत राव पांचाल और तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, दानिश आसिफ और जोरान शेख। श्रोताओं, भले ही आज हम संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं और हमारे पास ढेरों मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन रेडियो का अस्तित्व अपनी जगह बरकरार है। ये वो एक ऐसा दोस्त है जो चलते फिरते, काम करते, बातें करते हमसे कई सारी जानकारियां, सूचनाएं और मनोरंजन साझा करता है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गांव जाखूत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार खटक और दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से हैं रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी। छत्तीसगढ़ महासमुंद से कलीम आसमा डोम, सलीम आसमा, यूसुफ आसमा, आसमा। चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्लू वली, सोनम वली जाटव। इसी गीत की फरमाइश संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लव, कुश और नामदेव परिवार के सभी सदस्यों की मेन मार्केट ग्राम पोस्ट सुरई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से है। मोर टक्का माफी जिला खंडवासी किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति, शुभम, देवी, किशन, भावना, मनमानस पटेल और कनिका पटेल, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश, ये हैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबिर राही, मेहरा जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं। हयात कॉलोनी अटरिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकलम और नफीसा प्रवीण, लल्लन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पराशर, बेबी आराध्या और मीरा सिन्हा हैं फुटानी चौक नरहन स्ट्रीट से। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं यशुदास का गाया चिचूर फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। स्नेह की डोर से बधा हर श्रोता का संग, बातों ही बातों में हर कार्यक्रम में चढ़ता है पक्का रंग। आपसे बनता है वजूद हमारा, तभी खूबसूरत बनता है हर कार्यक्रम हमारा।

रेडियो मतलब आसान सी भाषा में एक दोस्त की तरह अपनेपन के भाव से श्रोताओं के साथ बात करने की विधा। इसीलिए तो दोस्तों ये एक घंटा कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता, आपसे बातें करने, आपकी पसंदीदा गीतों को पेश करने में, और जो आनंद हमें आता है उसकी कोई तुलना नहीं। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया अभिमान फिल्म का गीत। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोलों की तर्ज बनाई है SD बर्मन ने, और इस गीत को सुनवाने के लिए

में ढेरों व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का इसी गीत को सुनना चाह है। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी चौक कलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का। इसी गीत को पसंद किया है नारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी और इनके बहुत सारे साथियों ने। खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलूफर फातिमा, हमारे ये श्रोता हैं चंडीगढ़ से। लाला बाजार अल्मोड़ा उत्तराखंड से हैं बाबा फरहान खुशबू, संजू सामिया, आफिया, मुमताज़ अमान, माही, नीलोफर, शन्नो और शब्बो। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशबद सिंह राहुल और कस्बा अग्रवाल मंडी टटेरी बागपत यूपी से हैं आसिफ अली खान, मोमिन नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान और सारिक अली खान। तो लीजिए पेश है आपकी पसंद, आपकी नजर।

अपनी फरमाइश की फिल्मी गीत आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम है गीत निर्झर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा का गाया रोजा फिल्म का गीत। गीत पीके मिश्रा का है और संगीत एआर रहमान का। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी, मीनाकारी पुंजराज, आरती आकर्षण जयश्री और श्री गणेश अविका आर्ट। श्री रामपुर से हैं श्री डी अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार। कोवती वस्ती पुनावाले से अजय सोनवनी, करिश्मा सोनवनी, अविका और साइशा सोनवनी। चित्तलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना, सर्वेश इंगले, अधीरा, राजवी और इनके परिवार के सभी लोग। दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सर साबरी, मुजक्कर, जरीफ अंसारी और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर। अमरावती से सिद्धार्थ गोंडानी, अर्चना ताई गोंडानी, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडानी। सुपाई साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा, कुमारी रेशमा, दीपाली और देवेंजी। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और सीटी छाबड़ा की। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और मोर टक्का माफी। जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल और इनके बहुत सारे साथी संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत मक्कड़ हैं, कमल साहनी, पिंगावाला, चौक गोरिया, जालंधर से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंदेश गौहर, सुनील पाठक हैं, ग्राम लोहिड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड यूपी से। और नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश यादव, अनिता यादव, आरती प्रसाद, सोनल, बेबी सिया यादव। जालना शहर से सोमनाथ यादव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता यादव। दादाबाऊ रोड गिरिडाह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जय। दोस्तों, रेडियो कार्यक्रमों में पारदर्शिता दिखाई देती है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, सद्भाव को बिखेरता, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का अथक प्रयास, यही सब है इसके होने की निशानी। रेडियो कार्यक्रमों को एक श्रोता प्रेरणा स्रोत स्वरूप लेता है और इसके अनुरूप अपने व्यक्तित्व में सुधार भी लाता है। यकीनन बहुत ही प्रभावशाली होता है ये रेडियो। तो आइए रेडियो में अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत हिमालय की गोद में फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत को पसंद किया है वारसी क्लब सिंथौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी इमरान शेख रेहान शेख ने, करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया शोएब खान ने और भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से हैं।

भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान और अफसर अली से नगमा नाज मंसूरी, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमारे श्रोता तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, शेरवानी स्कूलगंज डिंडवारा उत्तर प्रदेश से, आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, और इसी गीत की फरमाइश आई है ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, उदय बान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनके परिवार के सभी लोग, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी परांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय और मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य बलबीर सिंह है ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, छिंपा, जसवीर और सीता गीता।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का गाया राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। इस गीत को सुनवाने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी ने, मगनपुर झारखंड से हमारे श्रोता हैं अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बेबी निशा और इनके घर के सभी सदस्य, पटेल नगर मालूर से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू, राजनगर कांति निकेतन से कृषेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, माला मिश्रा, विभा मिश्रा, रुद्र गुप्ता, रिद्धि, ऐशबाग लखनऊ से हैं रानी, मुकेश गुप्ता, कुसुम गुप्ता, रूपा इलाहाबादी, रश्मि नीलम गुप्ता, और रेलवे रोड गंजी चंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवर, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम। सहारनपुर से हमारे श्रोता आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। घूंघट रेडियो श्रोता संघ जिला धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री। इसी गीत की फरमाइश आई है मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वानिया इंदिरा कॉटेज तलीता नैनीताल से हैं ये। श्रीधर कस्टे, बेबीताई कस्टे, विनायक देवानंद, शीतल, विक्रम, जयंता, अभिराज और इनके सभी साथी अकोला रोड कंझरा से। सुंदर वाटिका वाष्य महाराष्ट्र से, दुर्गानंद बहादुरी, शीला बहादुरी, प्रज्वल प्रणाली बहादुरी, रेखाताई काकड़े और करता पूर्णा जंक्शन मस्तापुरा से, अनंता भगत, अरुणा, चेतन और सुलोचना भगत, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजाल खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी हैं गंजी डुंडवारा से। तो लीजिए पेश है आपकी पसंद का गीत।

श्रोताओं, अगर कहें कि रेडियो शिक्षा का एक केंद्र भी है तो गलत ना होगा। कविता, कहानी, नाटक, यात्रा वर्णन, रूपक, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों का परिचय, साहित्यकारों की जीवनी और भी बहुत कुछ मिनटों में ही श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 9-10 मिनटों में ही श्रोता के पास प्रचुर जानकारी पहुंच जाती है और वो अपना ज्ञानवर्धन बड़ी आसानी से कर लेता है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं हेमलता का गाया और दुल्हन वही जो पिया मन भाई फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है रविंद्र जैन ने और संगीत भी रविंद्र जैन का है। सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता। मनाली हिमाचल प्रदेश से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई। चंडीगढ़ सिटी से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। ग्राम लसूडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश, चंद्र डांगी। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज, विशाल सपकाल। माल टेकडी अमरावती से प्रशांत।

भक्त ढेकरे, वर्षा ढेकरे और श्रद्धा ढेकरे। इसी गीत की फरमाइश आई है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े की। और आदर्श नगर बठिंडा परमवीर हाउस से हमारे श्रोता हैं इंजीनियर अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर, शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा आनम और मुदस्सिर हुसैन है सब्जी मंडी बुल्ढाणा से, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और इनके परिवार के सभी लोग, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर बदलापुर मुंबई से, प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, लाडला टुक टुक गवाणकर और आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से, वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी और छत्रपति शिवाजीनगर खंडवा से, राजेश सेन, सुरेखा सेन, प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करम, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत हैं भूचो कैंजिया बठिंडा पंजाब से, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारी, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और ये हमारे ये श्रोता व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से हैं, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कमल, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू

एक सहज सरल खूबसूरत जरिया है मुलाकातों का। आवाज के इस जहां में आवाज ही मीत है। शिक्षा, मनोरंजन और सूचना का दामन पकड़े रहे, आवाज आती रही और दिल जुड़ते रहे। इसी के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्झर से फिलहाल माधुरी केड़ा को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियोन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राम मोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने

के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अलग सोच और अलग सृजनात्मक दृष्टिकोण होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विविधता ही नई संभावनाओं को जन्म देती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम

0: आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का यह अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः की 10:05 हुए हैं। लीजिए पेश है मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं जगजीत सिंह के गाए हस्ती के कलाम से।

0: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिले जुले गीत और गजलों का कार्यक्रम सबरंग।
1: बिना ISI के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
2: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
1: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
2: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
1: झगड़ा मिटाएं,
2: विश्वास जगाएं।

अभी आपने सोनू निगम से फैज अनवर का लिखा ये गीत सुना और आइए अब कार्यक्रम का समापन करते हैं। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई गजल से, शायर हैं मोहम्मद उस्मान आरिफ नक्शबंदी।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई मोहम्मद उस्मान आरिफ रंग नक्शबंदी की इसी गजल के साथ सब रंग कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:30 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप रागिनी बिंजोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकल्प पूर्ण होने पर खटीमा पूर्णागिरि मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया और मंदिर परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि स्वच्छ और स्वस्थ उत्तराखंड के निर्माण के लिए सभी नागरिक घर मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लें और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाकर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जन भागीदारी से ही एक जन आंदोलन का रूप ले सकते हैं। कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले में स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम में कपाट खुलने के साथ ही मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया है। मेले के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य, यातायात समेत अन्य यात्री सुविधाओं का विशेष प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि कैंची धाम आने वाले यात्रियों की यात्रा सुगम करवाना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं कुमाऊं मंडल की पुलिस महानिरीक्षक निवेदिता कुकरेती यातायात व सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही हैं। मंदिर परिसर, पार्किंग स्थलों, बैरियर और प्रमुख मार्गों पर बम निरोधक दस्ता BDS लगातार चेकिंग भी कर रहा है। HNB उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित 9 जिलों में 94% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे ने बताया कि विभिन्न कोर्सों के लिए 8,257 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर विजय जुयाल ने बताया कि परीक्षा देहरादून, हरिद्वार, नई टिहरी, श्रीनगर, गढ़वाल, गोपेश्वर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में आयोजित की गई। आज ज्येष्ठ अधिक मास की अमावस्या है। इस दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान, दान व पितरों के तर्पण का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या पर्व पर स्नान के लिए हरिद्वार समेत सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा घाटों का निरीक्षण किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि श्रद्धालुओं की आवाजाही, वाहनों के संचालन और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नियंत्रण कक्ष से घाटों पर लगे सभी CCTV कैमरों पर लगातार नजर रखी गई है। घाटों पर जल पुलिस की विशेष टीम के गोताखोर भी मौजूद हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी ने विद्यार्थियों के लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के युवाओं को कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने का अवसर मिलेगा। संस्थान के निदेशक डॉ. BK बंगा ने बताया कि इस पाठ्यक्रम में विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के साथ ही कला वर्ग छात्र भी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद प्रवेश ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि BCA पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को रोजगार परक कौशल प्रदान करने के साथ साथ उच्च शिक्षा और स्टार्टअप के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neetnta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे होगी। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए।

0: उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:35 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुरबहार।

आवाज बनी तो भावों के उतार चढ़ाव आ गए, यहीं से सुर बनी, सुर के संयोग से बोल बन गए, फिर राग की डोरी में बंधकर बोल गीत बनकर संगीत हो गए। संगीत में सफर के सुरबहार में आज पेश है एक ही फिल्म, संगीत की सुरमई बातों और गीतों के साथ आपके साथ होंगी मैं माधुरी गैड़ा। सभी दोस्तों को मेरा सहेल अभिवादन। दोस्तों 1992 में संगीत फिल्म उस दौर में कई मधुर गीतों की गवाह बनी, जब हिंदी सिनेमा में पारंपरिक मेलोडी और उभरती हुई पश्चिमी धुनें एक साथ मौजूद थी। इसका संगीत गीतों की मधुरता को वापस लाया, जो 80s के दशक के शोर शराबे वाले संगीत से बिल्कुल अलग था।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, आखिर संगीत फिल्म की कहानी थी क्या? चलिए जानते हैं। फिल्म के हीरो जैकी स्ट्रॉफ सेतो की भूमिका में थे, जो एक किसान लोक गायक है जो अपने टैलेंट को निखारने के लिए मुंबई की राह पकड़ते हैं। जब मैडम यानी कि माधुरी दीक्षित एक दिन उसे एक निर्जन इमारत में बैठकर गाते हुए सुनती हैं, तो इम्प्रेस होकर सेतो को अपने बर्थडे पार्टी में गाने के लिए आमंत्रित करती हैं। लेकिन पार्टी में कुछ को उसका लोक संगीत पसंद नहीं आता है, यहाँ तक कि मैडम का पति भी सेतो को पार्टी में बुलवाने से नाराजगी जाहिर करता है। आगे की कहानी इस मधुर गीत के बाद।

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: दोस्तों, मैडम का सेतो का गीत और उसकी आवाज का बहुत पसंद आना उसके पति को पसंद नहीं था। सो मैडम ने उसकी गायकी के लिए लगातार उसको प्रोत्साहन देना शुरू किया। एक दिन गलती से सेतो एक डांस हॉल में फंस जाता है। वो देखता है कि वहाँ एक खूबसूरत लड़की जो माधुरी दीक्षित ही है, वो फिल्म के मैं दोहरी भूमिका में थी, लोगों के बीच डांस कर रही हैं। ये देखकर सेतो गुस्से में आकर सभी लोगों के साथ मारपीट करता है। बाद में उसे मालूम पड़ता है कि वो लड़की अंधी है और आजीविका के लिए ये काम करती है। तो शर्मिंदा होकर सेतो उस लड़की और उसकी माँ से मित्रता कर लेता है। इस तरह फिल्म की कहानी सकारात्मक मोड़ की तरफ बढ़ती चली जाती है।

0: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ही फिल्म के तहत संगीत फिल्म।
1: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
2: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits.

0: It's up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
1: श्रोताओं, संगीत फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद ने तैयार किया और संतोष आनंद ने गीत लिखे, जो 90s का एक मधुर और भावनात्मक अनुभव है। अनुराधा पौडवाल की आवाज में इसके गीत फिल्म की आत्मा है, जो शास्त्रीय और लोक संगीत का अनूठा मिश्रण पेश करते हैं, जो आज भी दर्शकों के बीच खासा लोकप्रिय है। अनुराधा पौडवाल के साथ पंकज उधास और सुरेश वाटकर की सुरीली आवाजों ने गीतों में चार चांद लगाए हैं। फिल्म का मधुर संगीत दृश्यों को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, जो दर्शकों को फिल्म से जोड़े रखने में मदद करता है। एक नेत्रहीन लड़की के किरदार में माधुरी दीक्षित का अभिनय सशक्त है। जैकी श्रॉफ उनके प्रेमी के रूप में पूरी तरह सफल हैं। फिल्म की कहानी भावनाओं और संगीत के इर्द गिर्द घूमती है, जो दर्शकों को भावुक करती है।

फिल्म का निर्देशन और पटकथा के विश्वनाथ का है। संगीत फिल्म उन लोगों के लिए खासा विकल्प हो सकती है जो पुरानी संगीतमय फिल्में पसंद करते हैं। फिल्म संगीत के इस संगीतमय सफर की मंजिल यहीं तक। अगली बार लेकर आऊंगी फिर एक खूबसूरत फिल्म। अभी के लम्हों में सुरबहार से माधुरी केड़ा को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी, तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का पहला गीत आपने शहीद फिल्म से सुना। इस गीत को आवाजें दी थी मुकेश महेंद्र कपूर और साथियों ने। अब हम आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में साहिल लुधियानवी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया काला पत्थर फिल्म का गीत।

कार्यक्रम में लीजिए पेश है धनवान फिल्म का गीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। गीत लिखा है साहिल उद्यानवी ने और संगीत दिया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में स्वीकार किया मैंने फिल्म का गीत। गीत निदा फाजली का है और संगीत उषा खन्ना का।

अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में जूली फिल्म का गीत सुना। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा था राजेश रोशन ने। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का समापन करते हैं कुर्बानी फिल्म के गीत से। गायक कलाकार हैं कंचन, मनहर और आनंद। बोल इंदिवर के हैं और तर्जमनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: किशोर कुमार के गाए जूली फिल्म के इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों कार्यक्रम संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।
1: और वो ओके सर, वो भी कहते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत।
1: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
2: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
3: Arey wah! पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी?
4: सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
5: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें bis.gov.in पर।
1: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
2: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. Yeah.

पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग ललित अभी आप सुन रहे थे। तबला संगत करता थे ओनिंदो चटर्जी और साथ बांसुरी पर आपका दिया था रूपक कुलकर्णी ने। शास्त्रीय संगीत अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

जी हाँ, मीठी बोलियाँ, प्यारी हमजोलियाँ, जुड़ा है नाता श्रोताओं से हर दिन हर लम्हा। आज मेरी पसंद का जहाँ है जगमगाया, आखिर आप प्यारे प्यारे श्रोताओं ने ही तो आकाशवाणी अल्मोड़ा के हर कार्यक्रम को है सदा महकाया। आज बहुत ही खास दिन है, आज है आकाशवाणी अल्मोड़ा का स्थापना दिवस। आप सभी श्रोताओं को अनंत असीम ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप सभी श्रोताओं का विशेष रूप से हम बहुत बहुत करते हैं स्वागत सत्कार, और कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो दोस्त अंजु पांगती का स्नेहिल नमस्कार। और आज का आगाज फिराक के एक मशहूर शेर के साथ, फिजा को जैसे कोई राग चीरता जाए, फिजा को जैसे कोई राग चीरता जाए, तेरी निगाह दिलों में यूं ही उतर आई। सच श्रोताओं, रेडियो से हमारा कुछ ऐसा ही तो नाता है, जिन्हें रेडियो से है ढेर सारा प्यार, वो भला इसे सुनने से कैसे करें इनकार, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सच्चा अच्छा बेहद सुगम टिकाऊ विश्वसनीय करीबी, अकेलेपन में उदासी में हमदर्द, तो खुशी उल्लास उत्सव के पलों का सबसे खास अपनेपन के जुड़ाव संग सतरंगी ख्वाबों को संजोता हमारा बेहद खास बेहद करीबी दोस्त रेडियो, या यूं कहिए आकाशवाणी अल्मोड़ा।

श्रोताओं, प्रातःकालीन सभा में संकेत धुन की सुरीली अनुगूंज से शुभारंभ, विचार बिंदु, आराधना, रामचरित मानस का आध्यात्मिक गान, लोक रस से सराबोर, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा से आलोकित स्वर और रागों की जुगलबंदी, मनभावन सुगम संगीत, तो दिलों को छू जाते हैं फिल्मी गीत, विविध भाषाओं में देश विदेश के समाचार, मनोरंजन से सभी कार्यक्रम हैं भरपूर। तभी तो आकाशवाणी परिवार मिलता है रेडियो के माध्यम से सुबह शाम, दिन दोपहर, देर रात, 2400 घंटे हर बार। श्रोताओं, आज है 15 जून आकाशवाणी अल्मोड़ा का स्थापना दिवस, करते हैं नमन इस केंद्र को बारंबार इसी शुभ कामना के साथ।

तो श्रोताओं, सांझी विरासत, सांझे श्रोता, आकाशवाणी अल्मोड़ा के विविध प्रसारणों ने श्रोताओं का दिल है जीता। सूचना, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन की बहती अविरल धारा बना रहता है हमारे सुधी श्रोताओं से स्नेह हमारा। तो हर दिन सुबह शाम करें ट्यून आकाशवाणी अल्मोड़ा, आखिर मन का रेडियो है, बजने दीजिए, बस बजते ही रहने दीजिए।

तो श्रोताओं, 15 जून 1986 में जब आकाशवाणी अल्मोड़ा कुमाऊं अंचल की आवाज बना, तब सायंकालीन प्रसारण से इसकी शुरुआत हुई। फिर प्रातःकालीन प्रसारण के बाद दोपहर की सभा से अपने विभिन्न कार्यक्रमों की आभा बिखेरता ये केंद्र मीडियम वेव से एफएम पर भी सुनाई देने लगा और मीडियम वेव 300.3 मीटर यानी 999 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.8 मेगा हर्ट्ज और फिर हमारी मुट्ठी में मोबाइल फोन के जरिए न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से श्रोताओं के दिलों तक पहुंचा। साथ ही सायंकालीन प्रसारण में आकाशवाणी बागेश्वर और आकाशवाणी पिथौरागढ़ के साथ ध्वनि तरंगों के माध्यम से जुड़ता चला गया। 40 सालों का ये सफर अनवरत चलता रहा, श्रोताओं का और हमारा साथ बनता गया। सुबह दिन या फिर रात, आकाशवाणी अल्मोड़ा देता है श्रोताओं का साथ, अपने ज्ञान विज्ञान संगीत कला सूचना संस्कृति परंपरा की सतरंगी आभा से सजे विविध कार्यक्रमों की अनमोल प्रस्तुतियों के संग।

तो श्रोताओं, आज आकाशवाणी अल्मोड़ा का स्थापना दिवस का सुअवसर है। इस स्वर्णिम बेला पर हम विशेष रूप से आप श्रोताओं के साथ जुड़े हैं और इस विशेष दिवस को मना रहे हैं पूरे उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ। आखिर आज खुशखबरी जो है तो आप सभी के साथ मिलकर झूमते हुए यही गा रहे हैं और यही कहना भी चाहते हैं।

0: श्रोताओं, श्री विट्ठल नरहर गाडगिल तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा रविवार 15 जून 1986 को आकाशवाणी अल्मोड़ा का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। तब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तत्कालीन श्री वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने इस दिन के समारोह की अध्यक्षता की थी। श्रोताओं, 15 जून 1986 के अनमोल पलों को जिन्होंने अपनी आवाज और अपने खूबसूरत अंदाज से तब संवारा था, वो आवाज आज भी हमारे साथ है अपने उद्गारों के साथ। यानी आकाशवाणी अल्मोड़ा के पूर्व उप केंद्र निदेशक मनोहर सिंह ब्रिजवाल जी तब वहाँ मौजूद थे, साक्षी थे, प्रत्यक्षदर्शी थे उन अनमोल पलों के। आज अतीत के झरोखों से उन लम्हों को जीने की कोशिश करते हैं और सुनते हैं मनोहर सिंह ब्रिजवाल जी को अतीत की अनमोल यादों के साथ और जीते हैं उन अविस्मरणीय पलों को।
1: वैसे तो हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अल्मोड़ा वासियों के लिए 15 जून का दिन होता है, क्योंकि इसी दिन 15 जून 1986 को आकाशवाणी अल्मोड़ा का उद्घाटन हुआ था। इस उद्घाटन का मैं साक्षी हूं, क्योंकि इस उद्घाटन समारोह का आंखों देखा हाल का विवरण मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज भी मेरे स्मृति पटल में वो आरंभिक जो उद्घोषणा है वो मुझे याद है कि उस समय मीडियम वेव हुआ करता था और अब तो FM है, तो मीडियम वेव 300.3 मीटर यानी 999 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1908

0: तो FM है, तो मीडियम वेव 300.3 मीटर यानी 999 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1908 की ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तद अनुसार 15 जून 1986, अपराह्न के 3:10:45 हुए हैं। हमारी विशेष सभा आरंभ हो रही है। ये जो संकेत धुन बजता है, इसके जो कंपोजर थे वो चेकोस्लोवाकिया के वाल्टर कॉफमैन ने इस धुन की रचना की, और सचमुच ब्रह्मांड में गूंजता ये ओंकार जो कि राग शिव रंजनी पर आधारित है। इसके बाद जो उद्घोषणा हुई थी वो मैंने कुछ इस तरह से बोला था कि अल्मोड़ा तुम जो भी हो, तुम चाहे इतिहास के पृष्ठ में रहे, भूगोल के नक्शे पर उतरे, तुम चाहे किस्सों में, चाहे कहानीकार की कहानी में, वार्ताकार की वार्ता में, चाहे कवि की कविता में, चित्रकार के चित्र में या साहित्यकार के साहित्य में, चाहे नर्तक कलाकार के नृत्य में, तुम चाहे गायक गायिकी के गीत में, चाहे चिंतक मनन के विचार बिंदु में, चाहे राजनीति प्रशासक के केंद्र बिंदु में, तुम चाहे भाषा में या बोलियों में, चाहे आलोचना में या समालोचना में, तुम चाहे परंपरा में रहे या अपनी आधुनिकता में, अल्मोड़ा तुम जो भी रहे, तुम्हारा स्वागत है, नमन है, प्रणाम है, क्योंकि आज तुम्हारा पहला प्रसारण है। तो ये दिन मेरे लिए अविस्मरणीय है और मैं इस दिन को भूल नहीं सकता, और बहुत बहुत बधाई है आज सभी आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टाफ को। यूं तो आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं, मेरी यही अभिलाषा है कि आकाशवाणी अपने शतक की ओर निरंतर हमें प्रेरित करे, हमें तेजस्वी, ऊर्जावान, आनंदित, जागृत और सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति से आत्मसात करे। आकाशवाणी अल्मोड़ा के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कहने को मैं अल्मोड़ा भले ही एक शब्द हूँ, अतीत के झरोखों से झांक कर वर्तमान की कहानी हूँ, सूरज की भोर किरणों से चांद तारों की महफिल तक साथ हूँ, मैं एक परंपरा हूँ, संस्कृति हूँ, शून्य से अनंत तक पहाड़ीपन की पहचान हूँ, गाँव में भी रहती हूँ, शहर शहर दौड़ती हूँ, पहाड़ के बर्फ की ठंडी बयार हूँ, पहाड़ी दिलों की आवाज़ हूँ, बच्चों की मुस्कान, युवाओं की शान, बुजुर्गों का इतिहास हूँ, पुरानी धड़कन नई सांसों के साथ हूँ, आवाज़ नहीं आत्मा की बात हूँ, हिमालयी सौंदर्य का बोध हूँ, हिमालय की मुकुटमणि का एक पत्थर, हीरे की चमक सा मैं आकाशवाणी अल्मोड़ा। बहुत बहुत बधाई सबको और मेरी शुभकामना।
1: ब्रिजवाल जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने अपने उद्गारों के साथ उन अविस्मरणीय अतीत के उन अनमोल पलों को हमारे साथ साझा किया। आकाशवाणी यानी आकाश से अवतरित हुई वाणी, इसी वाणी ने संपूर्ण राष्ट्र को अपनी वाणी से सुसज्जित किया और गौरवशाली 90 सालों का सफर 8 जून को पूरा किया। इसी साल आकाशवाणी केवल शहरों तक ही नहीं बल्कि सुदूर क्षेत्रों और ग्रामीण अंचलों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से घर घर तक पहुंची है। आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर और भी श्रोता हमसे जुड़े हैं, आइए जानते हैं क्या कहा अपने अनमोल विचारों के साथ आकाशवाणी अल्मोड़ा के लिए जितेंद्र सिंह तिलारा जी ने।
2: आकाशवाणी अल्मोड़ा के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र सिंह तिलारा, प्रवक्ता, जागनाथ इंटर कॉलेज चौकियाथल, आप सभी को आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्थापना दिवस के इस अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आकाशवाणी अल्मोड़ा हम श्रोताओं के लिए सिर्फ एक रेडियो केंद्र नहीं है बल्कि हमारे जीवन का अपना साथी रहा है। बचपन से लेकर आज तक मैं इसकी आवाज सुनता आया हूँ, इसमें प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को सुनता आया हूँ। इसकी आवाज हमारे सुख दुख और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रही है। यहाँ से मिलने वाली जानकारी, गीत संगीत और इससे प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। मुझे आकाशवाणी अल्मोड़ा की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि आकाशवाणी अल्मोड़ा ने हमारी लोक संस्कृति, लोक भाषा और पहाड़ की पहचान को हमेशा संजो कर रखा है। यही कारण है कि आज भी इसका एक विशेष स्थान हमारे दिलों में बना हुआ है। आकाशवाणी अल्मोड़ा के इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आकाशवाणी अल्मोड़ा की निरंतर प्रगति और सफलता की कामना करता हूं। आप यूं ही अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़ते रहें और समाज को नई दिशा देते रहें। आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूँ। धन्यवाद।

जितेंद्र सिंह तिलारा जी, आपके अनमोल विचार आकाशवाणी अल्मोड़ा के लिए, शुभकामनाओं के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हाँ, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी परंपरा विविधता में एकता का प्रतीक है। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, देशभक्ति गीत, सुगम संगीत, भक्ति संगीत या फिर क्षेत्रीय संगीत, हर वर्ग के कार्यक्रमों की आवाज है आकाशवाणी। हर स्वर, हर रंग, हर एक की आवाज है आकाशवाणी। श्रोताओं, एक दौर जब सबसे अधिक उत्सुकता, आश्चर्य और बेसब्री से इंतजार रहता था, तो वो थी रेडियो से आने वाली आवाजें। ये आवाजें कभी बोलती, कभी गुनगुनाती, कभी मुस्कुराती, कभी ढांढस बंधाती, कभी सपनों के रंग भरती, जिंदगी के एहसासातों को एक नया संसार, एक नया आकार देती। ये आवाजें सदा गूंजती रहती हैं। दौर भले ही बदल गया हो, पर जिंदगी के इंद्रधनुषी रंग आज भी वैसे ही हैं। वक्त के साथ बदलाव आना जरूरी भी है और होना भी चाहिए, तभी तो रेडियो ने भी अपना स्वरूप कितना बदल दिया है ना। आज डिजिटल युग में आकाशवाणी पूरी तरह से अपडेट है। मोबाइल ऐप, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, डीटीएच सेवाओं या फिर आपका अपना रेडियो सेट, इन सभी माध्यमों से ये देश विदेश में अपनी यानी हमारे देश की आवाज का जादू बिखेर रहा है। यही आवाज इसकी पहचान है और यही हमारी शान सम्मान भी है। तभी तो

0: और श्रोताओं की आवाज भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। एक और हमारी श्रोता हमसे जुड़ी है आज अपने विचारों के साथ। आप हैं शगुफ्ता हारून।
1: आदाब दोस्तों, मेरा नाम शगुफ्ता हारून है। उर्दू शायरा होने के नाते आप सब मुझे कशिश नाम से भी जानते हैं। आकाशवाणी के स्थापना दिवस के इस खास मौके पर मैं अपनी जानिब से सभी टीम मेंबर्स को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूं और बेहद खुलूस और मोहब्बत के साथ इसकी कामयाबियों के लिए बेशुमार नेक ख्वाहिशात भी पेश करती हूं। मैं बचपन से ही आकाशवाणी सुनती आ रही हूं। उस वक्त आपकी फरमाइश प्रोग्राम में अपने पसंदीदा नगमे भेजना और परिवार के सदस्यों के नाम सुनना एक बेहद खूबसूरत एहसास था। ये मेरी खुशनसीबी है कि आकाशवाणी के एक प्रोग्राम घर संसार के जरिए मुझे भी इससे जुड़ने और शिरकत करने का शरफ हासिल हुआ, जिसके लिए मैं सभी टीम मेंबर्स की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। स्थापना दिवस की मुबारकबाद के तौर पर मैंने अपनी कलम से कुछ लफ्ज पिरोए हैं, उम्मीद है आप सबको पसंद आएंगे, जो कि इस तरह से हैं। आवाज़ों का बहता हुआ आबशार रहे, आवाज़ों का बहता हुआ आबशार रहे, कामयाबियों का ये सिलसिला बेशुमार रहे, कामयाबियों का ये सिलसिला बेशुमार रहे। इन पहाड़ों और वादियों में नगमों के जरिए आकाशवाणी की ये मिठास बरकरार रहे। कशिश, एक बार फिर आप सभी टीम मेंबर्स को स्थापना दिवस की बेहद मुबारकबाद। शुक्रिया।
0: मन का रेडियो बजने दे जरा। बहुत बहुत शुक्रिया शगुफ्ता हारून जी। आज के इस विशेष दिन में एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं, धीरेंद्र सिंह मर्तोलिया। क्या कहना चाहते हैं वो अपनी बात में, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, मैं धीरेंद्र सिंह मर्तोलिया राजकीय उच्च संस्थान अल्मोड़ा की ओर से 15 जून आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर आकाशवाणी अल्मोड़ा परिवार के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, उद्घोषकों, तकनीकी सहयोगियों के साथ साथ अल्मोड़ा के सम्मानित श्रोताओं को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आकाशवाणी अल्मोड़ा के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आकाशवाणी अल्मोड़ा आगे भी अपने उत्कृष्ट सेवाओं के माध्यम से समाज को शिक्षित, संस्कारित और जागरूक करने का काम करेगी। दोस्तों, आकाशवाणी भारत की एक सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में हमारे बीच में उपस्थित रहा है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी ने 8 जून 2026 को अपने गौरवशाली सफर के 90 वर्ष भी पूर्ण कर लिए हैं। इसके लिए भी मैं आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। यह यात्रा जन संचार के साथ साथ लोक संस्कृति के संरक्षण, शिक्षा, मनोरंजन तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में अपना अतुलनीय योगदान हमेशा देती रही है। मैं एक बार पुनः आज अल्मोड़ा आकाशवाणी को उनके स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।
3: मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: धीरेंद्र मर्तुलिया जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हाँ श्रोताओं, महसूस कीजिए तो पाएंगे हमारी जिंदगी से हमारा प्यारा सा रेडियो कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है।

आप श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रमों को उड़ान मिलती है, पहचान मिलती है। आपके सुझाव, आपकी फरमाइश, शिकायतों से ही कार्यक्रमों के निर्माण में एक दृष्टि मिलती है। श्रोताओं, आज दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सोशल मीडिया का, इंटरनेट का। ऐसे में जब आप हमसे नई तकनीकों के कई माध्यमों से जुड़ते हैं, लेकिन पुराना हम

से कुछ छूटता नहीं है, ये बात याद दिलाते हैं आपके प्यारे प्यारे खत जो आज भी आप अपने हाथों से लिख कर सजा कर हमें भेजते हैं। आपका भेजा गया हर खत हमारे लिए बेशकीमती होता है। बदलते दौर में जब इतना कुछ बदल चुका है, ऐसे में जब आपके खत हमें आज भी मिलते हैं तो वो उस दौर की याद दिलाते हैं जब खतों का दौर चलता था। ये दौर भले ही आज लोगों के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन रेडियो की दुनिया में ये दौर आज भी जिंदा है आपके भेजे गए खतों के जरिए। इसके लिए हम हर श्रोता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आकाशवाणी अल्मोड़ा परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और यही आपसे कहते हैं।

श्रोतों, सुहानी भोर की प्रातः बेला से देर रात तक सायंकालीन प्रसारणों के माध्यम से आपका सच्चा दोस्त बनकर सदा साथ निभाता रहा है आकाशवाणी अल्मोड़ा। आज 15 जून आकाशवाणी अल्मोड़ा का स्थापना दिवस है और आज ही बाबा नीब करौरी महाराज के कैंची धाम की भी स्थापना के साथ साथ आकाशवाणी अल्मोड़ा का स्थापना दिवस होना मात्र संयोग ही नहीं बल्कि बाबा की अनुपम कृपा का आशीर्वाद भी है। प्रातः दोपहर सायं के विविध ज्ञानवर्धक सूचना परक मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रमों के जरिए देश दुनिया के अनेक अनगिनत श्रोताओं तक इस केंद्र की पहुंच है। श्रोताओं से जुड़कर ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य को पूरा करता है आकाशवाणी अल्मोड़ा। और आज बाबा नीब करौरी महाराज को नमन करते हुए वंदन करते हुए हम यही कामना करते हैं कि आगे भी आकाशवाणी अल्मोड़ा केंद्र का उज्जवल भविष्य हो और ये निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ता रहे और उत्तराखंड को पूरे विश्व में गौरवान्वित करता रहे।

गौरवशाली बेमिसाल दमदार 40 वर्षों का ये खूबसूरत सफर आकाशवाणी ने पूरा किया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आकाशवाणी के मूल मंत्र संग आकाशवाणी सदा से जन जन की पहली पसंद बना हुआ है, और हो भी क्यों नहीं। प्राचीन से नवीनता का संगम सुगम हो या दुर्गम, हर वक्त हर माहौल में ढला, लोगों के दिलों में बसा, हवा के तरंगों से तरंगित करता, जिंदगी के हर रंग में समाया, सबसे विश्वसनीय सच्चा और सबसे अच्छा साथी आकाशवाणी। ये गौरवशाली यादगार सफर अनवरत चलता ही रहा है, श्रोताओं और आकाशवाणी का अटूट बंधन बना रहा है। सुबह दिन या फिर रात आकाशवाणी देता है विविध कार्यक्रमों के माध्यम से आप सभी का साथ। अपने ज्ञान विज्ञान संगीत कला सूचना संस्कृति बोली भाषा खेत खलिहानों की बात किसानों की बात परंपराएं देश विदेश के समाचारों के साथ ना जाने कितने सारे कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी अनमोल प्रस्तुतियों संग जुड़ाव बनाए हुए है आकाशवाणी। और हमेशा हवाओं के साथ हवाओं ने विविध कार्यक्रमों के साथ यही पैगाम दिया है।

0: हवाओं के लिख दो हवाओं के नाम।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी अल्मोड़ा स्थापना दिवस की असीम अनंत शुभकामनाएं। और आज इस खूबसूरत सफर को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी श्रोताओं के साथ रेडियो का साथ, आकाशवाणी अल्मोड़ा का साथ हमेशा पल पल बना रहेगा, इसी उम्मीद इसी शुभकामना के साथ लेती हूँ विदा। मैं अंजू पांगती, इजाजत दीजिए, नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:23 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराती रहें और ये कार्यक्रम यूं ही हमेशा सुनती रहें। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहनों, कुछ आवाज़ें केवल सुनाई नहीं देती बल्कि वे हमारे दिलों में रच बस जाती हैं। कुछ रिश्ते केवल मिलकर नहीं बनते, वे बनते हैं विश्वास और अपनेपन से। और कुछ सफ़र केवल समय ही तय नहीं करते, वे पीढ़ियों की यादों का हिस्सा बन जाते हैं। और बहनों, इन्हीं यादों के अनमोल हिस्सों को आज के दिन हम भी याद कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन हम सभी के लिए गर्व, खुशी और आत्मनीयता का दिन है। आज 15 जून है। आज हमारे आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र का स्थापना दिवस है। इस विशेष अवसर पर हम अपने सभी श्रोताओं, कर्मचारियों, उद्घोषकों, कलाकारों और आकाशवाणी परिवार से जुड़े प्रत्येक सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सन 1986 में शुरू हुई आकाशवाणी अल्मोड़ा की ये सशक्त यात्रा आज भी उसी गरिमा और अपनेपन के साथ आगे बढ़ रही है। बीते 4 दशकों में हमारे केंद्र ने केवल कार्यक्रमों का प्रसारण ही नहीं किया बल्कि हमारे राज्य उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, लोक संगीत, साहित्य और जनजीवन की आवाज़ को घर घर तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। पहाड़ की मिट्टी की सौंधी खुशबू, लोक गीतों की मधुर धुन और लोगों की भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति, इन सब को आकाशवाणी अल्मोड़ा ने अपने स्वर में समेटकर अपने श्रोताओं तक पहुंचाया है। बहनों, यही कारण है कि रेडियो का ये रिश्ता आज भी श्रोताओं के दिलों में जीवित है और अपने पन पर लिए हुए आगे बढ़ रहा है। मैंने समय बदला, तकनीकी बदली, संचार के अनेक माध्यम आए, लेकिन श्रोताओं का रेडियो से प्यार, अपनापन आज भी वही है। और जब पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों में आकाशवाणी अल्मोड़ा की मधुर ध्वनि गूंजती है तो केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं लाती बल्कि अपनेपन और प्यार का एहसास भी लेकर आती है। और बहनों, आप सभी श्रोताओं का स्नेह, विश्वास और आपका साथ ही आकाशवाणी की सबसे बड़ी पूंजी है। स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हम कामना करते हैं कि आकाशवाणी अल्मोड़ा यूं ही ज्ञान, संस्कृति, जागरूकता और मनोरंजन का प्रकाश हमेशा ही फैलाता रहे, समाज को एक नई दिशा देता रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का एक स्रोत बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए खूबसूरत सफर को और श्रोताओं के साथ मधुर रिश्तों को और मजबूत करते हुए सुनते हैं ये गीत। इसी गीत की तरह आप सभी हमेशा गीत गुनगुनाते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारी यही कामना है। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

स्वागत करते हैं आप सभी श्रोता बहनों का आज के घर संसार कार्यक्रम में। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आधे घंटे के इस खूबसूरत सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी संगीता दिलारा। तो कैसी हैं आप सभी बहनों? हम तो हमेशा यही दुआएं करते हैं और उम्मीद भी यही करते हैं कि आप सभी

0: स्वागत है मैनू आप सभी का। आप सुन रही हैं अपना कार्यक्रम घर संसार। मैनू आज शक्ति सेगमेंट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी प्रेरणादायी महिला से जिन्होंने चीड़ की पत्तियों यानी पिरुल से खूबसूरत हस्तशिल्प उत्पाद बनाकर स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश की है। अपने सराहनीय कार्यों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और कई राजकीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उन्हें वर्ष 2026 के उत्तराखंड राज्य के प्रतिष्ठित गौरा देवी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आइए मिलते हैं उत्तराखंड राज्य की पिरुल वुमेन नाम से प्रसिद्ध श्रीमती मंजू आर साह से।
1: बहनों, आज का हमारा विशेष अंक है शक्ति, जहां हम मिलते हैं उन महिलाओं से जिन्होंने अपने साहस, मेहनत और नई सोच से समाज में बदलाव की प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्रीमती मंजू आर साहद को, जो उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट ग्राम से हैं। वर्ष 2011 से वो चीड़ की सूखी पत्तियों यानी कि पिरुल पर अभिनव प्रयोग करते हुए न केवल सुंदर और उपयोगी उत्पाद तैयार कर रही हैं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सराहनीय कार्य भी कर रही हैं। जिस पिरुल को अक्सर जंगलों में आग लगने का कारण माना जाता था, उसी पिरुल को मंजू जी ने रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का माध्यम बना दिया है। उनके इस प्रेरणादायक कार्य के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज शक्ति में हम उनसे जानेंगे उनके संघर्ष, उनकी सोच, उस सफर के बारे में जिसने कई महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास और उम्मीद की नई रोशनी जगाई है। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में और हमारे कार्यक्रम घर संसार में।
2: धन्यवाद संगीता जी। घर संसार कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक धन्यवाद और नमस्कार
1: जी। तो मंजू जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके विषय में और इस अनोखे सफर के बारे में।
2: उत्तराखंड पिरुल वुमन करके लोग मुझे जानते हैं। मैं जीजीआईसी ताड़ीखेत में प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत हूँ
1: जी।
2: इसके अलावा मेरा जो बर्थ प्लेस है वो बागेश्वर के कपकोट गाँव में हुआ था और मेरी एजुकेशन भी कपकोट से ही शुरू हुई थी और SSJ कैंपस अल्मोड़ा से मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ था और भीमताल के जे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से मैंने BEd की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मेरा विवाह द्वाराहाट में हुआ। 2012 में मेरी जो जॉब लगी आउटसोर्सिंग के तौर पर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के ताड़ीखेत GGIC में
1: जी।
2: मुझे बचपन से ही वेस्ट टू वेल्थ बनाने का शौक रहा था
1: जी।
2: तो जब मैंने पिरुल पे काम शुरू किया तो मुझे लोग पिरुल वुमन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जानते हैं
1: जी। तो मंजू जी, पिरुल से काम करने का विचार आपको कैसे आया, ये हम जानना चाहेंगे।
2: जब भी हम जंगलों में आग लगे हुए देखते थे अपने आसपास के एरिया में, पूरा वातावरण धुंधमय हो जाता था, तो मुझे लगता था कि इस पिरुल का कहीं ना कहीं कोई उपयोग करना चाहिए। तो एक बार जब मैंने उसके बनी हुई टोकरी देखी थी जो गेहूं और पराल से बनी हुई होती है, तो मुझे लगा कि इसके ऑप्शन के

0: में हम पिरुल को रख सकते हैं
1: जी।
0: तो हमने पिरुल से टोकरी बनाना शुरू किया
1: जी। और आप पिरुल से किस प्रकार के उत्पाद तैयार करती हैं अभी?
0: अभी बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में यूज होती हैं, हमारे घर में जो यूज होती हैं, हम उस तरह की चीज़ें बनाते हैं। जैसे रोटी चपाती बॉक्स हुए, और पोस्टर है, हैट है, मैट है, पूजा आसन है, और डाइनिंग मैट है, पर्स है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बोतल कवर है। इसके अलावा हम सौंदर्य प्रसाधन में जैसे ज्वेलरीज वगैरह हैं वो चीज़ बनाते हैं
1: जी। तो मंजू जी, ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देने की शुरुआत आपने कैसे की?
0: शुरुआत में जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था तो उस टाइम हमारे विद्यालयों में एक रमसा के तहत एक ग्रांट आती थी, उसमें छात्राओं को आर्ट एंड क्राफ्ट प्रशिक्षण दिया जाता था। तो मैंने देखा कि जो बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका जो अधिकतर सामान है वो मार्केट से आ रहा है
1: जी।
0: तो हमारे क्योंकि बच्चे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं उनका जो आर्थिक लेवल है होता है वो डाउन होता है, वो फीस नहीं जुटा पाते हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अगर हम इनको पिरुल का चीज़ें बनाना सिखाएं तो बच्चों का जो जीरो इन्वेस्टमेंट में उनका अधिक उपयोगी चीज़ें बन सकती हैं, बजाय इसके कि वो बाज़ार से कुछ सामान खरीद के लेके आए
1: जी।
0: तो वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। जब शुरुआत में मैंने अपने स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया था, क्या धीरे धीरे 2012 के लगभग मेरा एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, तो वहाँ से और लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू किया, तो वहाँ से मैंने फिर महिलाओं को भी ट्रेनिंग देना शुरू की
1: जी। आपने बताया कि आप बच्चों को भी प्रशिक्षण देती हैं और साथ ही महिलाओं को, तो अब तक कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ चुकी हैं और उनके जीवन में क्या बदलाव देखने को आपको मिला है?
0: क्योंकि 2012 से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो अनगिनत लोग हैं जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, क्योंकि मैं जगह जगह पर जाकर प्रशिक्षण देती हूँ
1: जी,
0: जिसमें ऑल ओवर उत्तराखंड में मैं प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन भी मैं प्रशिक्षण देती हूँ, तो बहुत सारी महिलाओं ने इस काम को सीखा। अभी रिसेंटली मैं झारखंड भी गई थी
1: जी,
0: वहाँ पर भी जो हमारे रेंजर्स रोवर्स होते हैं उन लोगों ने भी ट्रेनिंग लिया था। तो ये महिलाओं के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट में आर्थिकी का एक बहुत अच्छा जरिया बन चुका है। अभी महिलाएँ इससे प्रेरित होकर अपना काम कर रही हैं और अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं
1: जी,
0: क्योंकि इसमें कुछ भी आपको खर्च नहीं करना है, केवल आपका समय इसमें कंज्यूम होता है
1: जी,
0: उसके अकॉर्डिंग आपको हर प्रोडक्ट का पैसा मिलता है। तो महिलाएं खुशी खुशी इस काम को कर रही हैं। अभी उत्तरकाशी के धरासू में टिहरी वन प्रभाग के द्वारा ट्रेनिंग आयोजित की गई, उसमें काफ़ी महिलाओं ने अभी तक बहुत काम किया हुआ है। पिछली बार रुद्रप्रयाग में आपने देखा होगा कि वहाँ की राखियाँ बहुत फेमस हो रही हैं, उनको भी हमने ट्रेनिंग दिया था। करीब करीब 8 से 10 हज़ार रुपया महीने का महिलाएं कमा रही हैं
1: जी। और मंजू जी, क्या आपको लगता है कि इस पहल से जंगलों में आग जैसी समस्या को कम करने में मदद मिल रही है?
0: बिल्कुल, क्योंकि जहाँ महिलाएं जागरूक रहेंगी तो अपनी एरिया का पिरुल उठाकर ले आती हैं तो उस एरिया का लगभग कम हो जाता है, तो उससे वनाग्नि रुकने में सहायता तो जरूर मिलती है
1: जी। तो जो भी आप ये उत्पाद तैयार करती हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है?
0: इसको हम दो तरीके से बनाते हैं। एक तो हम प्योर पिरुल से ही बनाते हैं, पिरुल को भिगोने के बाद तो उसमें जो गांठ बनती है पिरुल से ही बनती है
1: जी।
0: दूसरा जो है हम सुई धागे से बनाते हैं, तो उसमें पहले दिन हम लोग जब पिरुल को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम भिगो लेते हैं या फिर हम उबाल लेते हैं, तो उसके बाद उसको निखारने के बाद तो हम जब उसको बनाना शुरू करते हैं तो भिगोने का आसानी से जहाँ पर हम उसको ढालना चाहें वहाँ वो मुड़ जाता है
1: जी। आपने बताया कि बहुत सारी महिलाएं आज पिरुल से स्वरोजगार कर रही हैं, तो जितने भी उत्पाद तैयार करती हैं उनकी बिक्री कैसे कर पाती हैं, कहाँ मार्केट मिलती है उनको?
0: आजकल सोशल मीडिया सबसे बेहतर माध्यम बन चुका है
1: जी।
0: लोग अपने इंस्टा पेज के द्वारा बेच रहे हैं, फेसबुक के द्वारा बेच रहे हैं। इसके अलावा जो सरकार के द्वारा वस्त्र मंत्रालय हैंडीक्राफ्ट ऑफिस के द्वारा जगह जगह एग्जीबिशन किए जाते हैं, तो जो मोदी जी का है कि आत्मनिर्भर भारत, उसके द्वारा भी बहुत अधिक महिलाओं को इस तरह का एक मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का
1: जी।
0: तो उसके द्वारा बहुत हम लोग को ऑर्डर्स आते हैं
1: जी। आपने बात की प्रधानमंत्री जी के बारे में, मंजू जी जब पिरुल की आपने राखी बनाई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आपको एक पत्र मिला था, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
0: बिल्कुल, मैं जब पिरुल राखी जब बनाई थी तो मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना मोदी जी को राखी भेजी जाए, क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की जो भूमिका है वो बहुत अधिक है,

0: मेरा भी मन किया कि मैं उनको एक राखी भेजूँ, तो उनका रिप्लाई आया, वो मैंने अभी भी संभाल कर रखा है। उसके बाद कंटिन्यू हर साल अब मुझे उनका लेटर आता है
1: जी। इसके लिए तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं। मंजू जी, आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, वो अनुभव आपके लिए कितना खास रहा?
0: बिल्कुल, जब आपके काम को सराहना मिलती है तो काम करने का जो जुनून होता है वो दुगना हो जाता है
1: जी।
0: वर्ष 2019 जब मुझे कलकत्ता में बेस्ट अपकमिंग आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के द्वारा, तो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस टाइम तक मुझे कोई जानता नहीं था। लेकिन जब 2019 में मेरे इस काम को उपलब्धि मिली तो वहाँ से मैंने उस काम को दुगनी रफ्तार से करना शुरू किया। जहाँ मैं अपने स्कूल तक ही सीमित थी
1: जी,
0: वहाँ से फिर मैंने और महिलाओं को भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत समझी, क्योंकि ऑर्डर्स आने लगे थे। और इसके अलावा नेपाल में जब चरमणवती अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर भी मुझे अपना प्रेजेंटेशन करने का सौभाग्य मिला था। वहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय गौरव सम्मान मुझे मिला हुआ है
1: जी। जी जी, तो मंजू जी, आपको जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, उन सभी के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: और आपके इस पूरे सफर का सबसे भावुक या यादगार पल कौन सा रहा?
0: यादगार पल तो जब मुझे पिरुल वुमन उत्तराखंड के रूप में पहचान मिली थी
1: जी,
0: जब मेरा न्यूज़पेपर में आया था कि पिरुल वुमन सिखा रही है स्वरोजगार के गुर, उस टाइम जो न्यूज़ की हेडलाइन थी, मतलब मुझे मेरे काम के द्वारा पहचाना जा रहा है
1: जी,
0: तो वो मेरे लिए बहुत भावुक था, क्योंकि उस समय तक केवल मैं मंजू आर शाह थी, लेकिन उस दिन के बाद से मैं पिरुल वुमन उत्तराखंड के नाम से पहचानी जाने लगी, तो मेरे लिए बहुत यादगार पल था
1: जी। बिल्कुल मंजू जी, और आज की युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, महिलाएं हर काम में सशक्त हैं, बस उनको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि महिलाएं अपने आप में संपूर्ण होती हैं, उनके अंदर धैर्य क्षमा करुणा सभी चीज़ें उनके अंदर विद्यमान हैं। और 9 महीने वो जब बच्चे को अपने गर्भ में रखती हैं उसके साथ ही वो सारा काम निपटाती हैं, तो आपके अंदर बहुत दिख सकती है, आपको उसको ज़रूरत है निखारने की। आप चांद छू सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले कदम घर से बाहर उठाना होगा
1: जी। और आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: मेरा एक सपना है कि हर महिलाएं सशक्त बने, क्योंकि पहाड़ में महिलाओं को रोजगार की बहुत अधिक समस्या होती है, तो मैं चाहती हूँ कि हर महिला इस कार्य को सीखे, अपनी जीविका का आधार बनाए, क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक समय होता है, हमको केवल उसको फालतू समय बर्बाद न करके अगर हम उसको यूज में लाते हैं तो हम एक मजबूत इबारत अपने परिवार के लिए लिख सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं
1: जी।
0: तो आपको खुद थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, बाकी आपके लिए पूरा संसार जो है खुला आसमान है, आप उसमें उड़ान भर सकती हैं
1: जी। तो क्या कहना चाहेंगी हमारे घर संसार कार्यक्रम के माध्यम से आज आप?
0: मैं महिलाओं को बोलना चाहूँगी, तुम स्त्री हो तो आँखों में सपनों की रोशनी भी रखना और भीतर अग्नि का धैर्य भी, पायल की छनकार में अपनी पहचान सुनना और समय आए तो आवाज़ को तलवार भी बनाना। तुम्हारे हिस्से सिर्फ प्रेम नहीं सम्मान भी होना चाहिए, क्योंकि स्त्री जब झुकती है तो घर बसाती है और जब उठती है तो इतिहास बदल जाती है। सुनो, तुम केवल किसी की बेटी पत्नी या माँ नहीं, तुम स्वयं एक संपूर्ण संसार हो, अंश भी वंश भी संघर्ष भी और उत्कर्ष भी
1: जी। तो बहनों, आज की हमारी नारी शक्ति ने ये साबित कर दिया है कि अगर सोच सकारात्मक हो और इरादे मजबूत हों तो प्रकृति की हर चीज समाज के लिए नई उम्मीद बन सकती है। जिस पिरुल को कभी केवल जंगलों की आग का कारण माना जाता था, आज वही कई महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान की पहचान बन चुका है। हमारी ओर से मंजू जी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे घर संसार कार्यक्रम में शामिल हुई, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
2: बहनों, अभी आप शक्ति सेगमेंट के अंतर्गत सुन रही थी उत्तराखंड की पिरुल वुमेन श्रीमती मंजू आर शाह से की गई ये भेंटवार्ता। कार्यक्रम में मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद, हमारे साथ सुनते रहिएगा अपना कार्यक्रम घर संसार।
3: घर तो चमक रहा है भाई।
4: नई नई लाइटें।
5: मैंने बिजली का सारा सामान ISI मार्क का लगाया है।

0: मतलब सुरक्षा व गुणवत्ता में नो कॉम्प्रोमाइज।
1: बल्ब्स, प्लग्स, सॉकेट्स, केबल्स सब ISI।
0: यानी बिजली का सामान हो तो ISI मार्क वाला।
1: बिल्कुल, बिजली के सामान पर ISI मार्क अनिवार्य है।
0: खरीदे बिजली के घरेलू उपकरण तब ISI मार्क हो जब।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: बहनों, हमारे बुजुर्ग हमारे परिवार की धरोहर हैं। उनके अनुभव, संस्कार, उनका प्यार और आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन आज की बदलती जीवन शैली के बीच कई बार कई घरों में बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। बहनों, इसी समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 जून यानी कि आज के दिन को विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी इस दिवस को मान्यता दे दी थी। बहनों, विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में ये संदेश देना है कि बुजुर्गों के साथ सम्मान, संवेदनशीलता और प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाए। हमारे बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन की जड़ें हैं, जिनसे हमें पहचान मिली है, संस्कार और जीने की सीख मिलती है। बहनों, आज इस दिवस के अवसर पर हम मिलकर संकल्प लें कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनको स्नेह देंगे और उनके अनुभवों से अपना और अपने बच्चों का मार्गदर्शन हमेशा करते रहेंगे। याद रखिए, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है वहाँ पर हमेशा खुशियाँ, संस्कार और अपनापन बना रहता है, साथ ही भगवान का आशीर्वाद भी बना रहता है। और इस गीत के माध्यम से हम जानते हैं प्यार और अपनेपन को।

मैंने उसी गीत के साथ समय हो गया आज के घर संसार कार्यक्रम को संपन्न करने का। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। घर संसार कार्यक्रम के अगले अंक में फिर होगी आप सभी से मुलाकात। इस वक्त अपने रेडियो सखी संगीता दुलारा को दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।

0: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनों के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मैक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: समय 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित पूर्णागिरी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए साफ सफाई की एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के सहयोग से परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी। पौड़ी जिले में 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवा पशु स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान बनकर उभरी है। और सोमवती अमावस्या स्नान के पर्व के अवसर पर हरिद्वार में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर जिले के खटीमा स्थित पूर्णागिरी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए मंदिर परिसर में साफ सफाई की। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि स्वच्छ और

0: प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उधम सिंह नगर जिले के खटीमा स्थित पूर्णागिरी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए मंदिर परिसर में साफ सफाई की। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि स्वच्छ और स्वस्थ उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए सभी नागरिक अपने घर, मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प ले तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाकर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जनभागीदारी से ही एक जन आंदोलन का रूप ले सकते हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के सहयोग से परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी पहल के लिए देहरादून में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सहकारिता सचिव डॉ. इकबाल अहमद और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रोफेसर शाश्वत विश्वास ने इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
1: 5 वर्षों की अवधि के लिए किए गए इस समझौते के तहत स्थापित होने वाली परियोजना प्रबंधन इकाई उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र के नवाचार, अनुसंधान, क्षमता विकास और संस्थागत सुदृढ़ीकरण का प्रमुख केंद्र बनेगी। यह इकाई सहकारिता क्षेत्र में नई संभावनाओं की पहचान, वैज्ञानिक अध्ययन, नीति निर्माण में सहयोग और सहकारी संस्थाओं के आधुनिकीकरण के लिए कार्य करेगी। इसके माध्यम से प्रदेश की पैक्स, जिला सहकारी बैंक, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां और अन्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण, क्षमता विकास, व्यावसायिक मॉडल निर्माण, विपणन सहायता, प्रबंधन सुधार और आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही राज्य की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप सहकारिता क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों व चुनौतियों का व्यापक अध्ययन कर विकास की नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी। ये परियोजना केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में संचालित होगी। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ वैज्ञानिक और विशेषज्ञ उत्तराखंड में सहकारिता के संसाधनों, संभावनाओं और चुनौतियों का गहन अध्ययन कर विकासोन्मुख कार्ययोजनाएं तैयार करेंगे। इससे प्रदेश में सहकारिता आधारित रोजगार, स्वरोजगार, विपणन और आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि यह इकाई सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार, शोध और ज्ञान आधारित विकास का केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से प्रदेश की सहकारी संस्थाओं को आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी, जिससे सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
0: उद्योगपति मुकेश अंबानी ने आज बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर श्री अंबानी ने धाम के विकास और धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि दान स्वरूप प्रदान की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पौड़ी जिले में 1962 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट सेवा पशु स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान बनकर उभरी है। मौजूदा समय में जिले के द्वारीखाल, एकेश्वर, जहरीखाल, कलजीखाल, नैनीडांडा, पाबो, पौड़ी और थलीसैंड विकासखंडों में 8 मोबाइल वेटरनरी यूनिट संचालित किए जा रही है। शेष विकासखंडों में भी इस सेवा के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन यूनिटों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों को उनके घर द्वार पर ही निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रत्येक यूनिट में एक पशु चिकित्सक और एक पैरावेट कर्मचारी तैनात है। साथ ही वाहन आवश्यक दवाइयों और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य पशुपालकों को त्वरित, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है।
3: पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न समस्त जनपदों में मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कि जनपद पौड़ी में भी वर्तमान में 8 विकास खंडों में इसका संचालन

0: किया जा रहा है, मोबाइल वेटनरी यूनिट इसको कहते हैं, जिनके द्वारा ग्रामीणों को आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पौड़ी जनपद की हम अगर बात करें तो लगभग 55,000 कॉल हमें प्राप्त हो चुकी हैं। ये कॉल जो प्राप्त होती हैं, ये पशुपालन विभाग के 1962 टोल फ्री नंबर कॉल सेंटर पर प्राप्त होती हैं, जो कि सीधे सीधे हमारे मोबाइल वेटनरी यूनिट से जुड़ा होता है। एक मोबाइल वेटनरी यूनिट में हमारे एक डॉक्टर साहब, एक उनके सहायक पैरावेट और एक वाहन चालक होता है। इसमें करीब 44,000 पशुओं को चिकित्सा सेवाएं हमारे 8 ब्लॉक के मोबाइल वेटनरी यूनिट द्वारा प्रदान की गई है।
1: सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के अवसर पर आज हरिद्वार में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। अधिमास में पड़ने वाली इस सोमवती पर बड़ी संख्या में लोग गंगा घाटों पर स्नान और कर्मकांड के लिए पहुंच रहे हैं। तड़के से ही हरिद्वार में गंगा घाटों पर देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु पवित्र स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं।
2: हमारी तीनों बहनों के साथ में और हमारे धर्मपत्नी को साथ में लेकर आए हैं स्नान करने के लिए। व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्था के लिए कोई कमी नहीं है, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है स्नान करने के लिए। यहाँ मतलब ये बहुत उत्सव है, हर आदमी के अंदर मतलब जज्बा है। सोमवती अमावस का भी हम नारे हैं और हरकी पेड़ी का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए हमें यहाँ स्नान करने के लिए आए।
3: सोमवती अमावस्या पर स्नान करने के लिए आए हैं। यहाँ का जो नजारा है गंगा मैया का वो देखने और स्नान करके इतनी शांति मिल रही है, बहुत बढ़िया। सारे लोग आनंद से बड़े आराम से सारी जनता नहा रही है।
1: वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर ने बताया कि सोमवती स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
4: सोमवती अमावस्या सबसे बड़ा स्नान है हरिद्वार का अंबाला क्षेत्र और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। सिटी में सिक्योरिटी एस्पेक्ट में 80

0: उन्होंने कहा कि बीसीए पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को रोजगारपरक तकनीकी कौशल प्रदान करेगा और उच्च शिक्षा, उद्यमिता और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी नए अवसर उपलब्ध कराएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित पूर्णागिरी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाते हुए साफ सफाई की एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के सहयोग से परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी। पौड़ी जिले में 162 मोबाइल वेटनरी यूनिट सेवा पशु स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहचान बनकर उभरी। और सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के अवसर पर हरिद्वार में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

जी हाँ श्रोताओं, हम भी आपको नए नए गीत, नए नए कलाकारों से, नए नए रंग से सजे कई कार्यक्रमों से हर दिन रूबरू करवाते हैं। वीवा सिस्टर्स की आवाज़ों में जावेद अख्तर का ये गीत अभी आपने सुना। और श्रोता हमसे जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, आकाशवाणी अल्मोड़ा के कार्यक्रम आप तक पहुँचते हैं और बहुत से श्रोताओं का हमसे नाता है, हमसे जुड़ते हैं। तो इसके लिए तो हम बस श्रोताओं से यही कहेंगे, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी। अगली गज़ल हिमायत अली सहर की है और इसे आवाज़ दी है तलत अजीज़ ने।

श्रोतों, आकाशवाणी अल्मोड़ा का आज 15 जून स्थापना दिवस है और आज हमारे सभी कार्यक्रम रंगे हैं खास दिन के रंगों में। तो अब अगली गजल पेश है अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में। प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व बिमरेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है, भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू

0: कहते हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है, तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओं हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं। अब तक

0: कहाँ थे?
1: शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
2: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई।
3: लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
2: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
3: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
2: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
3: क्या कंचा चाहिए?
0: नहीं।
2: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
0: नहीं।
3: तो फिर?
2: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
1: आह, कितने सुंदर कंचे। ओ,
2: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
0: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
2: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
4: सात का पहाड़ा।
5: सात एकम सात,
6: सात एकम सात।
2: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
0: आ गया। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
2: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
0: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
2: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था।

0: जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
1: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी,
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37 रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
1: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
1: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
1: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
1: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
1: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
1: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
1: हाँ हाँ, बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
1: हाँ हाँ,
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
1: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
2: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ।

0: कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा। जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो।
1: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
1: क्या किसी को कोई शक नहीं?
0: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा। अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे।
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
0: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे। क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
0: वो पैसे।
1: क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए, क्या रेलगाड़ी के लिए?
0: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
0: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी नोटिस है।
1: लाओ।
2: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
0: ओए,
2: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
0: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
2: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
0: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
2: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
1: ऑन द बेंच।
2: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
1: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
0: ध्यान दूंगा।
2: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों एक एक करके आओ।
2: क्लर्क बाबू बता रहे हैं,
5: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
2: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
0: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे। 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
2: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
2: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
3: माँ,
4: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
4: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
4: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
4: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
4: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
4: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
2: बुरे कंचे हैं, है ना?
4: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
2: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
4: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
7: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। श्रोताओं, आकाशवाणी अल्मोड़ा का आज स्थापना दिवस है और हमारी लोक संस्कृति, परंपरा, विरासत की अगर बात हो तो इसे संजो कर रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आकाशवाणी अल्मोड़ा ने। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों के जाने माने लोक कलाकारों की मधुर स्वर लहरियों को सुनने का अवसर भी हमें आकाशवाणी अल्मोड़ा से ही मिलता है। कुमाऊं की पहली महिला लोक कलाकार कपोतरी देवी की आवाज़ को भी संजो कर रखा है आकाशवाणी ने और आज उन्हीं की मधुर स्वर लहरी सुनते हैं उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम के शुभारंभ में।

धावी बाट में का फली डाली ओ लपकी देखाना हो बाट में का फल डाली ओ लपकी देख

सुख दुख उल्लास विषाद विरह मिलन उत्सव छोटे छोटे लोक पर्व त्यौहार ये सभी की आवाज़ होते हैं हमारे लोकगीत और इन लोकगीतों में हर तरह का संदेश मिलता है। जैसे अगर हम पेड़ ना काटने का संदेश अगर देखें तो पाते हैं कि लोकगीतों ने समय समय पर ऐसे कई संदेश हमें दिए हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें। ऐसा ही एक गढ़वाली लोकगीत आपको सुनवाते हैं और जाने माने कलाकार नरेंद्र सिंह नेगी ने इस गढ़वाली लोकगीत को स्वर दिया है और एक प्यारे से संदेश के साथ।

श्रोताओं, एक और जानी मानी आवाज़ से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं भाषा पंत की, और इस कुमाऊँ लोकगीत के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया है कि पहाड़ों का ठंडा पानी और यहाँ की मीठी पानी की बात ही निराली है। आइए सुनते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के

0: नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की रवि भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुँचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 153,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 253,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
4: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
5: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
6: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमरीका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मैक्स

0: मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है पर्वतीय क्षेत्रों में भट्ट की वैज्ञानिक खेती। जानकारी दे रही हैं सुश्री पूजा ओली।
2: आज जहां पूरे विश्व की आबादी तेजी से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रही है और पोषण से भरपूर आहार की खोज में है, वहीं सोयाबीन एक पोषण तत्वों से भरपूर उच्चतम फसल मानी जाती है। सोयाबीन एक लोकप्रिय व्यावसायिक फसल है जिसकी उच्च प्रोटीन और तेल सामग्री के कारण पूरे दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। उत्तराखंड में मुख्यतः 4 प्रकार की सोयाबीन की खेती और खपत की जाती है। पीले रंग का, हरे रंग का, बड़े बीज वाला काला सोयाबीन और छोटे बीज वाला काला सोयाबीन। इन काले बीज वाले सोयाबीन को भट, भटमाश और काला भट के नाम से भी जाना जाता है। पीले और काले बीज वाले सोयाबीन दोनों व्यापक रूप से उगाए जाते हैं, लेकिन खाद्य मूल्य के संदर्भ में छोटे बीज वाला काला सोयाबीन स्थानीय निवासियों के बीच अच्छी तरह से स्वीकृत और पसंद किया जाता है। यह पारंपरिक व्यंजनों का हिस्सा है और विभिन्न स्थानीय व्यंजनों की तैयारी में उपयोग किया जाता है, जैसे भुनी हुई काली सोयाबीन, चटनी और ग्रेवी जैसे व्यंजन, डुबका, चुटकानी, रस, जौला, भटिया और भटवारी। काली सोयाबीन यानी भट को ऑयल सीड से ज्यादा दाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त छोटे बीज वाली काली भट, जिसे भट की जंगली प्रजाति माना जाता है, वो बहुत सारे बायोटिक कंपाउंड्स का स्रोत है, जिसका उपयोग बुखार, अनिद्रा, सर्दी, सिरदर्द, छाती की समस्याओं के उपचार में किया जाता है और साथ ही साथ इसमें कैंसर विरोधी तत्व पाए जाते हैं। भट में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर जैसे पोषण तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें फाइटोस्ट्रोजेंस, डेडसीन और जेनिस्टीन पाया जाता है, जो स्तन कैंसर की रोकथाम के लिए प्रभावी है। इसमें वसा की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन एक बात का ध्यान देना चाहिए, इसमें गैस बनाने वाले एंजाइम्स होते हैं, इसलिए हमेशा पकाने से पहले इसे कुछ देर भिगोकर रखना चाहिए। इसमें

कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ ही मौजूद फाइबर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को तेजी से बढ़ाने से रोकता है, जो इन दालों को डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपोग्लाइसीमिया से जूझ रहे रोगियों के लिए उपयुक्त बनाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए काले बीन्स में मौजूद फोलेट बच्चे के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन अभी भी बड़े बीज वाले काले सोयाबीन की तुलना में इसकी मांग और उत्पादकता के बीच एक बहुत बड़ा अंतर मौजूद है। जबकि हैरानी की बात यह है कि छोटे बीज वाली काली भट में प्रोटीन की मात्रा 47% होती है और अन्य भट में प्रोटीन केवल 37% होता है। अब हम बात करें अगर इसकी सही तरीके से खेती की कैसे की जाए जिससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले सोयाबीन की खेती के लिए जलवायु व मिट्टी कैसी रखें। सोयाबीन की खेती गर्म और नम जलवायु में अच्छी रहती है। इसकी खेती के लिए उचित तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सोयाबीन की खेती के लिए जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी रहती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 सेल्सियस होना चाहिए। सोयाबीन की उच्चतम किस्में। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों को अनुशंसित सोयाबीन किस्मों के साथ समय पर सही सलाह प्रदान करते हैं। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने उत्तराखंड के लिए कई प्रजातियां जैसे वीएल सोया, पन सोया 21, पन सोया 23, वीएल भट 201 जैसी उन्नत प्रजातियों को किसानों द्वारा उगाए जाने के लिए रिकमेंड किया है। सोयाबीन की खेती के लिए तैयारी कैसे करें। खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई के बाद सोयाबीन की फसल को बोया जाना चाहिए। सोयाबीन की बुआई में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहले फसल सीजन में बोई फसल के साथ नहीं बोनी चाहिए। एक बात और, 100 मिलीमीटर वर्षा होने पर ही इसकी बुआई करना उचित रहता है। इससे कम बारिश में इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए। बुआई के लिए बीज व उसकी मात्रा। सोयाबीन की बुआई के लिए हमेशा प्रमाणिक बीज ही उपयोग में लेने चाहिए। यदि स्वयं के खेत में पिछली बार बचाए गए बीज प्रयोग में ले रहे हैं तो उसे पहले उपचारित कर लेना चाहिए। सोयाबीन की बुआई के लिए बीज की मात्रा का निर्धारण दानों के आकार के अनुसार बीज की मात्रा का निर्धारण करें। पौध संख्या 4 से 4.5 लाख हेक्टेयर रखें। वहीं छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। बड़े दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित करें। सोयाबीन की बुआई का तरीका और विधि। किसानों को सोयाबीन की बुआई हमेशा पंक्तियों में ही करनी चाहिए जिससे फसलों का निराई करने में आसानी होती है। इस विधि में प्रत्येक दो पंक्ति के बाद एक गहरी एवं चौड़ी नाली बनती है जिससे अधिक वर्षा की स्थिति में जल इन नालियों के माध्यम से आसानी से खेत से बाहर निकल जाता है और फसल ऊंची मेड़ पर रहने के कारण सुरक्षित बच जाती है। इसी प्रकार कम वर्षा की स्थिति में इन गहरी नालियों में वर्षा जल संग्रहित होता है और पौधे को नमी प्राप्त होती रहती है जिससे पौधों में पानी की कमी नहीं होती। इसके साथ ही साथ चौड़ी नाली के कारण प्रत्येक पंक्ति को सूर्य की रोशनी एवं हवा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। पौधे के फैलाव के लिए अधिक जगह मिलती है जिससे पौधे की शाखाओं में वृद्धि होती है तथा अधिक मात्रा में फूल एवं फलियां बनती है और परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। अब कतारों में बुआई में दूरी का निर्धारण। सोयाबीन की बुआई 45 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर की दूरी पर सीड ड्रिल की सहायता से या हल के पीछे खूंट से करनी चाहिए। सोयाबीन की फसल में खाद एवं उर्वरक प्रयोग। सोयाबीन की फसल में खेत की तैयारी के दौरान अंतिम जुताई के पश्चात 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या 5 हेक्टेयर कंपोस्ट की खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट देने से मिट्टी की फिजिकल संरचना में सुधार होता है, साथ ही साथ मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। अब बात करते हैं इसमें रासायनिक उर्वरकों का किस तरह से इस्तेमाल करें। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी उर्वरक देने से पहले मिट्टी की जांच करवाई जाए और इसका फायदा किसानों को यह होगा, पहला तो उसकी लागत कम लगेगी और दूसरा कम मात्रा में उसे पोषण तत्वों का प्रयोग करना पड़ेगा। सोयाबीन की फसल में 3 बार उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, पहला बुआई के समय, दूसरा बुआई के 20 से 25 दिन बाद और तीसरा 40 से 45 दिन की अवधि पर। बुआई के दौरान बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति पौधों को हो। एनपीके खाद का प्रयोग 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप पोटाश और जिप्सम भी दे सकते हैं। 20 से 25 दिन में जब निराई गुड़ाई हो जाए, इसके बाद 100 केजी प्रति एकड़ फॉस्फेट, 20 केजी पोटाश प्रति एकड़ और 5 केजी 90% वाला सल्फर प्रति एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा डोज 80 केजी प्रति एकड़ फॉस्फेट का

0: इस्तेमाल करना चाहिए। अब सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? बुआई से 45 दिन तक हमें सोयाबीन को खरपतवार रहित रखना चाहिए। उसके बाद सोयाबीन की फसल अपने आप में सक्षम हो जाती है और खरपतवार का नियंत्रण खुद कर लेती है। सोयाबीन की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बुआई के पश्चात एवं अंकुरण के पूर्व डिक्लोसुलाम 84%, WDZ 12.5 ग्राम प्रति एकड़ बुआई के 3 दिन के अंदर 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अब सोयाबीन में सिंचाई किस तरीके से करें? सोयाबीन की फसल खरीफ की फसल होने से इसमें सिंचाई की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यदि फली बनने के समय लंबा सूखा पड़ता है तो इसे 1 सिंचाई की आवश्यकता होती है। वहीं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बरसात के दौरान खेत में जल का भराव नहीं होना चाहिए। सोयाबीन की कटाई, फसल पकने से 15 दिन पहले 0.1% कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करें ताकि बारिश होने पर भी बीजों में फफूंद लगने का खतरा कम रहे। सोयाबीन की फसल को पकने में 40 से 145 दिनों का समय लगता है, जो उसकी किस्म पर निर्भर करता है। सोयाबीन की फसल जब परिपक्व हो जाती है तब उसकी पत्तियां पीली हो जाती है और सोयाबीन की फली बहुत जल्दी सूख जाती है। कटाई के समय बीजों में नमी की मात्रा लगभग 15% होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका भंडारण कैसे करें? तो बीजों का भंडारण के लिए दानों को 3 से 4 दिन अच्छी तरह सुखाकर रखें। भंडारण बोरियों में करें एवं ठंडे और हवादार स्थान पर रखें। भंडारण के समय बीज में नमी की मात्रा 10 से 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि फसल बीज के लिए तैयार की गई है तो उसकी गहाई थ्रेशर से न करें, वरना अंकुरण क्षमता प्रभावित हो जाती है। बीजों को नमी से मुक्त सूखी जगह पर या बोरियों में संग्रहित किया जाना चाहिए। भंडारण स्थान सूखा एवं नमीरोधी होना चाहिए। अब सोयाबीन की फसल के लिए मुख्यतः 3 बातों का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। पहला, जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त हो, वरना खेतों में ही फसल के खराब होने की संभावना रहती है। दूसरा, रोगों से बचाने के लिए समय समय पर दवा का छिड़काव। और तीसरा, केवल 1-2 सिंचाई की ही जरूरत इसे होती है। यदि उत्तराखंड में इस फसल की खेती अनुशंसित बेहतर किस्मों और उचित वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके की जाए तो यह वास्तव में क्षेत्र के लोगों के लिए आय सृजन का एक अच्छा स्रोत हो सकती है।
1: पर्वतीय क्षेत्रों में भट्ट की वैज्ञानिक खेती, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में सुश्री पूजा ओली से जानकारी अभी श्रोताओं ने सुनी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। संध्या 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार शाम 7:30 पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में आज सुनिएगा शैलजा मसीह के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। शाम 5:15 पर युवावाणी कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा युवा और रेडियो, आकाशवाणी अल्मोड़ा स्थापना दिवस पर ये विशेष रहेगा। संस्कृति जगत और आज का इतिहास भी युवा साथी सुनेंगे। इसके अलावा युवा साथियों के लिए वार्ता लेकर आएंगे युवाओं का साथी आकाशवाणी। वार्ताकार होंगी हिमानी रौतेला। संध्या 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे, जिसमें चर्चा के विषय रहेंगे विश्व बुजुर्ग दुराचार जागरूकता दिवस, योग बढ़ती उम्र के साथ कैसे स्वस्थ रहे का विज्ञान। और सुनिएगा वार्ता अनुभव संस्कृति और परंपरा के पुजारी, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारी विषय पर शशि शेखर जोशी की वार्ता उत्तरायण कार्यक्रम में ही आप सुन सकेंगे। संध्या 6:41 पर भक्ति संगीत प्रसारित होगा, आज सुनिएगा हरिहरन और अनूप जलोटा के गाए भक्ति वंदन।

संध्या 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें आज की बातें होंगी वर्षा ऋतु में बागवानी प्रबंधन विषय पर चर्चा सुनिएगा, जैविक खादों का उपयोग और लाभ। इसके अलावा आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता और लाभ, इस विषय पर क्षेत्र संकलित कार्यक्रम भी प्रसारित होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे संध्या 7:40 पर, रात 9:15 पर इंद्रधनुष में और रात 10:30 पर। सुगम संगीत पेश किया जाएगा सवरस में रात 8 बजे और रात 10 बजे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:45 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार। आज के फनकार हैं जाने माने मशहूर पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल। 14 जून 1989 को देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ और आज संगीत की दुनिया में जुबिन नौटियाल का वो नाम है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। आज उनकी आवाज़ के कई दीवाने हैं। जब वो मात्र 4 साल के थे तभी उन्होंने संगीत में रुचि दिखाना शुरू किया और साल 2011 में छोटे पर्दे पर एक सिंगिंग शो में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्हें फिल्मी दुनिया में सफलता मिली, या यूं कहिए कि फिल्मी दुनिया में उन्होंने कदम रखा बजरंगी भाईजान फिल्म के गीत जिंदगी कुछ तो बता, और ये पहला उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिला सिंगिंग का, और इसकी बदौलत वो दर्शकों के बीच बेहद मशहूर हुए और इनकी आवाज़ को लोगों ने बहुत सराहा।

तो श्रोताओं, जुबिन नौटियाल ने एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए हैं और एक लंबी फेहरिस्त है। उन्होंने द शौकीन्स में मेहरबानी, बजरंगी भाईजान का मैं जो सॉन्ग था वो जिंदगी जो अभी अभी आपने सुना, जज्बा के लिए बंदिया और कबीर सिंह का गाना तुझे कितना चाहने लगे, शहनशाह का रात लंबिया लंबिया, जैसे कई गाने हैं जिनकी शोहरत रातों रात फैली और लोगों ने सराखों पर बिठाया उनकी आवाज़ को।

तो शुद्ध कबीर सिंह, मरजावा, काबिल और शेरशाह जैसी बड़ी फिल्मों के जो गाने गाए जुबिन नौटियाल ने, वो बेहद लोकप्रिय रहे, कर्णप्रिय रहे। और राता लंबिया, जो कि शेरशाह फिल्म का गाना है, उसे IIFA अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिंदगी कुछ तो बता फिल्म के लिए के इस गाने, ये बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना है, इसके लिए उन्हें मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और अपनी बेहतरीन गायकी और रोमांटिक गाने और उनकी सादगी सभी लोगों को बेहद पसंद आती है और उनके गाने युवाओं के बीच बेहद पसंद किए जाते हैं। तो एक और खूबसूरत गाना जुबिन नौटियाल की आवाज़ में।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार, और आज के फनकार थे जाने माने पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं और इस समय हम श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं सदाबहार फिल्मी गीत।

आपसे प्यार हुआ जाता है। जी हाँ, ये खूबसूरत आवाज़ सुनकर आपको याद आ गई होंगी जानी मानी मशहूर गायिका और अभिनेत्री सुरैया। तो श्रोताओं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं। आज है आकाशवाणी अल्मोड़ा का स्थापना दिवस, और ये भी इत्तेफाक है कि आज ही जानी मानी मशहूर अभिनेत्री सुरैया की भी जन्म जयंती है 15 जून को। तो श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज हम अपने इस कार्यक्रम में। और आज सुरैया जमाल शेख, जो उनका असल नाम था, तो उनको श्रद्धा नमन करते हुए आज उनकी खूबसूरत आवाज़ का जादू बिखेरेंगे सदाबहार फिल्मी गीत में, और साथ ही उनकी अभिनीत फिल्मों के भी गाने सुनेंगे। तो आप सभी श्रोताओं को अंजू पांति का स्नेहिल नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं सुरैया की खूबसूरत आवाज़ के इस खूबसूरत गाने से।

तो श्रोताओं, 40वें और 50वें दशक में सुरैया ने हिंदी सिनेमा में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अदाओं में नज़ाकत, गायकी में नफासत की मलिका सुरैया जमाल शेख ने अपने हुस्न और हुनर दोनों से ही हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नई इबारत लिखी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ उनका जन्म हुआ। अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं सुरैया जी। नाजों में पली सुरैया ने हालांकि संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन आगे चलकर उनकी पहचान एक बेहतरीन अदाकारा के साथ साथ एक खूबसूरत आवाज़ की मलिका के रूप में हुई। सुरैया ने अपने अभिनय और अपने गायन से फिल्म जगत में खुद को साबित किया और शोहरत की बुलंदियों तक वो पहुंची अपनी इन दोनों ही हुनर के कारण।

तो श्रोताओं, सुरैया जी के फिल्मी करियर की बात करें तो शुरुआत बड़े ही रोचक अंदाज से हुई थी। गुजरे ज़माने के मशहूर खलनायक ज़हूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सुरक्षा ले ली, लेकिन सुरैया भारत में ही रही और अपनी आवाज़ का जादू और अपनी अदायगी का जादू वो बिखेरती रहीं।

श्रोताओं, साल 1948 से 1951 तक केवल 3 वर्षों के दौरान सुरैया ही एक ऐसी महिला कलाकार थीं जिन्हें बॉलीवुड में सर्वाधिक पारिश्रमिक दिया जाता था, और 40 से 50 का दशक सुरैया के नाम ही रहा ऐसा कहा जा सकता है। उनकी लोकप्रियता का ये आलम था कि उनकी एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक मुंबई में उनके घर के सामने घंटों खड़े रहते थे, यहाँ तक कि यातायात जाम हो जाया करता था। सोचिए कितना चाहते थे दर्शक उन्हें प्यार से।

तो श्रोताओं, साल 1936 से 1963 तक के करियर में सुरैया ने 67 फिल्मों में लगभग अभिनय किया और 338 गाने गाए। और हिंदी फिल्म जगत में सुरैया जी के शानदार योगदान के लिए उनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया। साल 1996 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिला। 2003 में सुरैया जी को दादा साहेब फाल्के अकादमी और स्क्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन द्वारा दादा साहब फाल्के की 134वीं जयंती पर विशेष समारोह में स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। साल 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए इंडिया पोस्ट द्वारा विभिन्न भूमिकाओं में उनकी छवि वाला एक डाक टिकट भी जारी किया गया।

तो श्रोताओं, हिंदी फिल्मों में अपार लोकप्रियता हासिल करने वाली सुरैया उस पीढ़ी की आखिरी कड़ी में से एक थीं जिन्हें अभिनय के साथ ही पार्श्व गायन में भी निपुणता हासिल थी, और यही वजह रही कि उन्होंने अपनी समकालीन अभिनेत्रियों में उन्हें ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, प्यार मिला, शोहरत मिली।

श्रोताओं, सुरैया जितनी सशक्त संजीदगी से अभिनय करती थीं उतनी ही वो बेहद बला की खूबसूरत भी थीं। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भी उनके ज़बरदस्त फैन रहे। साल 1954 में सुरैया की फिल्म मिर्ज़ा गालिब जब प्रदर्शित हुई तो स्क्रीनिंग पर पंडित नेहरू जी को भी आमंत्रित किया गया था और उस समय उन्होंने सुरैया से कहा था कि तुमने गालिब की रूह को जिंदा कर दिया अपनी आवाज़ देकर। सच, मिर्ज़ा गालिब वो फिल्म रही जिसमें उनकी शायरी को शायद लोगों ने और भी आसानी से तरन्नुम के ज़रिए समझा, उनकी यानी सुरैया की आवाज़ के ज़रिए।

तो श्रोताओं, जो बेहतरीन फिल्में रहीं सुरैया जी की, उनकी एक लंबी फहरिस्त है। कुछ फिल्मों के नाम आपको बताए देते हैं। शमा साल 1961 में आई, 1954 में मिर्ज़ा गालिब, दो सितारे 1951 में, 1950 में खिलाड़ी, 1951 में सनम, 1950 में कमल के फूल, 1949 में

जी हाँ, सुरैया जी भले ही दूर हैं, इस नश्वर संसार में नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ के ज़रिए वह हमेशा हमारे पास हैं। तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ उनकी आवाज़ को बेहद पसंद किया जाता था।

तो श्रोताओ, मनमोहक आवाज़, आकर्षक व्यक्तित्व और उतनी ही खूबसूरत अदाकारा सुरैया जी 31 जनवरी 2004 को इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह गईं। संगीत तो हमारे जीवन में हर पल रहता है और हर पल हमेशा रहेगा, लेकिन सुरैया जी की मधुर आवाज़ और उनके सशक्त अभिनय को हम ताउम्र याद रखेंगे। ऐसी अदाकारा, ऐसी गायिका बार बार इस दुनिया में नहीं आते, वो विरले ही होते हैं जो इस दुनिया में जन्म लेकर अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर जाते हैं। सुरैया जी उन्हीं में से एक रहीं। उन्हें बहुत बहुत श्रद्धा नमन आज उनकी जन्म जयंती पर।

जी हाँ श्रोताओं, सुरैया जी जैसी मशहूर अभिनेत्री की आवाज़ हो या उनका अभिनय, उन्हें हम कभी नहीं भूल पाएंगे। सदाबहार फिल्म गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM बैंड 14.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती एप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजने वाले हैं। अब थोड़ी देर में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है।

0: इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो की मौसम स्थिति के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। प्रधानमंत्री की स्टामर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शैलस्वर कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शैलजा मसीह का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

शैल स्वर कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे शैलजा मसीह का गाया ही कुमाऊनी लोकगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है जानकारी हमारे केंद्र से हमारी आज की सायंकालीन सभा के शेष तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। पब्लिक स्पीक आज रात्रि 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ देर बाद सायं 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे हिमानी रौतेला की वार्ता युवाओं का साथी आकाशवाणी। कार्यक्रम उत्तरायण का समय रहेगा सायं 5:45, जिसमें आज आप सुनेंगे अनुभव, संस्कृति और परंपरा के पुजारी, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारी विश्व विषय पर शशि शेखर जोशी की वार्ता। भक्ति संगीत कार्यक्रम में सायं 6:41 पर कलाकार होंगे हरिहरन और अनूप जलोटा। ग्राम श्रोता कार्यक्रम होगा ग्राम जगत सायं 7:00। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे आज सायं 7:40 पर। मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस का समय रहेगा रात्रि 8:00। फिल्म संगीत एक बार फिर आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:00 और फिल्म संगीत एक बार फिर आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। हमारी प्रातःकालीन सभा में कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु, तत्पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। प्रातः 7:10 पर श्री रामचरित मानस गान और प्रातः 7:30 पर लोकमंजरी कार्यक्रम में कलाकार होंगे राजन राम। शास्त्रीय संगीत हम आपको सुनवाएंगे कल प्रातः 8:30 पर। फार्मेसी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत नजर का समय रहेगा कल प्रातः 9:05। सबरंग कार्यक्रम में कल प्रातः 10:05 पर कलाकार होंगे हिमा सरदेसाई, गुलाम अली और जगजीत सिंह। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 11:00। लोकसुर ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल प्रातः 11:30 पर। मेरी पसंद फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:00। महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर संसार कल दोपहर 12:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर कलाकार होंगे पंकज उदास, अनुराधा पौडवाल, जगजीत सिंह, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1307वीं कड़ी हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 1:30 पर। उत्तराखंड के लोकगीत आप सुनेंगे कल दोपहर 2:00। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती की बातें कल दोपहर 2:30 पर। एक ही फनकार फिल्म संगीत के कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल दोपहर 2:45 पर। और सदाबहार फिल्मी गीत आप सुनेंगे कल अपराह्न 3:00।

कल से 7:40 पर मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस का समय रहेगा कल रात 8 बजे। फिल्म संगीत एक बार फिर हम आपको सुनवाएंगे कल रात 9:15 पर। फरमाइशी गजलों का कार्यक्रम महफिल आप सुनेंगे कल रात 9:30 पर। और खेल दर्पण कल रात्रि 10 बजे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत हम आपको सुनवाएंगे कल रात्रि 10:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से हमारी आज की सायंकालीन सभा की, शेष तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हमारी सायंकालीन सभा में कल सायं 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में कलाकार होंगे राजन राम, युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी कल सायं 5:15 पर, कार्यक्रम उत्तरायण का समय रहेगा कल सायं 5:45, भक्ति संगीत कार्यक्रम में कल सायं 6:41 पर कलाकार होंगे हरिओम शरण और लखबीर सिंह लखा, किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी कल सायं 7:00 जिसमें कल हम आपको सुनवाएंगे सरकार के 12 वर्ष मशरूम पोषण और मूल्य संवर्धन की नई दिशा दिवस विषय पर डॉक्टर स्वाति गर्वयाल से की गई भेंट वार्ता। फिल्म संगीत आप सुनेंगे

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र मीनाक्षी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे हाथों में स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, तब भी रेडियो क्यों इतना प्रासंगिक है? शायद इसलिए क्योंकि रेडियो एक माध्यम ही नहीं बल्कि एक साथी है, एक ऐसा साथी जो बिना दिखाई दिए हमारे साथ चलता है, हमारी बातें सुनता है और हमें दुनिया से जोड़ता है। आज का युवा तेजी से बदलती दुनिया का हिस्सा है, उसके पास सपने हैं, लक्ष्य हैं और उन्हें पूरा करने की ऊर्जा है, लेकिन इस दिशा में सही जानकारी, प्रेरणा और मार्गदर्शन भी उतना ही जरूरी है। ये काम रेडियो वर्षों से करता आया है। रेडियो की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दिल से दिल तक पहुंचता है। जब कोई युवा अपनी सफलता की कहानी सुनाता है, कोई विशेषज्ञ करियर की सलाह देता है या कोई कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करता है, तब रेडियो केवल सूचना नहीं देता बल्कि प्रेरणा भी देता है। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं आकाशवाणी अल्मोड़ा का स्थापना दिवस। आज ही के दिन 15 जून 1986 को आकाशवाणी अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी। आज का दिन उन अनगिनत यादों, सूचनाओं, गीतों और प्रेरणादायक संदेशों का उत्सव है जो दशकों से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। दोस्तों, रेडियो सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस भी होता है। तो चलिए कार्यक्रम में अब सुनाते हैं आपको वार्ता। वार्ताकार है हिमानी रौतेला और वार्ता का विषय है युवाओं का साथी आकाशवाणी।
1: कल्पना कीजिए एक ऐसा साथी जो आपके साथ तब भी होता है जब इंटरनेट पर सिग्नल हट जाता है। एक ऐसा दोस्त जो आपको बिना देखे मंजिल का रास्ता दिखाता है। वह आवाज है आकाशवाणी। जब हम सूचना क्रांति की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान इंटरनेट पे जाता है, लेकिन भारत के दूर दराज के इलाकों में आज भी आकाशवाणी युवाओं का सबसे भरोसेमंद साथी बना हुआ है। शिक्षा और करियर का मार्गदर्शन, आकाशवाणी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ज्ञान का स्रोत है। युवा वाणी जैसे कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC और कौशल विकास की सटीक जानकारी मिलती है। युवाओं को सही दिशा देने वाला माध्यम आकाशवाणी से विभिन्न कार्यक्रम युवाओं को शिक्षा, करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। आज लाखों विद्यार्थी सरकारी नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे

में मार्गदर्शन और प्रेरणा बहुत जरूरी हो जाता है। आकाशवाणी पर विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझाव, करियर संबंधी चर्चाएं और प्रेरणादायक कार्यक्रम युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यह उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि मेहनत और सही दिशा से सफलता प्राप्त की जा सकती है। संस्कृति और भाषा से जुड़ाव। आज के दौर में जहां हम अपनी जड़ें भूलते जा रहे हैं, आकाशवाणी शुद्ध भाषा और क्षेत्रीय संस्कृति को जीवित रखने का कार्य करती है। यह युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व महसूस कराता है। आज इंटरनेट पे सूचनाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन हर जानकारी सत्य और उपयोगी हो जरूरी नहीं। सोशल मीडिया पर कई बार गलत जानकारी भी तेजी से फैल जाती है। ऐसे समय में आकाशवाणी एक भरोसेमंद और प्रामाणिक माध्यम के रूप में युवाओं के सामने आता है। समाचार, चर्चाएं, विज्ञान, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे से जुड़े कार्यक्रम युवाओं को जागरूक नागरिक बनाने में सहायता करते हैं। आकाशवाणी केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता भी विकसित कराता है। तकनीकी और नवाचार के दौर में आकाशवाणी की भूमिका। आज युवा तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नई खोज, डिजिटल परिवर्तन, स्टार्टअप और बदलती दुनिया को समझना जरूरी हो गया है। आकाशवाणी समय के साथ बदलते विषयों को युवाओं तक सरल भाषा में पहुंचाता है। विज्ञान, नवाचार, शिक्षा और सामाजिक बदलाव से जुड़े कार्यक्रम युवाओं को नई सोच अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि सीखने की आदत भी विकसित करता है। सामाजिक संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच। आज के समय में केवल सफल होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है। आकाशवाणी ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करता है जो समाज के प्रति जागरूक बढ़ाते हैं। पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, महिला सम्मान, स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग जैसे विषय युवाओं में सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। इससे युवा केवल अपने भविष्य के बारे में ही नहीं, बल्कि समाज के विकास के बारे में भी सोचते हैं। ग्रामीण युवाओं के लिए वरदान। भारत का एक बड़ा हिस्सा गाँव में रहता है। आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं सीमित है। ऐसे स्थानों पर आकाशवाणी आज भी सबसे सुलभ और प्रभावी माध्यम है। खेती, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। रेडियो कम साधनों में भी लोगों तक ज्ञान और जानकारी पहुंचाने का कार्य करता है। समाज और राष्ट्र निर्माण में भूमिका। युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं। यदि युवाओं की सोच सकारात्मक और जागरूक होगी तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। आकाशवाणी युवाओं को केवल मनोरंजन नहीं देता, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने की प्रेरणा भी देता है। राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भावना, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर आधारित कार्यक्रम युवाओं में सामाजिक चेतना जगाते हैं। यह माध्यम हमें सिखाता है कि केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए भी सोचें। अब आकाशवाणी न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए मोबाइल पर भी उपलब्ध है। यह साबित करता है कि रेडियो पुराना नहीं हुआ है, बल्कि उसने खुद को आधुनिक युवाओं के अनुसार ढाल लिया है। आज का युवा जिम करते हुए, पढ़ाई करते हुए पॉडकास्ट के रूप में आकाशवाणी को सुन सकता है। आज सोशल मीडिया के दौर में जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं। ऐसे समय में आकाशवाणी एक भरोसेमंद साथी के रूप में सामने आता है। आकाशवाणी युवाओं की प्रतिभा को मंच देती है। कई युवा अपनी आवाज, गायन, लेखन और विचारों के माध्यम से अपनी पहचान बना रहे हैं। यह मंच केवल मनोरंजन नहीं देता, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए भी आकाशवाणी बहुत उपयोगी है। जहां इंटरनेट या अन्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती, वहां रेडियो आज भी जानकारी और जागरूकता का माध्यम है। साथियों, आकाशवाणी न केवल देश की आवाज बनने का काम नहीं किया, बल्कि देश के युवाओं के सपनों को भी आवाज दी है। यह हमें प्रेरित करता है कि सकारात्मक सोच रखें, अपने लक्ष्य और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अंत में

0: बस इतना कहना चाहूंगी कि साथी वही होता है जो मुश्किल समय में साथ ना छोड़े। पहाड़ की ऊंचाइयों से लेकर समंदर के किनारों तक जहां मोबाइल टावर फेल हो जाते हैं वहां आकाशवाणी की लहरें पहुंचती हैं। यह हमें स्क्रीन की दुनिया से निकलकर सुनने और समझने की दुनिया में ले जाता है। तो आइए अपने इस पुराने और भरोसेमंद साथी का हाथ थामें। आकाशवाणी सिर्फ आवाज नहीं है, यह युवाओं के सपनों की पहचान है और हर उस दिल की धड़कन है जो कुछ कर दिखाना चाहती है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था युवाओं का साथी आकाशवाणी। वार्ताकार हैं हिमानी रौतेला। चलिए दोस्तों, अब करते हैं आपका मनोरंजन इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, कार्यक्रम युववाणी में चले बढ़ते हैं हमारे आज के अंक संस्कृति जगत की ओर, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रकृति, पवन और भारतीय संस्कृति के बारे में। भारतीय संस्कृति में प्रकृति केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवनदाता और पूजनीय शक्ति है। हमारी ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले से ही प्रकृति और मानव के बीच संतुलन का संदेश दिया था। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पंच महाभूतों को जीवन का

आधार माना गया है। इन पंच महाभूतों में वायु का स्थान विशेष है। वायु के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे वेदों में वायु देवता की स्तुति दी गई है। योग और आयुर्वेद में भी श्वास और प्राण वायु को स्वास्थ्य और दीर्घ आयु का आधार बताया गया है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना सदैव रही है। आज 15 जून को विश्व पवन दिवस भी मनाया जाता है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की शक्तियाँ केवल जीवन का आधार नहीं बल्कि विकास का माध्यम भी है। भारतीय परंपराओं में वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की अनेक परंपराएं रही हैं। हमारे त्यौहार, लोकगीत और लोक कथाएं भी प्रकृति से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। प्रकृति के प्रति ये सम्मान हमारी सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी पहचान है। आज आवश्यकता है कि हम आधुनिक जीवन की व्यवस्थिता के बीच प्रकृति से अपने संबंध को और मजबूत करें, पेड़ लगाएं, पर्यावरण की रक्षा करें और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। यही हमारी संस्कृति का संदेश है और यही हमारी जिम्मेदारी भी। आइए प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का संकल्प लें, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजें और एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से ले चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर और सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: पढ़ाई के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो, सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं, विश्वास जगाएं।
2: दोस्तों, हर दिन का अपना एक खास महत्व होता है। ऐसे में आज के दिन भी कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्हें जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। सबसे पहले बात करते हैं अपने खूबसूरत पहाड़ और हमारे अपने गौरवशाली इतिहास की। आज का दिन उत्तराखंड और विशेषकर अल्मोड़ा के पत्रकारिता इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। आज ही के दिन यानी 15 जून 1918 को कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी ने अल्मोड़ा से ऐतिहासिक शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। जब अंग्रेज़ों ने अल्मोड़ा अखबार पर ताला लगा दिया था तब पहाड़ की जनता की आवाज़ और आज़ादी की अलख को जगाए रखने के लिए शक्ति का जन्म हुआ। इस अखबार ने कुली बेकार जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ आंदोलन में एक मशाल का काम किया था। साथ ही चलिए आप खेल की दुनिया का रुख करते हैं। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन 15 जून 1909 को क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था यानी ICC की स्थापना हुई थी। शुरुआत में से इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। और साथ ही फुटबॉल के चाहने वालों के लिए भी ये दिन बेहद ख़ास है क्योंकि साल 1954 में आज ही के दिन UEFA का गठन स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो साल 1947 में आज ही के दिन नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत के विभाजन के माउंटबेटन प्लान को अपनी औपचारिक मंजूरी दी थी। देश की तकदीर और भूगोल को बदलने वाला ये एक बेहद भावुक और बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। भारत के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी नेता किशन बाबूराव हजारे, जिन्हें हम अन्ना हजारे के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 1937 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने सूचना का अधिकार और लोकपाल आंदोलन के जरिए देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी अलख जगाई थी। दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में शामिल और स्टील किंग के नाम से मशहूर भारतीय उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल का 1990 में जन्म आज ही के दिन राजस्थान में हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब फिर से सुनाते हैं आपको एक खूबसूरत सा गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं अंतिम चरण की ओर और जान लेते हैं बीते दिन पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। हमारा कल का प्रश्न था, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही उत्तर है, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हमें लिख भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, पूजा परिहार, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी, ग्राम पुतकी कला कवर्था छत्तीसगढ़ से विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे ने, एसएम जावेद गुमला झारखंड से, ग्राम पीपरलोद सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश शर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बीबी आराध्या साहू ने। दोस्तों, आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, आकाशवाणी अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी? अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर और भेजना चाहते हैं हमें, तो नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9411001122 और लिख भेजिए अपना सही उत्तर हमारे इस पते पर। कल फिर होगी मुलाकात आप सभी से एक नई रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो मित्र मीनाक्षी को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवा वाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुननी सभ्य श्रोता लोगन के नारायण दत्त पाठक है। नमस्कार श्रोताओं, बुजुर्ग हमारे समाजक अमूल्य अनुभवक भंडार हुन। उनार दगाड़ सम्मानजनक और प्रेमपूर्ण व्यवहार करण हम सब लोग न नैतिक कर्तव्य बण। बुजुर्ग ने देख रेख, उनर स्वास्थ्य देखभाल, उनर जो आर्थिक हित छन उनर रक्षण और वीक दगाड़ दगड़ा है उनार दगाड़ मित्रवत व्यवहार करें। यो वृद्धावस्था में उनके आवश्यकता ले पड़े। अगर उनार दगाड़ यश व्यवहार नहीं करी जान तो कति न कति मानसिक तौर पर अपन के असमर्थ महसूस करने लगें। लेकिन हमारे समाज में जैसे जैसे हम शिक्षा स्तर के आगे बढ़ाते जाने लग रहे हैं, शिक्षा विस्तार होने लग रहा, हम लोग सब उन्नति करने लग रहे हैं, लेकिन वो एक दगड़ दगड़ा है देखने में हो कि समाज में बुजुर्ग नाग प्रति कति न कति दुर्व्यवहार हमेशा होते रहूँ। बुजुर्ग नाग प्रति यो दुर्व्यवहार के रोकना लीजिए और दुर्व्यवहारक प्रति समाज में जागरूकता फैलाना लीजिए। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा जून 2006 में यो दिन मनोने शुरुआत करी गई, जैके सन 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली। तब बटी हर साल 15 जून के बुजुर्ग दुराचार जागरूकता दिवसा रूप में पूरे दुनिया में मनाई जाऊँ। एल साल सन 2026 में यो कार्यक्रम विशेष तौर पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विकलांग व्यक्तियों और अधिकारियों पर एक प्रमुख बैठक के दौरान आयोजित करी जाने लग रहा, जो उम्र बढ़न और विकलांगता के बीच संबंध के उजागर करें। भले ही हम कार्यक्रम ना आयोजन करते रहनु, हम बुजुर्ग नाग प्रति सेवा भाव एक बात करनु, बुजुर्ग नाग प्रति दुर्व्यवहार न करने की हम बात करनु, लेकिन जब समाज में आसपास अगर कति यश किस्मा दुर्व्यवहार बुजुर्ग नाग प्रति अगर हमारे कोयले मित्र के कोयले श्रोता के दिखाई जाओ तो उनके वीक प्रति निश्चित तौर पर अगिल का बढ़ चें अगिल ओण चें और समाज में जागरूकता लुणाग लीजिए, समाज उन लोगों के शिक्षित करना लीजिए अगिल ओण चें जो बुजुर्ग नाग प्रति दुर्व्यवहार करनी। क्योंकि अगर बुजुर्ग छन तो हमार मार्गदर्शन बहुत सहज और सरल रूप में है जा। हमार लोक भाषा में एक कहावत ली छे, जैक बुढ़ वी कुड़। यो सब कुछ द्वि अक्षरन में कह जा कि जैक घर में बुजुर्ग व्यक्ति हुनी वीक घर की सफलता वीक घर का विकास सहज में है जा। कार्यक्रम में हम अगिल के अपन बातचीत करते रहूँ। अहलापों के सुनो एक कुमावनी लोग।

0: श्रोता वाले आपन सुनो हीरा सिंह राणा अक्सर में कुमावनी लोगी।
1: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
2: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
3: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिसे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
7: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोता कार्यक्रम में आप हम आपको सुन लग रही हैं एक वार्ता, जैक विषय छ अनुभव, संस्कृति और परंपरा के पुजारी, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारी। वार्ताकार छन श्री शशि शेखर जोशी।
8: दुनिया की आबादी में एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों का है। समाज का वो वर्ग जिसने अपने अनुभव, जानकारी और श्रम से समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। मानव सभ्यता के विकास में बुजुर्गों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनके बिना सभ्यता की वर्तमान स्वरूप की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज के वरिष्ठ सदस्य होने के साथ ही जानकारी, अनुभव, संस्कृति और परंपरा के संवाहक भी होते हैं। किसी भी राष्ट्र और समाज में बुजुर्गों की भूमिका एक पथ प्रदर्शक की है, जो अपने ज्ञान और अनुभव से नई पीढ़ी की राह आसान बनाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया में 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2020 में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या लगभग 1 अरब थी, जो 2030 में 1.4 अरब हो जाएगी और साल 2050 में ये संख्या 2.1 तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 15 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। 2050 तक यह संख्या 30 करोड़ हो जाने का अनुमान है। भारत की जनसंख्या में वृद्ध आबादी का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 80 वर्ष से ऊपर की आयु की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। मृत्यु दर में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, चिकित्सा विज्ञान के विकास के कारण यह वृद्धि देखने में आई है। जिस हिसाब से दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ी है, उसी हिसाब से उनकी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। बुजुर्ग, जिन्होंने समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है, आधुनिक समय में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा गया है और उनको परिवार का अगुवा माना गया है। बदले हुए सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी माहौल में बुजुर्ग कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में बुजुर्ग स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों, आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक उपेक्षा और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य समस्या बुजुर्ग आबादी की एक प्रमुख समस्या है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर की क्षमताएं कम होने लगती हैं और अधिकतर बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाओं और देखभाल की नियमित तौर पर आवश्यकता होती है। बुजुर्ग आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसकी पहुंच से स्वास्थ्य सुविधाएं दूर हैं और जिनको स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिल पाती है। इस कारण कई बुजुर्ग शारीरिक दिक्कतों के साथ ही मानसिक अवसाद से भी पीड़ित रहते हैं। सामाजिक उपेक्षा और अकेलापन भी बुजुर्ग आबादी के लिए एक सच्चाई है। बदलते सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार तेजी से गायब हो रहे हैं और उनकी जगह एकल परिवार आ रहे हैं। शिक्षा और रोजगार के लिए युवा पीढ़ी पलायन कर रही है और बुजुर्ग अकेले रहने को मजबूर हैं। परिवार और समाज के पास उनके लिए समय नहीं है, वो उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। सामाजिक अलगाव और अकेलापन उनको मानसिक तौर पर बीमार कर रहा है। बुजुर्ग आबादी का एक बड़ा हिस्सा दुर्व्यवहार का शिकार हो रहा है। उनको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में बुजुर्ग शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को झेलने के लिए

पिशपते हैं। कई बार उनकी संपत्ति कब्जाने के लिए उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार, मारपीट, उपेक्षा, आर्थिक धोखाधड़ी की जाती है, जो उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए खतरा है। ऐसी स्थिति में उनको समाज और व्यवस्था की मदद लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे होता ये है कि वो लगातार तनाव और सुरक्षा में जीते हैं। कई बुजुर्गों के पास नियमित आय नहीं होती है, क्योंकि उनके पास कोई भी आय का जरिया जैसे पेंशन आदि नहीं होती है, उनके पास कोई बचत भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए आर्थिक संसाधनों का इंतजाम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। वो अपने खर्चे उठाने में असमर्थ हो जाते हैं और प्रताड़ना का शिकार होते हैं। आज बड़ी संख्या में बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा भी उनके लिए एक चुनौती है। बीमार पड़ने की स्थिति में तत्काल मदद भी उनको नहीं मिल पाती है। संयुक्त परिवारों के विघटन के चलते बुजुर्गों की सुरक्षा खतरे में है। चोरी, ठगी और अन्य अपराधों के वो आसान शिकार बन जाते हैं। आज डिजिटल युग में तकनीक हमारे जीवन में शामिल हो चुकी है। आज अधिकतर कार्य ऑनलाइन किए जाते हैं, पर बड़ी बुजुर्ग आबादी तकनीक से कदम मिलाने में असमर्थ है। उनको कई सेवाओं का लाभ उठाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर वो उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी और ठगी हो रही है। बुजुर्गों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार और उनकी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। आज हमारे सामाजिक मूल्य बदलते जा रहे हैं और बुजुर्गों का महत्व कम होता जा रहा है। संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भी बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार बढ़ रहा है। बढ़ता आर्थिक दबाव भी इसके लिए जिम्मेदार है। इन सब स्थितियों के बीच साल 2006 में इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज सामने आया। इसने दुनिया के स्तर पर बुजुर्गों की समस्याओं को उजागर करने और उनके समाधान की ओर समाजों, सरकारों को प्रेरित करने के लिए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की शुरुआत की। साल 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर 15 जून को आधिकारिक रूप से विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस घोषित किया गया। हर साल मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार की पहचान करना है। यह वृद्धजनों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की बात करता है। यह दिवस परिवारों, समाजों, समुदायों को जागरूक और संवेदनशील बनाते हुए सरकारों को बुजुर्ग केंद्रित नीतियां बनाए जाने के लिए प्रेरित करता है। यह दिवस बुजुर्गों और युवाओं को आपसी संवाद का एक मंच प्रदान करता है। इसके कारण दुनिया भर का ध्यान बुजुर्गों की समस्याओं की ओर जाता है। बुजुर्ग कोई बोझ नहीं है, बल्कि वो हमारे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक सभ्य और संवेदनशील समाज उसी को कहा जा सकता है जो अपने बुजुर्गों का सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करता है। किसी भी समाज का आकलन उसके बुजुर्गों की स्थिति को देखकर किया जा सकता है। बुजुर्गों की समस्याएं उनकी व्यक्तिगत समस्याएं नहीं हैं, बल्कि ये पूरे समाज की समस्याएं हैं। बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान करने के लिए परिवारों, समाजों और सरकारों को मिलकर काम करना होगा। इसके लिए कई स्तरों पर काम करने की ज़रूरत होगी। यूं तो सरकार के स्तर पर बुजुर्गों के कल्याण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, पर वो इतने प्रभावी नहीं जान पड़ते। सरकार को चाहिए कि अपनी नीतियों में बुजुर्गों के कल्याण को केंद्र में रखे, उनके लिए कानूनी संरक्षण को मजबूत करे। सरकार को स्वास्थ्य, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं को बुजुर्गों के लिए और अधिक प्रभावी बनाना होगा। सरकारी व्यवस्थाओं को बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। समाज को भी बुजुर्गों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का माहौल विकसित करना होगा। सामाजिक तौर पर बुजुर्गों के प्रति जागरूकता लानी होगी। सामुदायिक सहयोग बढ़ाकर बुजुर्गों की समस्याओं पर बात करनी होगी, उनको हल करना होगा। यहाँ पर परिवारों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बुजुर्गों की अधिकतर समस्याएं परिवार से जुड़ी हुई हैं। परिवार के तौर पर हमें चाहिए कि हम बुजुर्गों को सम्मान दें, उनकी भावनाओं को समझें, उनको नियमित समय दें और परिवार के निर्णयों में उनको शामिल करें। बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक सुरक्षा पर भी परिवारों को ध्यान देना होगा। इसके लिए वो सरकार की वृद्धावस्था पेंशन तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का फायदा भी उठा सकते हैं। सामाजिक संगठन भी इस दिशा में कई काम कर सकते हैं। वो समाज में जागरूकता फैलाकर बुजुर्गों के लिए संवेदनशील माहौल बना सकते हैं। सामाजिक संगठन सरकार के साथ मिलकर बुजुर्गों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चला सकते हैं। बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य निधि हैं। उनका ज्ञान और अनुभव हमारे लिए आगे बढ़ने की राह है। उनको सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है। जब
बुजुर्ग सुरक्षा

0: विकसित और खुशहाल होंगे तभी समाज का समग्र विकास संभव होगा।
1: अनुभव, संस्कृति और परंपरा के पुजारी, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारी, श्रोतावल्लय यु विषय पर आपन सुनी वार्ता, वार्ताकार श्री शशि शेखर जोशी। और कार्यक्रम में अब हम आपको सुन लग रहे हैं एक गढ़वाल लोकगीत दीपा चौहान अक्षर में।

0: श्रोता आपू सुन लग रहा छा दीपा चौहान अक्षर में गढ़वाल लोकगीत।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की

0: टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी

0: यान के।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: श्रोता, कार्यक्रम में अब हम आपको सुन लग रहे हैं एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। विषय छ, बढ़ती उम्र के साथ कैसे स्वस्थ रहें।
4: श्रोता, आज हम बात कर रहे हैं बढ़ती उम्र के साथ कैसे स्वस्थ रहें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय सदर लखनऊ से सेवानिवृत्त सीनियर फार्मेसी अधिकारी डॉक्टर राधा बिष्टे जी। डॉक्टर राधा बिष्टे जी, नमस्कार।
5: नमस्कार जी।
4: सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित होता है, और या यूं कहें कि स्वास्थ्य में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं।
5: जहाँ तक प्रश्न है बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य हमारा कैसे प्रभावित होता है, तो हमारी जो शारीरिक क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के तरह हमारी क्षमता और ऊर्जा कुछ ह्रास होता है, इसलिए उसका प्रभाव हमारी मांसपेशियों पर पड़ता है, हमारी नस नाड़ी पर पड़ता है, उसके अलावा हमारी हड्डी कमजोर होने लग जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होने लग जाता है। तो इन सबको हमें संतुलित करने के लिए ये सब शारीरिक समस्याएं जो आती हैं उनसे ध्यान देना पड़ेगा
4: जी। पाचन तंत्र भी शायद इस उम्र में आते आते कुछ प्रभावित होता होगा।
5: हाँ जी।
4: तो इस उम्र में जब कोई स्वास्थ्य समस्याएं आ जाती हैं, अर्थात या कोई रोग हो जाता है, तो उनका निदान हमें किस तरह से करना चाहिए?
5: अगर हमारा ये शरीर में अगर किसी भी तरीके की बीमारी या हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, और तो हमें तुरंत जाकर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, और जिस तरह की समस्या हमारी है उस तरह से विशेषज्ञ के पास भी जाना पड़े। जैसे अगर हमारे पेट की समस्या है, पाचन की समस्या है, तो हम गैस्ट्रो के पास जाएं, और हमारे को सामान्य अगर है तो हम फिजिशियन के पास जाएं, और हमें तुरंत चिकित्सक से संपर्क करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए।
4: अर्थात कि जिस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं उस तरह के विषय विशेषज्ञ से हमें मिलना चाहिए और चिकित्सकीय परामर्श करना चाहिए, और अगर कोई समस्या हो और उसका निदान आवश्यक हो तो उसके लिए जो दवाएं चिकित्सक देते हैं उनके द्वारा जो सुझाई दवाएं जितने समय के लिए होती हैं शायद उतने समय के लिए उनको नियमित रूप से लेना आवश्यक होता होगा।
5: चिकित्सक के पास जाएं और वो जांच पड़ताल के लिए अगर आपको भेजते हैं तो नियमित अपनी जांच करवाएं। करवाने के बाद जैसा वो निर्देश देते हैं, जिस तरह की दवाई हमें वो देते हैं, जितने दिन तक इलाज चलेगा कहते हैं, और जो भी उनको उचित लगता है उनके नियमों का पालन करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, उससे स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए।
4: अच्छा, कभी कभी ऐसा दिखाई देता है समाज में कि लोगों को थोड़ा सा अल्प जानकारी दवाओं की होती है और कोई रोग उनको हो जाता है तो वो तुरंत जाकर के स्वयं ही दवा खरीद के लाते हैं और खुद ही उसका सेवन करने लग जाते हैं, क्या ऐसा करना उचित है?
5: ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसके लिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहूंगी कि अपने मन से कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। और कई लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर जाते हैं, वहां से लेकर के दवा खाने लग जाते हैं, एंटीबायोटिक खाने लग जाते हैं, ये बिल्कुल ही निषेध है। और हमें कभी भी दवा अपने मन से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कौन सी दवा कहाँ पर हमारे शरीर के अनुसार कहाँ पर उसका प्रभाव पड़ेगा ये कोई नहीं जानते, और साइड इफेक्ट हर दवा के होते हैं, इसलिए चिकित्सक के बिना निर्देशानुसार बिल्कुल भी कोई दवा नहीं लेनी चाहिए।
4: यानी कि कौन सी दवा कब

0: और कैसे लेनी चाहिए ये केवल चिकित्सक ही बता सकता है, इसलिए उन्हीं के परामर्श के अनुसार दवा लेनी चाहिए। अच्छा, बढ़ती उम्र के साथ जैसा कि आपने बताया तमाम प्रकार की परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं और साथ में पाचन क्रिया भी सुस्त हो जाती है, तो मानसिक रूप से भी व्यक्ति थोड़ा थकान जल्दी महसूस करने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्य का जो आहार विहार है वो कैसा होना चाहिए?
1: हाँ, सर्वप्रथम मैं आहार की बात कर लूँ
0: जी।
1: आहार में संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, पेय पदार्थों की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए
0: जी।
1: जल और फल पर ज्यादा रहना चाहिए, सुबह नाश्ता अवश्य करें, दिन में संतुलित जो हमारा भोजन है जिसमें सलाद है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, चावल है, जो भी चीजें उचित हैं हमारे शरीर के लिए मजबूत बनाने के लिए, सक्षम और सशक्त बनाने के लिए, वो भर पेट खाना चाहिए। और इसके अलावा हमें अगर पाचन हमारी क्रिया कैसी है उसके अनुसार मसाले, तेल और बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन को नहीं लेना चाहिए। अब मैं विहार की बात करूं तो हमारा शरीर चूंकि थोड़ा शिथिलता की ओर जाता है, हमारे पाचन क्रिया भी थोड़ा सा शिथिल होने लग जाती है, जठराग्नि में की जो ऊर्जा होती है वो भी कम होती है, इसलिए सुबह उठ करके हमें पहले तो टहलना चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए जो कि हमारी हमारे मांसपेशियों को तो ताकत देती देती है, उसके अलावा हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रॉपरली फ्लो में रखती है, तो उससे कई रोग ऐसे होते हैं कि इससे दूर होते हैं। और हमें अपने हल्के फुल्के काम स्वयं करने चाहिए, शारीरिक क्रियाएं करते रहने चाहिए क्योंकि हमें अपने शरीर को चलायमान रखना है। और इसके अलावा नींद बहुत जरूरी है लेना, क्योंकि आराम काम के साथ ही साथ हमें इस उम्र में आराम की भी आवश्यकता होती है और नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, क्योंकि हर जब हम नींद में रहते हैं हमारे अंदर की शरीर के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो रिपेयर करते हैं हमारे शरीर की कुछ कमियां अगर हैं तो उसको सही करते हैं, उसको मंथन करके हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में बहुत सहायक होते हैं, इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं।
0: यानी कि एक संतुलित और नियमित दिनचर्या के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है, साथ ही साथ जब हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करना बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए इस उम्र में व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सके कि उसका मन जो है स्वस्थ रहे।
1: जितना स्वस्थ रखना तन को आवश्यक है उससे ज्यादा स्वस्थ रखना हमें मन को स्वस्थ रखना आवश्यक है। उसके लिए तो हमें पहली बात तो अपनी सोच में बदलना पड़ेगा, एक कहते हैं लेट गो की आदत डालें, पहली चीज है। कोई भी चीज अगर हमारे चारों ओर हर चीज में हमें उस पर थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, उससे हमारा मानसिक संतुलन में बहुत इसका प्रभाव पड़ता है और हमारी जो थॉट्स होती हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारे अब तक के जीवन में हम अपनी रुचियों को, अपनी योग्यताओं को पहचान नहीं पाए हैं, अगर रुचियों को हम सार्थक रूप नहीं दे पाए हैं तो अपनी रुचियों को बढ़ाएं, कहीं कुछ योगा ज्वाइन कर लें या कहीं साहित्यिक या बौद्धिक और आध्यात्मिक पठन पाठन या वार्ता करना और चर्चा करना, इस तरह का कार्य करके हमें बहुत सकारात्मक सोच हमारे अंदर लाता है ये सब। और हमें हॉबी जो हमारी उनको में इंटरेस्ट को क्रिएट करने का तो काम करना ही करना चाहिए। और विशेष रूप से मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि जब हम बढ़ती पड़ाव पर हम, क्योंकि ज्यादातर लोग एक नेग्लिजेंसी वाला भाव उनके अंदर आता है कि उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है उनको या उनकी देखभाल, क्योंकि जो अभी युवा है हमारे जो जीवन अपने चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, उनके पर व्यस्तता बहुत रहती है, तो इसलिए हमें बच्चों के साथ खेलना चाहे पार्क में जाए या परिवार में जाए या उनके साथ बोलना, तो वो बचपन को बनाए रखे और जब समय मिले युवाओं के साथ भी हमें समय बिताना चाहिए, क्योंकि वर्तमान की परिस्थिति से हम रिलेट करते हैं और उनके साथ वार्ता करते हैं तो उससे हमें लगता नहीं कि हम वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, तो उस एहसास को हमारे युवा बनाता है और बच्चा हमारे अंदर जीवित रखता है, इसलिए ये बहुत हमारे मानसिक और बौद्धिक स्तर को सशक्त करता है। इसलिए विशेष रूप से हमें जितना तन का ख्याल रखना है उससे ज्यादा मन का ख्याल रखना है।
0: आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब वृद्धावस्था आने को हो या आ

0: की हो, तो बचपन से उसका तारतम्य अगर जोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अंत में हम चाहेंगे कि जो लोग वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं उनके लिए स्वस्थ रहने के लिए आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
1: स्वस्थ रहने के लिए मैं टिप्स देना चाहूंगी, जल फल साग सब्जी दाल अन्न से सजा हो थाल, निरोग काया योग ध्यान मुस्कान के हो साथ
0: जी।
1: तो ये चीजें हमें जीवन में शामिल करना चाहिए और अपने को व्यस्त रखने के लिए लोगों से संपर्क रखना चाहिए। साथ ही साथ में हम आज के परिस्थिति में हमें अपडेट भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे समय जो हम जब युवा थे या बचपन था तो उस समय का विज्ञान और ज्ञान थोड़ा सा आज के विज्ञान और ज्ञान से फर्क होता है, तो उसको हमें कोशिश करनी चाहिए अपने को इसमें अपडेट करने की। बढ़ती हुई उम्र में ये सब बहुत आवश्यक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि करें योग रहें निरोग, तो इसलिए योग का बहुत महत्व, जो कि हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखेगा और मन को भी स्वस्थ रखेगा। ये बुढ़ापा को खत्म तो नहीं करेगा, उस प्रक्रिया को सीमा कर देगा और बढ़ती हुई उम्र को एक गति जब उसकी धीमी हो जाएगी तो हम अपने को हमेशा युवा और बच्चा समझेंगे और स्वस्थ रहेंगे मन से भी तन से भी।
0: यानी कि गति ही जीवन का नियम है और प्रत्येक मनुष्य को हमेशा गतिमान रहना अर्थात क्रियाशील रहना चाहिए और परिवर्तन को स्वीकार करते हुए वो अगर अपने जीवन में अगर गतिमान रहता है तो निश्चित तौर पर उम्र कोई भी हो उसके सामने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गौण हो जाती हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, यो भेंट वार्ता के बाद आप हम आपको सुन लाग रहे हैं एक कुमावनी लोकगीत गायक कलाकार छन दीवान कनवाल।

श्रोताओ, दीवान कनवाला गई यो कुमावनी लोकगीता का तगड़ हमारा आजक उत्तरायण कार्यक्रम आप संपन्न हो भो अपन के फिर भेंट वेल। तब तक अगली जी नारायण दत्त पाठक के आज्ञा दियो नमस्कार। उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार अपो सुनला थोड़ी देर में हमार देहरादून केंद्र बटी।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: It's another six.
4: रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया?
5: मैच तो गया।
4: पेमेंट कैसे करेंगे?
6: टोकनाइज कार्ड।

0: से
1: टोकन
0: ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए, कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट, वही सुविधा अधिक सुरक्षित
1: ऑलराउंडर
0: वो की मैं RBI कहता है कि
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी में 110 करोड़ रुपए से अधिक की 19 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कंडोली महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री धामी ने खेत में चलाया टिलर, पारंपरिक कृषि और जैविक खेती को बढ़ावा देने का दिया संदेश। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 15 जुलाई तक वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान शुरू। टिहरी जिले के चंबा विकासखंड में लोगों को KYC सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई। और सोमवती अमावस्या पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पौड़ी के रामलीला मैदान में आयोजित कंडोलिया महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के लिए 110 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंडोलिया महोत्सव उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और युवा प्रतिभाओं को नई पहचान देने का सशक्त माध्यम है। श्री धामी ने कंडोलिया महोत्सव को सरकारी कार्यक्रम के तहत राजकीय महोत्सव के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है।
4: कंडोलिया महोत्सव हमारी लोक विरासत, लोक संस्कृति का बहुत बड़ा महोत्सव है। इस महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी लोक कलाकारों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, हमारे बच्चों को भी आगे आने का अवसर मिलता है, हमारी विरासत भी आगे बढ़ती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं विकास के साथ साथ विरासत के साथ साथ विकास, उस मंत्र को भी ये साथ साथ रूप से धरातल पर उतारने का काम करता है। और इससे निश्चित रूप से हमारे यहाँ की अन्य गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों को लोगों को भी जो है इसमें सहभाग करने का अवसर मिलता है।
3: इससे पहले मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिला मुख्यालय में आधुनिक विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने संग्रहालय का भ्रमण कर विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित इंटरैक्टिव मॉडल, वैज्ञानिक प्रदर्शनी और आधुनिक उपकरणों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संग्रहालय जिले के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान, जिज्ञासा और नवाचार का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा और वैज्ञानिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा स्थित अपने निजी आवास नगला तराई स्थित खेत में टिलर चलाकर खेत की जुताई और खेत में गोबर की प्राकृतिक खाद डालकर जैविक और पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। इस दौरान उनकी माता बिश्नी देवी भी उनके साथ उपस्थित रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक के साथ पारंपरिक और प्राकृतिक खेती को अपनाकर कृषि को अधिक समृद्ध और टिकाऊ बनाया जा सकता है। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया है।
5: मैंने भी अपने खेत में आज जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो उसकी विधि होती है उस विधि के अनुरूप ये कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि धरती माता भी बचेगी, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उसकी सॉयल हेल्थ भी ठीक होगी और अच्छा अनाज मिलेगा। जो भविष्य का जो खतरा है आने वाली पीढ़ियों के लिए कि भूमि बंजर न हो, अत्यधिक रसायनों के कारण से उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, कीटनाशक तमाम प्रकार के होते हैं जिससे कहीं ना कहीं सॉयल को नुकसान होता है, उस नुकसान से बचने के लिए और जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं उस बीमारियों को भी इन अत्यधिक जो रसायनों का प्रयोग है, उर्वरक का प्रयोग है, उसके कारण से होता है। इसलिए हम सबको इस तरह ध्यान देना है और संतुलित रूप से रसायनों का और उर्वरकों का प्रयोग करना है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज हरिद्वार में आयोजित प्रेस वार्ता में 12 वर्षों की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कहा कि चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना सहित कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं उत्तराखंड के विकास को नई गति दे रही है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने जो है निश्चित रूप में मुक्त हस्त से उत्तराखंड को पूरी सहायता दी है। इस समय 3,808 करोड़ की जमरानी बांध परियोजना जो है चल रही है, 2,600 करोड़ की सौंध बांध परियोजना है, 3,966 करोड़ की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना, उस पर तेजी से कार्य चल रहा है। तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, एलिवेटेड ट्रैक बनाया, तो निश्चित रूप में बहुत कुछ सौगात जो है मोदी जी ने।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज से 15 जुलाई तक विभिन्न बैंकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक को बैंकिंग, बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसी क्रम में आज टिहरी जिले के चंबा विकासखंड सभागार में जागरूकता शिविर लगाया गया। इस अवसर पर लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और रीकेवाईसी सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक मनीष मिश्रा ने बताया कि जिले की सभी 1049 ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
6: इसमें क्या है कि बैंकों के द्वारा जो जिले की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं सभी में जाकर भारत सरकार का जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो लाई गई, सुरक्षा बीमा योजना जो लाई गई थी, इसके अलावा जो जनधन खाते खोले गए थे, निष्क्रिय पड़े जनधन खातों को एक्टिव करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत उनको एनरोल करना, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करना, इसके अलावा केवाईसी खातों में जो केवाईसी है वो करना, सीकेवाईसी करना, प्लस जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं ये इस दौरान जो पंचायतों में जो अपना कैंप लगेगा वहाँ पे बैंकों को इस प्रकार की सुविधाएं लोगों को देनी।
3: वही कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सियोटा ग्राम सभा की सीमा भंडारी ने बताया कि शिविर के माध्यम से उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई।
7: यहाँ पे जो भारत सरकार की जो स्कीम है SBI के तहत जो वित्तीय समावेशन है, जितनी भी महिलाओं को जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी जाती है, जैसे KYC हो गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, जीवन ज्योति बीमा हो गया, सुरक्षा बीमा हो गया, इसके लिए गांव-गांव में जाकर भारत सरकार के द्वारा मतलब मोटिवेट किया जाता है। इसी के तहत आज यहाँ पे चंबा विकासखंड भवन में जितने भी ग्राम संगठन है, जितने भी हमारी महिलाएं हैं, सभी को यह जानकारी दी गई है।
3: सोमवती अमावस्या पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। तड़के से ही हर की पैड़ी सहित विभिन्न गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं की मौजूदगी से पूरे शहर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा।
8: हमारी तीनों बहनों के साथ में और हमारे धर्मपत्नी को साथ में लेकर आए हैं स्नान करने के लिए। व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्था के लिए कोई कमी नहीं है, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है स्नान करने के लिए। यहाँ मतलब ये बहुत उत्सव है, हर आदमी के अंदर मतलब जज्बा है। सोमवती अमावस्या का भी हम नारे हैं और हर की पैड़ी का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए हमें यहाँ स्नान करने के लिए आए।
9: सोमवती अमावस्या पर स्नान करने के लिए आए हैं। यहाँ का जो नजारा है गंगा मैया का वो देखने और स्नान करके इतनी शांति मिल रही है, बहुत बढ़िया। सारे लोग आनंद से बड़े आराम से सारी जनता नहा रही है।
3: वही सोमवती स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य और सफल बनाने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। आज सुबह पिथौरागढ़ में रन फॉर योगा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में रामलीला मैदान तक आयोजित इस जागरूकता रैली में जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी, NCC कैडेट्स, 14वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों से छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वक्ताओं ने योग को दैनिक जीवन में अपनाने और स्वस्थ जीवन शैली विकसित करने का संदेश दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी में 110 करोड़ रुपए से अधिक की 19 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कंडोलिया महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री धामी ने खेत में चलाया टिलर, पारंपरिक कृषि और जैविक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। प्रदेश के

0: विभिन्न जिलों में आज से 15 जुलाई तक वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान शुरू। टिहरी जिले के चंबा विकासखंड में लोगों को रीकेवाईसी सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई। और सोमवती अमावस्या पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आइए पहले सुनते हैं ए हरिहरन की गाई ये भक्ति रचना।

0: उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बिटेन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार उगदगढ़ मी ममता बडोला। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल में 110 करोड़ रुपयों से ज्यादा के 19 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित भल। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धामक स्थापना दिवस आज श्रद्धा और उत्साह दगट मने गए। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनः परीक्षा को प्रवेश पत्र जारी कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी गढ़वाल में आयोजित जय कंडोलिया महोत्सव में 110 करोड़ रुपयों से ज्यादा लागत को 19 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कर। ये मौका पर ऊनवाल की ये परियोजनाएं क्षेत्र के आधारभूत ढांचों तक सुदृढ़ बनाने को दगड़ दगड़ आम मनखी को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाल। मुख्यमंत्री ने कंडोलिया महोत्सव तय पौड़ी को सांस्कृतिक पहचान और जनभागीदारी उत्सव बतान बाल की यू स्थानीय कला संस्कृति और प्रतिभाओं तय मंच प्रदान करने दगड़ दगड़ पर्यटन तय भी प्रोत्साहित कर।
2: कंडोलिया महोत्सव हमारी लोक विरासत लोक संस्कृति का बहुत बड़ा महोत्सव है। इस महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी लोक कलाकारों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, हमारे बच्चों को भी आगे आने का अवसर मिलता है, हमारी विरासत भी आगे बढ़ती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं विकास के साथ साथ विरासत के साथ साथ विकास, उस मंत्र को भी ये साक्षात रूप से धरातल पर उतारने का काम करता है। और इससे निश्चित रूप से हमारे यहाँ की अन्य गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों को भी लोगों को भी जो है इसमें सहभाग करने का अवसर मिलता है।
1: एक बीच मुख्यमंत्री ने जिला विज्ञान संग्रहालय श्रीनगर में विकसित आधुनिक विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण करी। ऊनवाल के यू संग्रहालय केवल एक प्रदर्शनी स्थल नहीं बल्कि विद्यार्थियों और युवाओं को आधुनिक विज्ञान शिक्षा नवाचार और अनुसंधान तय प्रोत्साहित करने वालों महत्वपूर्ण केंद्र बाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नगला तराई स्थित एक पुंगड़ में टीलर चलेक ने जुताई करी और मोलक प्राकृतिक खाद डालिकन जैविक और पारंपरिक खेती तय बढ़ावा देने का संदेश दिया। ये मौके पर मुख्यमंत्री ने पुंगड़ों में मेहनत कर्द किसानों परिश्रम और कृषि परंपराओं को महत्व तय रेखांकित करी। ऊनवाल की खेती केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधारशिला है। श्री धामी वाल की आधुनिक तकनीक दगड़ पारंपरिक और प्राकृतिक खेती तय अपनाए कर कृषि तय ज्यादा समृद्ध टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बने सकते। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य आयोजनों को औपचारिक कार्यक्रमों को शुभारंभ कर। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर करे जा। उन्होंने बताया कि ये मौका पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित करे जाल। श्री जाधव ने बोला कि योग लोगों तय हर उम्र में स्वस्थ सक्रिय आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा।
3: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: ये साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन को योग।
4: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताज़ा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छे।
1: विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धामक आज स्थापना दिवस श्रद्धा और उत्साह दगड़ी मने जाणु छू। ये मौका पर आयोजित भव्य मेला में श्रद्धालुओं को जन सैलाब उमड़ू छू। जिला प्रशासन के अनुसार सुगम दर्शन निर्बाध यातायात और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के चलते श्रद्धालु बिना कभी परेशानी के बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन करना छ। जिलाधिकारी ललित मोहन रियालन बताया कि कैंची धामक पावन प्रतिष्ठा दिवस के मौके पर श्रद्धालुओं को सुविधा और सुगम दर्शन सुनिश्चित

0: कनक उन्हें व्यापक व्यवस्थाएं करी जन।
1: प्रातः 5 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु बढ़ चढ़कर दर्शन कर रहे हैं और 800 से ज्यादा वाहन छोटे बड़े मिलाकर, जिसमें रोडवेज, केमू और निजी क्षेत्र की बसें सकल सेवा के तौर पर लगाई गई हैं, छोटे मैक्स वाहन भी हैं, उनसे श्रद्धालुओं को तीर्थ तक पहुंचाने के प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं में बढ़ चढ़कर उत्साह है, कतार में शांतिपूर्वक वो अपना आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। मंदिर समिति द्वारा हर प्रकार की दर्शन से लेकर महाप्रसाद वितरण तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग मार्ग हैं।
0: उना सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर आज हरिद्वार में आज तक जन सैलाब उमड़ियो छो। अधिमास में पड़ वालों ई विशेष सोमवती अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार के हर की पैड़ी समेत अलग अलग गंगा घाटों पर पहुंचीन और पवित्र गंगा में स्नान करी को पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करी। स्नान पर्व दौरान पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति के वातावरण बनी छे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला कोणु नीट यूजी पुनः परीक्षक प्रवेश पत्र जारी करें। प्रवेश पत्र NTA के आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in बिटेन डाउनलोड कर सकता। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे बिटेन शाम 5:15 तक फेल। ये बीच NTA ने विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड गुणों अपर बैंक खाता का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों तक ध्यान से पढ़ने की सलाह भी दिए गए। पौड़ी गढ़वाल के घुड़दौड़ी स्थित गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने विद्यार्थियों को BCA पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर इससे प्रदेश के युवाओं तक कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जन उभरत क्षेत्रों में करियर बनाने का मौका मिला। संस्थान के निदेशक डॉक्टर BK बंगन बताया कि यह पाठ्यक्रम में विज्ञान वर्ग के दगड़ कला वर्ग के विद्यार्थी भी इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रवेश ले सकल। ऊनवाल की BCA पाठ्यक्रम विद्यार्थियों तय रोजगार परक तकनीकी कौशल प्रदान कर और उच्च शिक्षा, उद्यमिता तथा स्टार्टअप क्षेत्र में भी नए अवसर उपलब्ध करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में सरकार को उपलब्धियों तक जन जन तक पहुँचाने को विशेष अभियान चलाने चाहिए। ये कर्म में आज हरिद्वार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्र सरकार 12 वर्षों को प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी। श्री महाराजन बाल की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछला 12 सालों के दौरान भारत ने विकास, सुशासन और जनकल्याण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर उन बाल की केंद्र सरकार को विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंची, जैसे गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों को जीवन स्तर में सुधार आए। कैबिनेट मंत्री बाल की प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और डिजिटल इंडिया जनी योजनाओं ने देश के विकास तय नए दिशा प्रदान कर दगड़ी राज्य में पर्यटन गतिविधियों और रोजगारक अवसरों में भी वृद्धि है। उद्योगपति मुकेश अंबानी आज बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशालक दर्शन करीन। ये मौके पर श्री अंबानी धामक विकास और धार्मिक व्यवस्थाओं को 5 करोड़ रुपयों की धनराशि दान स्वरूप प्रदान कर। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन पौड़ी गढ़वाल में 110 करोड़ रुपयों से ज्यादा की 19 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित हुआ। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धामक स्थापना दिवस आज श्रद्धा और उत्साह दगड़ मनी गए। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने NEET UG पुनः परीक्षा को प्रवेश पत्र जारी कर एक दगड़ी गढ़वली में प्रादेशिक समाचार को यू अंक समाप्त हो। नमस्कार।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम सुन रही सभी श्रोताओं के नेहा जोशी नमस्कार। श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत छू आप सभी लोग न कार्यक्रम में। कार्यक्रम में आप लोगों दगड़ बातचीत करूल, आप लोगों के जानकारी दियुल और दगड़ में आप लोगों मनोरंजन न करूल कुमाऊनी और गढ़वल लोकगीत दगड़। श्रोताओं कार्यक्रम में सबसे पहली बात कर लूँ वर्षा ऋतु में बागवानी प्रबंधन के बारे में, किले की श्रोताओं आप माठू माठ चौमासक दिन ए जल और आजकल ले बहुत से जगन में लगातार दियो होने लग रहो या फिर रत्ती ब्याव एक इकोई में दियो पक्का है ही जा, तो यस में हम अपन खेत पातों में के बो सकनूँ या फिर खेतों में हम केले उगूँ, चाहे हम बागवानी प्रबंधन की बात करूँ, चाहे हम खेतों में साग पाते की बात करूँ या फिर कोई फसलें की बात करूँ, उसी तो दियोक मौसम बहुत भल मानी जा, किले की खेतों के भली भा पानी मिल जा, माट में भली भा पानी पहुंच जा और फसलों के नमी लवील भली भा मिल जाए, लेकिन कतुक बार जब बहुत ज़्यादा दियो है जा तो वील हमार खेतों में जो फसल छू वो कतुक बार खराब रह जाए। और श्रोताओं अगर भली भा देखभाल नहीं करी जाओ तो दियो नुकसानों कारण ले बढ़ जा फसलों के लिए, तो यस में बहुत से नन नन तरीकों के आप लोग अगर अपने लिखा तो बागवानी और फसलों के सुरक्षित धरी जा सकूं और उन लाभकारी है सकूं। श्रोताओं दियोक मौसम में यानी कि चौमासक दिनों में सब है जरूरी छू पानी की निकासी करण, किले की जल भराव वाले जो खेत होनी उनमें जब पानी भरी जा तो वील फसलों के नुकसान है जा, जरूरत है वे ज़्यादा नमी ले खेतों में मौजूद फसलों के लिए भल नहीं हुई और वील कहूँ कि फसल या तो पूर्ण तरीकल खराब है जानी या फिर उनर जड़ सड़ जानी, तो ये चीज़ जरूरी छू कि बगीचों में किनार किनार पर नाई जस बड़बेर उनके साफ धरी जाओ और ज़रूरत है ज़्यादा जो पानी खेतों में मौजूद होन लाग रहा उद्योग दौरान तो उके निकासी बांट दी जाओ या उके हटे दी जाओ वहाँ बटी। और बताओ जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में खेतों में है जा तो ये खरपतवार उगणों के लिए बहुत ज़्यादा खतरे बढ़ जा, तो पानी की निकासी के अलावा खरपतवारक नियंत्रण करण ले बहुत आवश्यक है, किले की बरसात में बहुत तेजील खरपतवार उग जानी बहुत तेजील झाड़पात उग जा, तो यस मैं कहूँ कि एक तो फसलों के माटबटी पोषक तत्व चे और दगड़ में जो खरपतवार उगनी ऊँले माटबटी पोषक तत्व लेना काम करनी, जैल कहूँ कि फसलों के लिए जो जरूरी पोषक तत्व छे ऊँ खरपतवारों के मिलन से जानी, हम यह कह सकूँ कि खरपतवार फसलों के जो मिलनी वाले पोषक तत्व छू उके चुरे लीनी, तो येल कहूँ कि फसलों का उत्पादन कम है जा और खरपतवार खेतों में ज़्यादा है जाए, तो बखत बखत पर खेतों की निराई गुड़ाई करते रूण छे, खेतों में जो खरपतवार उगण लाग रहे उके बखत बखत पर हटाते रूण छे ताकि खेतों में जो फसल छे जो पौध छे उनके बढ़नक लीजिए जग मिल सको और जगह के अलावा उनके हाव मिल सको ताकि उनर बढ़ावार भल हो उनर उत्पादन भल हो और वो भली भाँ उग सको। और एक अलावा श्रोताओं बरसातक मौसम में रोग और कीटों की समस्या ले बहुत ज़्यादा है जे, आप लोगों ने अपन खेतों में यह ध्यान दी रखनल कि बरसातक मौसम में फसलों में कीड़ लागने या फिर फसलों के जो पत्त छे उनमें धब्ब पड़ने या फिर पत्तों के सड़ जाने ले एक समस्या बहुत आम है जो बहुत दिखाई दी खेतों में, तो यस में खेतों में जैविक खादों को उपाय करण चाहें जैसे कि नीमक खली उपाय करी जा सकूं या नीमक तेल डाली जा सकूं, यह के अलावा कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर कोई खेतों में आप लोग कोई दवाई या फिर कोई रासायनिक खाद छिड़काव कर सकता गोबर एक खाद डाल सकता, तो कुणक मतलब छू कि बरसातक मौसम में या चौमासक दिनों में खेतों में खाद और उर्वरक प्रबंधन करण ले बहुत आवश्यक हूँ, तो खेतों में सड़ी हुई गोबर एक खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डालन बहुत ज़्यादा आवश्यक हूँ। तो श्रोताओं यह के अलावा बहुत तेज हाव या फिर बहुत तेज़ दियो में कतुक बार खेतों में मौजूद फसलों टहनी टूटणों उनर फांग लटक जानी या फिर टूट जानी तो यह ले फसल के नुकसान है जा, तो यस में खेतों में जो कोई यस फसल छू जो लटकन लाग रहे या जो खराब होने स्थिति में छू तो उके बासक डंडूल या फिर कोई अन्य तरीका का डंडूल सहार दिबेर ले उनके ठीक करी जा सकूँ। तो श्रोताओं यह कुछ नन नन बात है जनर ध्यान आप लोगों के जरूर धरण से, और खास तौर पर चौमासा बिनु में यो बातु ध्यान अगर आप लोग धर छा तो खेतों में जो फसल आप लोगों बो रखी वी के ज़्यादा नुकसान नहीं होल, और अगर फसल ठीक ठाक रोल यू के नुकसान नहीं होल तो स्वाभाविक रूप वीक पैदावार भल होल, वील आप लोगों के उत्पादन भल मिलल, तो फिर आप लोग आसानी लुके बाजार तक भेज सकता। और श्रोताओ आप कार्यक्रम में अगिल बढ़नू और अगिल आप लोगों को सुनोनू मृदा स्वास्थ्य कार्डक उपयोगिता और भी लाभ विषय पर जिला मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भीम तालक प्रभारी अधिकारी श्री हेमचंद जोशी जी दगड़ हमर यह बातचीत। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है जिला मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भीमताल के प्रभारी अधिकारी श्री हेमचंद जोशी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं आज हम कार्यक्रम में सर से जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है और किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना क्यों जरूरी है। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है और किसान भाई बहन सरल शब्दों में इसे कैसे समझ सकते हैं।
1: स्वास्थ्य कार्ड ये भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसमें प्रत्येक कृषक लगभग जो भी किसान चयनित होते हैं उनका पूरा मिट्टी के में क्या कमी है और किस चीज की कमी है उसकी जांच इसमें की जाती है और एक कार्ड जो है बना के उसकी उनकी मिट्टी का जो भी जांच की रिपोर्ट आती है वो उनको सौंपी जाती है। ये 3 साल के लिए मान्य है ये कार्ड। इसमें क्या होता है जैसे कि आप देखते होंगे कि उत्पादन विशेष तौर से पर्वतीय क्षेत्र का और जो भावर का है यहाँ का भी घट रहा है, तो इससे क्या होता है कि एक तो फसल उत्पादन में कमी आ रही है, फल उत्पादन में कमी आ रही है, सब्जी उत्पादन में कमी आ रही है, तो इसमें क्या होता है कि 2-3 चीजों का बड़ा इससे वो चल रहा था पता है। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है किस्म से समझिए, अगर साधारण भाषा में कहें तो ये एक रिपोर्ट है उस खेत की या उस एरिया के मिट्टी का एक रिपोर्ट है।
0: तो सर जब किसान अपने खेतों की मिट्टी को लैब तक पहुँचाएंगे और वहाँ पर शाला में या लैब में मिट्टी की जो जांच होगी और उससे जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनेगा तो उससे किसान अपनी जमीन के बारे में कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।
1: इसका ऐसा है कि मिट्टी में मुख्य रूप से जो जनरली हमारे राज्य सरकार के लैबों में होता है वो 12 तत्व होते हैं, उसकी जांच हम लोग अपने लैब में करते हैं
0: जी।
1: तो इसमें 3 तत्व होते हैं मुख्य, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश, और सल्फर जो है वो मध्यम तत्व हम मानते हैं, और सूक्ष्म तत्व के रूप में बोरान, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक ये हम सूक्ष्म तत्व मानते हैं। बाकी क्या है कि पीएच होता है, मिट्टी का पीएच जो होता है, जैसे मिट्टी के पीएच से पता चलता है कि मिट्टी अम्लीय की तरफ बढ़ रही है या क्षारीय की तरफ जा रही है। और एक दांत और यहाँ पर की जाती है जिसको हम कहते हैं ईसी कहते हैं, यानी मिट्टी में विद्युत चालकता कितनी है
0: जी,
1: क्योंकि कोई कई फसलें ऐसी हैं जिसमें मिट्टी की जो चालकता है उसका भी काफी फर्क पड़ जाता है। और एक तत्व जो हम जांच करते हैं वो है ऑर्गेनिक कार्बन, इसको आप ये कह सकते हैं कि मिट्टी में जैविक पदार्थ कितना है, यानी जैसे कंपोस्ट है या पत्तों की

0: खाद है या फिर गोबर की खाद का कितना तत्व मिट्टी में है। अगर जैसे देख रहे होंगे कि लोगों ने जानवर पालना भी कम कर दिया है,
1: जी
0: तो पर्याप्त मात्रा में फसलों के लिए गोबर भी नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी भी जांच यहाँ पर की जाती है।
1: जी तो सर, जैसे आपने बताया कि मिट्टी में बहुत से अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, जिनमें 12 तत्व मुख्य रूप से जिनकी बात आपने करी, तो किसान भाई बहन इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अलग अलग पोषक तत्वों की जो मात्रा मिट्टी में मौजूद है, उसके हिसाब से वो अपने खेतों में फसल बो सकते हैं या फिर उसके हिसाब से ही खेतों में उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: जी जी बिल्कुल। अगर कोई बढ़ने वाली फसल है, जैसे थोड़ी देर के लिए हम माने कि हम मटर अगर बो रहे हैं, तो किसान को ये जानकारी होनी चाहिए कि वो यूरिया नत्रजन का प्रयोग कम करे।
1: जी
0: और जैसे अगर कोई किसी खेत में, जैसे हमारा जो जहाँ धान बोते हैं वहाँ पे धान की खेती में जिंक की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उसको जिंक का प्रयोग उसको खेतों में करना पड़ेगा ताकि धान हो सके। अब अगर हम उसी खेत में पहले आलू ले रहे हैं और फिर धान लेते हैं, या पहले धान लेते हैं या फिर आलू लेते हैं, तो उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको धान के लिए तो जिंक भी चाहिए और यूरिया।

0: धान की खेती में जिंक की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उसको जिंक का प्रयोग उसको खेतों में करना पड़ेगा ताकि धान हो सके। अब अगर हम उसी खेत में पहले आलू ले रहे हैं और फिर धान लेते हैं, या पहले धान लेते हैं या फिर आलू लेते हैं, तो उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको धान के लिए तो जिंक भी चाहिए और यूरिया भी चाहिए, क्योंकि धान बढ़ने वाली फसल जल्दी बढ़ती है। जैसे हम रोपाई लगाते हैं तो धान लगभग 3 महीने से 4 महीने के बीच में मिल जाती है, तो उसको उसकी बढ़ोतरी के लिए हमको यूरिया भी डालना है, नाइट्रोजन भी डालना है मतलब, और जिंक भी डालना है। और अगर उसी खेत में अगर हम उस फसल की बात, अगर कोई दाल वाली फसल को जैसे मटर लगा, किसान को ये देखना पड़ेगा कि वो उस खेत में उसके बाद यूरिया का प्रयोग न करे, यानी नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि जितनी भी दाल वाली फसलें इनमें नाइट्रोजन खुद ही बनता है, उसकी जड़ों में ऐसे कोशिकाएं जो खुद ही वातावरण की नाइट्रोजन को सोख के पौधों को देती हैं और जमीन में भी उसको फिक्स करती हैं।
1: जी, तो सर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो खाद और उर्वरक की सही मात्रा तय करने में भी मदद करता है। तो सर अगर जैसे किसान अपनी मिट्टी को प्रयोगशाला में लाएंगे और फिर आप लोग प्रयोगशाला में उस मिट्टी का परीक्षण करेंगे और उससे एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनेगा या फिर मिट्टी की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, तो सर किसान उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो रिपोर्ट है उसको उसको कैसे पढ़ सकते हैं और उसका फिर सही उपयोग कैसे कर सकते हैं?
0: जनरली हम क्या करते हैं, जब कार्ड बनता है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उसमें जो नॉर्मल हमारे वो है जो भारत सरकार के मानक है उसके आधार पे उसमें संस्तुतियां हम क्या चीज कितना मात्रा में उर्वरक का या कंपोस्ट का प्रयोग करें। ये जनरली फसलें होती है हमारे क्षेत्र की, जैसे गेहूं है, धान है, आलू है, सब्जियां हैं, इन चीजों की उसमें रिकमेंडेशन दी जाती है लगभग मतलब नॉर्मल फसलें जो है। अगर कोई व्यक्तिगत तौर से भी यदि किसान चाहे कि मैं, जैसे कई किसान हमारे पास आते हैं रामगढ़ से, मुक्तेश्वर से, आपके ये भारी वाला क्षेत्र जहाँ पॉली हाउस लगाते हैं, वो लोग व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करके कहते हैं कि हमें पॉली हाउस लगाना है और हमको ये पर्टिकुलर सब्जी या ये फूल इसके अंदर पैदा करना है, तो उसके लिए फिर जनरली हम उनको बताते हैं कि आप इस चीज का प्रयोग, इस उर्वरक का या इस कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं।
1: तो सर जैसा आपने बताया कि आपके पास व्यक्तिगत तौर पर भी किसान आपसे मृदा की परीक्षण के लिए बातचीत करने आते हैं, तो अगर ऐसे में अगर किसी किसान को अपने खेत की मिट्टी की जांच करवानी है तो खेत से मिट्टी उठाने से लेकर उसे लैब तक पहुंचाने तक किसानों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस प्रकार उन्हें मिट्टी को लैब तक पहुंचाना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए।
0: इसमें अगर कोई, वैसे तो हमारे न्याय पंचायत क्षेत्र में भी कार्यकर्ता होते हैं, हमारे जो कृषि विभाग का पूरा वह सेटअप है उसमें न्याय पंचायत स्तर तक भी जो है कार्यकर्ता होते हैं। यदि उस न्याय पंचायत में अगर कोई नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो वह फोन से भी हमसे संपर्क कर सकता है। और जनरली क्या करते हैं कि माना पर्वतीय क्षेत्र में 20 नाली का हम एक एक नमूना मानते हैं, इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अगर जमीन, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में छोटे छोटे खेत होते हैं, एक नाली दो नाली का ऐसे खेत होता, तो वो क्या करें कि 3-4-5 जगह से जो का खेत है उसमें चिन्हित कर ले 5 जगह, ये थोड़ा समतल है, ये थोड़ा ढाल वाला है, ये जगह यहाँ पर पानी नहीं भरता है, तो ऐसे 5 स्थान जो मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि जो उस खेत का प्रतिनिधित्व करते हैं 5 जगह, उन जगह पर वी आकार का एक गड्ढा बना लें खुरपी से और ऊपर की जो मिट्टी है उसको थोड़ा हटा लें, क्योंकि हो सकता है उसमें कच्चा गोबर पड़ा हो या फिर पुरानी खाद का अंश हो, थोड़ा सा उसका 1 इंच मिट्टी हटा के उस गड्ढे में मिट्टी ले लें और वो 5 जगह की मिट्टी को एक गोल सा घेरा बना लें और उसके 4 हिस्से करें, जो आमने सामने के 2 हिस्से हटा दें और ऐसे करते करते रहें, 2-3 बार करेंगे तो लगभग 500 ग्राम मिट्टी बचेगी, उस मिट्टी को लेके वो हमारे जो पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं उनको भी दे सकते हैं। और अगर माना वो नहीं मिल पाते हैं तो वो किसी भी माध्यम से उसको, या खुद अगर आए जैसे लैब तक या विकास खंड के में आए किसी काम से, तो वो विकास खंड में भी उसको कृषि कर्मचारियों को दे सकते हैं, तो वो हम तक पहुंच जाएगी और हम उसकी अधिकतम 5 से 7 दिन में रिपोर्ट उसकी बना के उनको व्हाट्सएप से भी भेज देते हैं, और यदि खुद वो आना चाहें और संपर्क करना चाहें तो उनको वो जानकारी भी हम अपने स्तर से उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं।
1: जी, तो सर इसके अलावा ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है तो क्या ये फसलों के सीजन के हिसाब से, रबी की फसल या खरीफ की फसल के हिसाब से बनता है या फिर ये कुछ वर्षों तक वैलिड रहता है?
0: ये कार्ड 3 साल के लिए मान्य है, थोड़ा सा इसमें किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा और हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। रबी फसल के लिए अगर उनको अपने टेस्टिंग की रिपोर्ट चाहिए तो वो रबी फसल बोने से लगभग 1 या 1 महीने पहले, लगभग क्योंकि फसल तो जैसे अभी

0: खेत खाली है लगभग लगभग पर्वतीय
1: हम्म,
0: क्षेत्र में। तो वो इस बीच जैसे ये मई के महीने में अगर अपनी मिट्टी लयमा पहुंचा देते, क्योंकि हमें भी उसको छानने में, फिर उसके बाद उसको कई जगहों से गीली मिट्टी आती है, तो उसको हम धूप में भी नहीं सुखा सकते, क्योंकि अगर हम धूप में उसको सुखाएंगे तो उसके कई जो नेचुरल तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इसमें कमी आती है, तो फिर जाँच नहीं हो पाती, तो उसको छाया में सुखाना पड़ता है। तो कई किसान भाई जो है उसको गीली मिट्टी ले आते हैं, तो हमको छाया में सुखाने में फिर उसको समय लगता है। पहले 2 mm की जाली, फिर 1 mm की जाली से छानना पड़ता है, तो उसको छानने में हमको समय लगता है। फिर उसके बाद उसके हम 12 सैंपल अलग अलग निकाल के 12 टेस्टिंग ट्रेवल्स पर वो जाती हैं, तो उतना समय लगने के बाद तब जाके वो एक रिपोर्ट उसकी बनती है।
1: बिल्कुल। तो इसके अलावा सर, जैसे अगर कोई किसान भाई बहन अपनी मृदा का परीक्षण करवाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो ये जानना चाहेंगे कि मृदा परीक्षण करवाने के लिए मृदा प्रयोगशालाओं में मृदा की जांच किस आधार पर करी जाती है, यानी कि उनका क्या रेट होता है, उन्हें उसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दे दीजिए।
0: जो भी किसान भाई BPL श्रेणी के होंगे, वो जो कार्ड होता है, BPL कार्ड होता है ना, वो अंत्योदय और
1: जी
0: ये वाला गरीबी रेखा के नीचे, उसको तो निःशुल्क किया जाता है। और यदि जैसे मैंने बताया कि कई काश्तकार जो हैं आजकल पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, या काफ़ी अच्छी खेती कर रहे हैं, जो जैसे फूलों की खेती है, मसालों की खेती है, क्योंकि वो लीज पे लेके करते हैं ज़्यादातर, मैं नैनीताल जनपद की बात कर रहा हूँ,
1: जी
0: तो वो लोग क्योंकि BPL नहीं होते हैं, तो उनसे शुल्क लिया जाता है 193 रुपया
1: जी
0: पर सैंपल का।
1: तो यानी
0: तो
1: 193 रुपया पर सैंपल के हिसाब से हमारे किसान भाई
0: हाँ,
1: बहन मृदा की जांच करवा सकते हैं।
0: करवा सकते हैं। और यदि मैंने बताया जो वो नॉर्म्स अगर उनमें लागू होते हैं, तो उनका निःशुल्क भी किया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और कुछ योजनाएं हमारे पास ऐसी होती हैं जो, क्योंकि वो भी केंद्र सरकार की योजना है हमारे पास सॉइल सैंपल की जांच वाली, तो उसमें क्या होता है कि जो चयनित गांवों का निःशुल्क किया जाता है, वो उसमें न किसानों से कोई पैसा लिया जाता है और न उनको लेके आनी पड़ती है, वो हमारे ही कार्यकर्ता उसको वो सैंपल को लेके आते हैं, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपना जो भी वो चयनित गांव है वो एरिया चयन किया जाता है, एक कोई संस्थाएं हैं उनके द्वारा अलग अलग साल के लिए अलग अलग संस्थाओं का चयन होता है, तो वो संस्थाएं खुद जाके सैंपलिंग करती हैं गांव के जनप्रतिनिधि से मिलकर, काश्तकारों से मिलकर, और उन गाँव के सैंपल आते हैं, और उसमें किसान भाइयों को कुछ भी नहीं देना।
1: जी। इसके अलावा अंत में सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे उन किसान भाई बहनों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनवाया है, या फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना कितना आवश्यक है, इसके संबंध में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे?
0: सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, और अपने ब्लॉक स्तरीय ऑफिस में या फिर जिला स्तरीय ऑफिस में जब भी जाने का मौका मिलता है, वैसे जैसे मैंने बताया कि न्याय पंचायत पर भी ये व्यवस्था है, तो कोशिश करें कि आप अपना मृदा की जांच करवाएं। और माना किसी कारण से आपका पास विभाग के लोग नहीं पहुंच पाते हैं, या आप नमूना नहीं लेके आ पाते हैं, तो कोशिश ये करें, क्योंकि लगभग सभी काश्तकार भाइयों को ये जानकारी है कि अगर वो ब्लॉक स्तर पर भी ये बात को रखेंगे तो उनकी बात मानी जाएंगी, और उनका सॉइल सैंपलिंग जो है वो सरकारी रूप से होगी, और उनको कोई भी शुल्क जो है वो देय नहीं होगा, और वो एजेंसी खुद उनके गांव में आके काश्तकारों का चयन कर और सैंपलिंग भी खुद ही करे। जनप्रतिनिधि जितने भी लोग हैं वो अपनी बात ब्लॉक स्तर पर या फिर जिला स्तर पर रख सकते हैं, तो उसमें उसको उनको कुछ भी देय नहीं होगा, लेकिन उनकी जो जाँच हो जाएगी। तो हमारे वहाँ ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्र में परम्परागत ही फसलें बोई जा रही हैं, अगर हम गेहूँ बो रहे हैं तो गेहूँ ही बो रहे हैं, तो हम गेहूँ से भी अच्छी चीज बो सकते हैं, और उसको उसमें थोड़ा पैटर्न में भी बदलाव होगा, और लोगों को खेती के प्रति जागरूकता भी आएगी। जैसे जनरली जो है गेहूं या धान या फिर आलू, यही हम लोग पहाड़ में पर्वतीय लोग करते हैं, थोड़ा सा इससे हट के अगर जैसे मसाले की खेती करें, थोड़ा औषधि ये औषधियों के पौधे लगाएं, या फिर फलों की तरफ भी जाएं, जैसे जहाँ जंगली जानवरों का ज्यादा नुकसान है, वो अगर फलों की तरफ जाएं, जैसे नींबू वर्गीय फल, कागजी नींबू, बड़े नींबू, या फिर अखरोट, ये कई चीजें ऐसी हैं जो मिट्टी की जाँच के बाद ही उन्हें पता चल पाएगा कि हम इन परंपरागत फसलों की जगह पर इन चीजों को भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई एजेंसियां आजकल भारत सरकार की भी और राज्य सरकार की भी कई एजेंसियां ऐसी काम कर रही हैं जो फलों को, सब्जियों को, मसालों को, फूलों को और औषधीय पौधों को जो है वो बढ़ावा भी दे रही हैं, और लोगों के पास जाके उनको बता भी रही हैं।
1: बिल्कुल। तो सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे किसान भाई बहनों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता के विषय में ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आप लोगों ने सुनी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता और वीक लाभ विषय पर जिला मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भीमतालक।

प्रभारी अधिकारी हेमचंद जोशजूदगड़ हमरियो भेंटवार्ता। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अगली बात करनू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और श्रोताओं, यह एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित बहुत जानी मानी योजना छू। तो हमके यह उम्मीद छू कि हमार लगभग सभी किसान भाई बहनी यह योजना का लाभ लेण लाग रहनाल। तो श्रोताओं, यह योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा साल 2016 में करी गई और यह उद्देश्य किसानों के किफ़ायती फसल बीमा प्रदान करबेर कृषि उत्पादन में उन्हें सहायता करण छी। श्रोताओं, यह योजना के अंतर्गत भारतक सभी किसानों के फसलों पर प्रीमियम देने की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसमें सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए लगभग 2% बीमा और रवि खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 1.5% बीमा और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए लगभग 5% बीमा दी जा। श्रोताओं, यह योजना का उद्देश्य क्वेले प्राकृतिक आपदा या फिर क्वेले अन्य जोखिम बटी फसलों के होने वाले जो नुकसान हों वी की स्थिति में किसानों के वित्तीय सहायता और बीमा कवरेज प्रदान करण छू। यह के अलावा खेती में बड़ी रुणक लीजिए कृषि आय के स्थिर करण ले यह एक उद्देश्य छू। श्रोताओं, यह योजना किसानों के कृषि में प्रगतिशील कृषि तरीकों उच्च मूल्य आदानों और उच्च प्रौद्योगिकी उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिए। तो श्रोताओं, अगर आप लोग आज तक ले यह योजना का लाभ नहीं ले सक रहे तो जरूर आप लोगों के फसल बीमा योजना लाभ मिल चें, यह लीजिए अपन रजिस्ट्रेशन करूँ चें और योजना में भागीदार बनें चें।

श्रोताओं, गोकुल सिंह बिष्ट और दगड़ी स्वर में आप लोगों सुनो यो कुमाऊनी लोकगीत। और यह के दगाड़ आज ग्राम जगत कार्यक्रम इसी के संपन्न करने नेहा जोशी के दियो आज्ञा। नमस्कार।

0: अभी राम सौदे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 होने वाले हैं। अब कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों दगड़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल, पौड़ी गढ़वाल में 110 करोड़ रुपयों है बाकी, 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून

0: केँ कलकत्ता रेड रोड पर आयोजित होल। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोरी महाराजा कैंची धामक स्थापना दिवस आज श्रद्धा और उत्साह दगड़ मनाई गयो। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट UG पुनः परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करें। और अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज पौड़ी गढ़वाल में आयोजित जय कंडोलिया महोत्सव में 110 करोड़ रुपयों है ज्यादा लागत तक 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करो। यो मौक पर उनलको की यो परियोजनाएं क्षेत्रक आधारभूत ढांच के मजबूत बनुनक दगड़ दगड़ आम जानेनक जीवन में सकारात्मक बदलाव लूण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाल। मुख्यमंत्री कंडोलिया महोत्सव के पौड़ीक सांस्कृतिक पहचान और जन भागीदारी उत्सव बताबेर को कि यो स्थानीय कला संस्कृति प्रतिभाओं के मंच प्रदान करणक दगड़ दगड़ पर्यटन के लिए प्रोत्साहित करल।
1: कंडोलिया महोत्सव हमारी लोक विरासत लोक संस्कृति का बहुत बड़ा महोत्सव है। इस महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी लोक कलाकारों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, हमारे बच्चों को भी आगे आने का अवसर मिलता है, हमारी विरासत भी आगे बढ़ती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं विकास के साथ साथ विरासत के साथ साथ विकास, उस मंत्र को भी ये साक्षात रूप से धरातल पर उतारने का काम करता है। और इससे निश्चित रूप से हमारे यहाँ की अन्य गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों को भी लोगों को भी जो है इसमें सहभाग करने का अवसर मिलता है।
0: यो बीच मुख्यमंत्री जिला विज्ञान संग्रहालय श्रीनगर में विकसित आधुनिक विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण करो। उनलको की यो संग्रहालय केवल एक प्रदर्शनिक जाग नहीं है बल्कि विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आधुनिक विज्ञान शिक्षा नवाचार और अनुसंधान के प्रोत्साहित करने वाला महत्वपूर्ण केंद्र होल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज नगला तराई स्थित एक खेत में टेलर चलाबे जुते करे और पोषक प्राकृतिक खाद डालबे जैविक और पारंपरिक खेती के बढ़ावा देनक संदेश दियो। यो मौक में मुख्यमंत्री गाड़ में मेहनत करण वाल किसानों परिश्रम और कृषि परंपराओं के महत्व के रेखांकित करो। उनलको की खेती केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधारशिला छू। श्री धामिल को की आधुनिक तकनीक दगड़ पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के अपना बेर खेती जद समृद्ध टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाई जा सको। आयुष मंत्रालय आज नई दिल्ली में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ठुल आयोजन लिजी औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ करो। आयुष मंत्री प्रताप राव जाघावल नई दिल्ली में संवाददाताओं के बताए कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कलकत्ता रेड रोड में आयोजित करी जाल। उन्होंने बताया कि यो मौक पर 45 मिनट तक योग प्रोटोकॉल आयोजित करी जाल। श्री जाघावल को कि योग मनखियों हर उम्र में स्वस्थ सक्रिय आत्मनिर्भर और मानसिक रूप मजबूत जीवन जीण में महत्वपूर्ण भूमिका निभू।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: यो साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय छू स्वस्थ जीवन के लिए योग।
2: इस वर्ष देश भर में
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपुलोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुन लग रहा। इन समाचार हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में ले उपलब्ध छन। ताजा समाचार नक लीजिए अपुलोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और Facebook पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
0: विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली महाराजा कैंची धामक आज स्थापना दिवस श्रद्धा और उत्साह दगड़ मनाई गयो। यो मौक पर आयोजित ठुलम्याल में श्रद्धालुओं भीड़ लग रहे। जिला प्रशासन के अनुसार सुगम दर्शन बिना रोक टोक यातायात और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था कारण श्रद्धालु बगैर कोई कठिनाई बाबा नीम करोली महाराजा दर्शन करण रहीन। जिलाधिकारी ललित मोहन रयालल बताए कि कैंची धामक पावन प्रतिष्ठा दिवसक मौक पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए भल व्यवस्थाएं करी गई।
4: प्रातः 5 बजे से यहां पर श्रद्धालु बढ़ चढ़कर दर्शन कर रहे हैं और 800 से ज्यादा वाहन छोटे बड़े मिलाकर जिसमें रोडवेज KMU और निजी क्षेत्र की बसें सकल सेवा के तौर पर लगाई गई हैं। छोटे मैक्स वाहन भी हैं, उनसे श्रद्धालुओं को तीर्थ तक पहुंचाने के प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं में बढ़ चढ़कर उत्साह है, कतार में शांतिपूर्वक वो अपना आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। मंदिर समिति

0: द्वारा हर प्रकार की दर्शन से लेकर महाप्रसाद वितरण तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग मार्ग हैं।
1: वहीं सोमवती अमावस्या पावन मौक पर आज हरिद्वार में आस्था जन सैलाब उमड़ पड़ो। अधिमास में पड़न वालियों विशेष सोमवती अमूस पर ठुल संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी स्थितगढ़ अलग अलग गंगा घाटों पर पूजिन और पवित्र गंगा में नैबेर पूजपाठ और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करिन। स्नान पर्वक दौरान पूर्जाग में श्रद्धा और भक्ति वातावरण बनी रहो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTL स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला के लिए NEET UG पुनः प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर हालिन। प्रवेश पत्र NTA आधिकारिक वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN बठे डाउनलोड करी जा सकनन। यो परीक्षा 21 जून के दोपहरी में 2:00 बठे ब्याव 5:15 जाने होली। यो बीच NTL विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करण है पहली डबल वापस करण लीजिए। अपूर्ण बैंक खातों के विवरण सत्यापित करण लीजिए परामर्श दी। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दी गई निर्देशों को ध्यान पढ़ने के लिए सलाह दी गई। पौड़ी गढ़वाल घुड़दौरी स्थित गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए BCA पाठ्यक्रम शुरू करने घोषणा करी। जैल प्रदेशक युवाओं के कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस उभरते क्षेत्र में कैरियर बनुनक अवसर मिलल। संस्थानक निदेशक डॉक्टर BK बंगाल बताए कि यो पाठ्यक्रम में विज्ञान वर्ग दगड़ दगड़ कला वर्गक विद्यार्थी ले इंटरक परीक्षा पास करणक बाद प्रवेश ले सकल। उनल को कि BCA पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के रोजगार परक तकनीकी कौशल प्रदान कराल और उच्च शिक्षा उद्यमिता व स्टार्टअप क्षेत्र में नई अवसर उपलब्ध कराल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूर्व हुनक मौके पर भारतीय जनता पार्टी देशभर में सरकारक उपलब्धियों के जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने योई क्रम में आज हरिद्वार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उत्तराखंड सरकारल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराजल केंद्र सरकारक 12 सालों प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दे। श्री महाराजल को कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों के दौरान भारत तल विकास सुशासन और जन कल्याण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करी। उनल को कि केंद्र सरकारक बानी बानी योजनाओं का लाभ समाजक सपे वर्गों जाने पूजों छु जैल गरीबों किसानों श्रेणियों और युवाओं और वंचित वर्गों जीवन स्तर में सुधार आई और दगड़े राज्य में पर्यटन गतिविधियों और रोजगारक मौक मिले वृद्धि भी। उद्योगपति मुकेश अंबानी आज बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशालक दर्शन करीन। यो मौक पर श्री अंबानी धामक विकासक और धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए 5 करोड़ रुपये की धनराशि दान स्वरूप प्रदान करी। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल पौड़ी गढ़वाल में 110 करोड़ रुपयों है बाकी 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून के कलकत्ता के रेड रोड पर आयोजित होल। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली महाराज कैंची धामक स्थापना दिवस आज श्रद्धा और उत्साह दगड़ मनाई गयो और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NEET UG पुनः परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करीन। यह कदगढ़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यूं खत्म हूँ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
2: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री। 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा

0: से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आपकी कसम, आइए सुनते हैं सबसे पहले इस फिल्म का गीत। गीत गाए लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, शब्द रचना अनंत बख्शी की है और संगीत आर डी बर्मन का है।

0: presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे प्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: और अब श्रोता आइए सुनते हैं अनंत बख्शी का लिखा तथा लक्ष्मीकांत अहिलाल का संगीतबद्ध फिल्म प्रतिज्ञा का ये गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: और अब श्रोताओं, कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं फिल्म डॉन का गीत। इस गीत को गाया आशा।

0: तो अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस। आइए पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
2: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000.

0: ₹10,000. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
1: कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कविता पौडवाल को।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: और एक तो आइए सुनते हैं तलत अजीज को।

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: शुरू इस समय आप सुन रहे हैं मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरस। और हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह को

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं गुलाम अली और आशा भोसले को।

0: रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: और अब श्रोताओं, सब्रस कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं मेहंदी हसन की गाई है।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। स्वीडन ने ट्यूनिशिया को और जर्मनी ने कुरासाओ को मात दी। जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला ड्रॉ। महिला हॉकी नेशंस कप में भारत ने किया जीत के साथ आगाज। रोमांचक मुकाबले में अमेरिका को 3-2 से हराया। ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना और एशियन चैंपियन प्रीति पवार ग्रां प्री उस्तीनाद लाबेन प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करेंगी। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराकर शानदार अंदाज में प्रतियोगिता की शुरुआत की।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और काबो वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। स्वीडन ने ट्यूनिशिया को और जर्मनी ने कुरासाओ को मात दी। सुनते हैं इन मुकाबलों पर खास रिपोर्ट।
1: मैच की शुरुआत में नीदरलैंड्स की टीम जापान के डिफेंस पर हावी नजर आई। नीदरलैंड्स की ओर से एक के बाद एक अटैक किए गए, लेकिन जापान के गोलकीपर जियोन सुजुकी ने कई शानदार बचाव किए। मैच के 50वें मिनट में रयान ग्रोवेनबर्ग की फ्री किक पर नीदरलैंड के कप्तान वर्जिल वैन डाइक ने बेहतरीन हेडर लगाकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। वहीं मुकाबले के 57वें मिनट में नकामुरा ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। 64वें मिनट में समरविल ने शानदार कर्लिंग शॉट लगाते हुए जापान गोलकीपर को छकाया और नीदरलैंड्स को मुकाबले में 2-1 से आगे कर दिया। मुकाबले के 88वें मिनट में जापान को कॉर्नर मिल गया। कोकी ओगावा शॉट दाइची कामदा पर पहुंचा और उन्होंने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। इसके साथ ही जापान ने स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं लग सका और दोनों टीमों को 1-1 अंक से संतोष करना पड़ा।
2: It's Ogawa, it's Bedlam.
1: वहीं मोंटेसरी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में स्वीडन की ओर से यासीन अयारी, अलेक्जेंडर इसाक और विक्टर योरकेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और टीम की बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले हाफ में ही स्वीडन की ओर से यासीन अंसारी ने पहला गोल करते हुए 1-0 की बढ़त हासिल की। इसके कुछ समय बाद अलेक्जेंडर इसाक ने स्कोर 2-0 कर दिया। हालांकि ट्यूनिशिया ने भी वापसी की कोशिश की और उमर रेकिक ने हैनिबल मेजबरी के क्रॉस पर हेडर लगाकर अपनी टीम के लिए पहला गोल करते हुए स्कोर को 2-1 कर दिया। इसके बाद स्वीडन ने जबरदस्त खेल दिखाया और मुकाबले को एक तरफा कर दिया। योरकेस ने आसान फिनिश करते हुए स्कोर 3-1 कर दिया। इसके बाद मैटियास स्वानबर्ग ने स्वीडन के लिए चौथा गोल और यासीन अयारी ने आखिरी गोल करके टीम को 5-1 से जीत दिलाई। जबकि 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी ने फीफा विश्व कप का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया है। जर्मनी ने ई ग्रुप के पहले मैच में कुरासाओ के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 7-1 से जीत दर्ज की। जर्मनी की ओर से फेलिक्स नेमचा, निको काई हेवर्ट्स, जमाल मुसियाला, नेथेनियल ब्राउन और डेनिस उन्दाव ने गोल किए। कुरासाओ के लिए लिवानो कोमेंसिया ने शानदार गोल कर टीम के लिए इतिहास रच दिया। यह इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि कुरासाओ क्षेत्र और आबादी दोनों में ही अब तक सबसे छोटा देश है जिसने विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है।
2: Fine town of St. Petersburg. Undav's Paul Havertz is in here. Oh, and that's cute. That's very cute. And it's 7.
1: एक अन्य मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया।
2: From Nilsson Angelo and he's off like a right winger here. Singo, it's a great run and he tucks it inside and Amad Diallo scores. Amad Diallo for Ivory Coast has surely won this game in the 90th minute.
1: विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।

0: कर लेते हैं हॉकी के मैदान की ओर, जहां भारत ने शानदार अंदाज में प्रतियोगिता का आगाज किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप का आगाज जीत के साथ किया। भारत ने मैच में 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए पुल ए के मुकाबले में अमेरिका को 3-2 से हराया। सुनते हैं रोमांचक मुकाबले पर एक रिपोर्ट।
1: हॉकी नेशंस कप में भारतीय टीम की ओर से मुकाबले में दीपिका ने 2, नवनीत कौर ने 1 गोल किया। दीपिका को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अमेरिका ने मैच की शानदार शुरुआत की और एशले सेसा ने 4th मिनट में फील्ड गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। अमेरिका ने महज 3 मिनट बाद ही अपनी बढ़त 2 गुनी कर ली। मेडलिन जिमर ने 7th मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल कर भारत पर शुरुआती दबाव बना दिया। 2 गोल से पीछे चल रही भारतीय टीम ने धीरे धीरे अटैक में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। दूसरे क्वार्टर में उनकी कोशिशें रंग लाई जब ड्रैग फ्लिक स्पेशल

0: फिजिसिस्ट दीपिका ने 17वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को सफलतापूर्वक गोल में बदलकर स्कोर कम किया और भारत को मैच में वापस ला दिया। मोमेंटम भारत के पक्ष में जाता रहा और क्वार्टर के बीच में उन्हें एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका ने 24वें मिनट में फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और पेनल्टी कॉर्नर को सफलतापूर्वक गोल में बदलकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। इसके बाद भारत ने दबाव कायम रखा और हाफ टाइम से पहले शानदार वापसी की। मैच के 28वें मिनट में नवनीत कौर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए भारत को पहली बार मुकाबले में बढ़त दिलाई, जो मैच के अंत तक कायम रही। वहीं दूसरे हाफ में भारत और अमेरिका ने गोल की तलाश में जोरदार मुकाबला किया। दोनों टीमों को मैच के दौरान 6-6 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन बाकी दो क्वार्टर में किसी भी डिफेंस ने कोई और गोल होने नहीं दिया। भारत ने आखिरी स्टेज में अपनी बढ़त बनाए रखी और जीत के साथ 3 पॉइंट्स हासिल किए। इस जीत के बाद भारत 3 पॉइंट्स के साथ पूल ए में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत का अब अगला मुकाबला 16 जून को जापान से होगा, जो पूल ए में इस समय पहले स्थान पर मौजूद है। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कास्ट।
1: और अब बात बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ग्रां प्री उस्तीनाद लाबेम प्रतियोगिता के लिए 12 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। ये प्रतियोगिता चेक गणराज्य में 17 से 21 जून के बीच खेली जाएगी। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: इस 12 सदस्यीय टीम में ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन और मौजूदा एशियन चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट प्रीति पवार जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। भारत 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों में तेजी ला रहा है। भारतीय दल में देश के कई प्रमुख बॉक्सर शामिल हैं, जिनमें कॉमनवेल्थ गेम्स के ज्यादातर वेट कैटेगरी के टॉप रैंक वाले एथलीट्स भी हैं। ये प्रतियोगिता आगामी बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की तैयारियों और कॉम्बिनेशन को परखने तथा यूरोप के प्रतिस्पर्धी माहौल में मजबूत विरोधियों के खिलाफ खेलने का एक अहम मौका है। ग्रैं प्री उस्तीनाद लाबेम यूरोप के सबसे पुराने बॉक्सिंग इवेंट्स में से एक है, जो 5 दशकों से ज्यादा समय से ग्लोबल कैलेंडर का हिस्सा रहा है। इसे वर्ल्ड बॉक्सिंग के नियमों के तहत यूरोपियन बॉक्सिंग गोल्ड टूर्नामेंट के तौर पर आयोजित किया जाएगा। पुरुषों और महिलाओं के 10-10 वेट कैटेगरी में होने वाला ये इवेंट भारतीय बॉक्सरों के लिए एक अहम पैमाना साबित होगा। इस प्रतियोगिता में लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में और प्रीति पवार 54 किलोग्राम महिला टीम की अगुवाई करेंगी, जिसमें साक्षी 51 किलोग्राम, प्रिया 60 किलोग्राम और परवीन 65 किलोग्राम वर्ग में शामिल हैं। पुरुष टीम में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम वर्ग में, सचिन सिवाज 60, आदित्य प्रताप 65, सुमित 70, अंकुश 80, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम वर्ग और नरेंद्र 90 से अधिक किलोग्राम वर्ग में शामिल हैं। स्पोर्ट्स कैन के लिए शक्ति सिंह।
1: भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने आज घोषणा की कि वे 19 जून को होने वाली दोहा डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: डायमंड लीग में भाला फेंक की प्रविष्टियों में नीरज चोपड़ा का नाम शामिल है, जबकि 12 जून को जारी सूची में उनका नाम नहीं था। उन्होंने पिछले साल इसी टूर्नामेंट में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 चैंपियन और पेरिस ओलंपिक 2024 के रजत पदक विजेता 28 वर्षीय चोपड़ा ने 2025 विश्व चैंपियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं लिया है। आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए रविवार को घोषित भारतीय एथलेटिक्स टीम में भी चोपड़ा का नाम सशर्त शामिल किया गया है। उन्हें इसके लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का 82.61 मीटर का क्वालिफिकेशन मार्क हासिल करना होगा। अगर वह ग्लासगो में अगले महीने होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं तो भारत के 3 भाला फेंक खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। रोहित यादव और यशवीर भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 9 के जरिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दोहा डायमंड लीग में मौजूदा विश्व चैंपियन त्रिनिदाद और टोबैगो के केशॉन वालकोट और हाल ही में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का थ्रो फेंकने वाले श्रीलंका के रोमेश तरंगा पथिरागे भाग लेंगे। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात क्रिकेट की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को शानदार अंदाज में प्रतियोगिता की शुरुआत की। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। आइए सुनते हैं इस महामुकाबले पर ये रिपोर्ट।
4: बर्मिंघम के एचबेस्टन में भारतीय महिला टीम ने 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए। टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारत की शुरुआत निराशाजनक रही। भारतीय टीम को महज 18 के स्कोर तक 2 झटके लग गए थे। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के साथ 63 गेंद में 91 रन की साझेदारी करते हुए भारत

0: को मुश्किल परिस्थिति से निकाला। मंधाना 44 गेंद में 68 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंद में 36 रन की सधी हुई पारी खेली। दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष ने 21 गेंद में 45 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। दीप्ति ने नाबाद 12 और ऋचा घोष ने ताबड़तोड़ 34 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट लिए। 171 रन के लक्ष्य के जवाब में मुनीबा अली और गुल फिरोजा की सलामी जोड़ी ने पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद टीम निरंतर अंतराल पर विकेट खोती रही और सिर्फ 106 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेट निकाले, जबकि श्री चरणी ने 3 विकेट लिए। एक विकेट शेफाली शर्मा ने अपने नाम किया। मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच दीप्ति शर्मा ने कहा कि उन्होंने मुकाबले में प्रोसेस पर ध्यान दिया।
1: आई थिंक जब यंग दीप्ति से अभी सीनियर दीप्ति में जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक प्रेजर कंडीशंस एंड ICC टूर्नामेंट्स। जहाँ से मैंने खत्म किया था आई थिंक वहाँ से ही शुरू किया है। सो अच्छा लग रहा है बस कि अपने जो प्रोसेस है उस पे फोकस कर रही हूँ। वही चीज जो प्रैक्टिस में करती हूँ वही मैच में अप्लाई कर रही हूँ। दोस थिंग्स हेल्प मी और बस यही है कि इसे आगे जाना है, रुकना नहीं है और डे बाय डे अच्छा करना है।
0: विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने कहा कि मैच में अहम साझेदारी के लिए रनिंग बिटवीन द विकेट बेहद जरूरी है।
2: स्टार्टिंग में जब मेरा चौका लगा पहला बॉल, तभी मेरा पता चला कि आज मेरा दिन है, क्योंकि जब कट और ऐसा आ जाता है एक अच्छा शॉट तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट मिलता है। रनिंग बिटवीन द विकेट वो सब में हम ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर चौका भी नहीं आ रहा, छक्का नहीं आ रहा है तो हम कैसे भागे, हम जितना पुश कर सकते हैं। आई थिंक वो हमें हेल्प किया है गेम में रहने के लिए। जैसे 19-20 ओवर जैसे हमने बात किया कि अभी ऑल आउट जाना है, क्योंकि जितना स्कोर आएगा रन बोर्ड में उतना हमारे लिए अच्छा है, टीम के लिए, बॉलर्स के लिए हेल्प होगा।
0: इस जीत के साथ ही भारत ने महिला T20 विश्व कप में रनों के अंतर से अपनी 5वीं सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भारत 17 जून को लीड्स में नीदरलैंड से खेलेगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
3: उधर दाम्बुला में ट्राई नेशन एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज में आज रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को हराया। इस मैच का फैसला सुपर ओवर के जरिए किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम 265 रन पर सिमट गई। सूर्यांश ने सर्वाधिक 72 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर 265 रन ही बना सकी। सदीरा समरविक्रमा ने सर्वाधिक 93 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने उतरे श्रीलंका ने 16 रन बनाए, जवाब में भारत 9 रन ही बना सकी। और अब बात एथलेटिक्स की। त्रिवेंद्रम में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में कल भारत की पूजा ने महिलाओं के हाई जंप इवेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। 19 वर्षीय पूजा ने 1.81 मीटर की ऊंचाई के साथ बेहतरीन जीत हासिल की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय

0: लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन

0: मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में

0: ट्रेन चलेगा।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
3: एलएनजी कैरियर दिशा
4: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
2: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology.

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पड़ोसन, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म में किशोर कुमार को। गीत लिखा है राजेंद्र किशन ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: और अब श्रोताओ, इंद्रधनुष कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुषमा श्रेष्ठ को। फिल्म है हम किसी से कम नहीं, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों की जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आँख नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में, नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी।
0: जी अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे ही आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, अपने आपको थॉटलेस हो जाइए
0: जी,
2: सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।
0: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है, और जो बैठने का काम करता है उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, वो इसके बारे में जानना था। जो अभी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है
0: जी,
3: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताएं। नमस्कार जी।
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं जी, बताएं।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
2: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है तो आप हल्दी मेथी सौंठ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहां तक आपने बोला है कि गले में है, तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा जैसे मौसम के बदलते हुए। उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है आपका।
4: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार
4: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा।
1: धन्यवाद रवि जी, और आपका जो प्रश्न है उसमें ज़्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कारगर करता है, ठीक है। और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट।

0: लेके जाना, उंगलियों को दबाना, छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें, क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज़्यादा पीते रहते हैं, कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
1: जी,
0: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है। तो आप इसको करें, आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ होगा। और अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां?
2: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
1: जी,
2: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है। और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो बड़े हंसी की बात आ जाती है
1: सभी के लिए।
2: हाँ, लेकिन जैसे हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
1: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका?
3: जी, मैं सिंगपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ
1: जी,
3: और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे तो बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है?
1: जी बताएं।
2: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
1: जी,
2: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं, तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
1: जी।
2: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
1: जी। कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए?
0: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 ग्लास या 2 ग्लास या 3 ग्लास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है। बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है, पर रात में ब्रश करके सोना है
1: जी,
0: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनरली हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
1: वो
0: उसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं रोटेशन के साथ। हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है। इसके अंदर घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे?
4: जी धन्यवाद, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या किसको कम दिखाई देता है, तो मैं विशेष ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए?
2: हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा है, बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है। और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है। और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना, और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
1: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
2: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना पानी पीने से पहले, तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
1: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
5: हेलो, नमस्कार, मैं मुकेश जी।
1: जी नमस्कार,
5: दोनों विशेषज्ञ मेरा नाम नमस्कार है
1: जी, सवाल पूछिए।
5: हम बड़ा सवाल ये है कि

0: शायद कहीं फोन लाइन में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं? कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
1: जी हाँ बिल्कुल, प्राणायाम है
0: जी।
1: भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से विजय कुमार। विजय जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: मुकेश कुमार जी,
0: जी क्या सवाल है आपका?
2: कुमार जी नमस्ते।
0: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
2: डीजे और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
3: नमस्कार
1: नमस्कार।
2: मेरा पहला सवाल यह है कि हीट बहुत ज्यादा है
0: जी,
2: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरे पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
0: जी
4: जी,
2: और योगा करने से वो ये होगा
3: वेट के लिए? विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें। पहला सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीज़ों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में, अगर सूट करता है, उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफ़ी लाभदायक है। और बैठ करके कटी सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: अनीता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है? क्या दोनों को करना आवश्यक है?
1: ये दोनों योग के ही अंग हैं
0: जी,
1: प्राणायाम और आसन
0: जी।
1: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है, जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजिड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता हूँ, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
0: जी।
1: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है, और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग हैं।
0: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
5: जी धन्यवाद, प्रणाम करते सर
0: जी, बताइए।
5: सर जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
1: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि तो उसके लिए क्या है, आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें, उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया, और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
0: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक

0: थकान दूर करने का कोई योग है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो बड़ी थकान सी होती है।
1: देखिए, आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर 2 घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
0: जी।
1: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ, जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में, जो कंप्यूटर पर बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। 2-3 तरह की अब तो आंखों की दवाइयाँ आ गई हैं। और जहाँ तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, 1 घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातःकाल में यदि थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करेंगे, तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी, आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
0: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए अभी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे
0: प्रधानमंत्री जी। सवाल पूछिए।
2: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
3: धन्यवाद रशीद जी। बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा। और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो। शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिलने की वैसे आंखों में कुछ भी ना लें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज़्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे अनिता जी ने पहले ही बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पर लगाएं, काजल की तरह आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
0: और अनिता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
1: हाँ, उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
0: जी,
1: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और अपना जो ध्यान का मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं
0: जी,
1: तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करें, करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
0: बिल्कुल, करेंगे तो होगा। कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
3: देखिए, डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं, ये पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने, तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है
0: जी।
3: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहाँ जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
0: जी।
3: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज़ भी सुनाई ना दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना, बहुत तेज करने लग जाते हैं,
0: उसका
3: फायदा नहीं होता, नुकसान होता है
0: जी जी जी।
3: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव ये है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है
0: जी।
3: और खाना जो खाया वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसमें मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुखासन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
0: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से, अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। क्या सवाल है आपका?
4: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
0: बहुत अच्छा सवाल,
1: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेट कर पैर जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भाती नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है। तो ये कुछ प्राणायाम है जो उनको करने हैं, और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
3: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उनको बटरफ्लाई रेगुलर करना है। बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
0: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर। धर्मवीर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका।
5: नमस्कार।
0: नमस्कार।
5: धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है इस बारे में। धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
1: घर घर की, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए। जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है, तो मैं वहाँ बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीज़ों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती हैं। प्राणायाम करें, और आसन ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूँगी कि खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है उन पर नियंत्रण करना।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे ज़रूर लाभ होगा। और कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना ज़रूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
0: जी,
3: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। और खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4-5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है, तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता बॉडी के अंदर, बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है बॉडी, एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें ज़्यादा लाभदायक रहेगा।
0: और रायबरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी। रमाशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी।
6: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है
0: जी,
6: और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या है?
0: जी
3: रमाशंकर जी नमस्कार, धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया, ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज़्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत भाता है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जान ही नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज़्यादा लाभ देगा।
0: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित क्या सवाल है आपका।
7: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कुछ ट्रेनर हो गया, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है, जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने देखकर, हम लोगों ने इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या, या फिर या 10 दिन या 1 महीना करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या। जी यही सवाल था
0: जी।
1: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं।

0: जाते हैं। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
0: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें। जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं, वो ज्यादा कुछ कर सकते हैं। और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं। रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं। और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
1: कमल जी, बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
2: जी, बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम। और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो इस विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसको एक्टिवेट करता है भ्रामरी प्राणायाम। के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपस में मिलें और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी क्या करें, जैसे बदल बदल के क्या करें। और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज़्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पे असर होता है। तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
1: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रही हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओ, आइए पहले सुनते हैं गुलाम अली को।
3: बहुत छोटी बहर की ये गजल है, सिर्फ इतना है कि अपनी धुन में रहता हूं, ये इसका वजन है। एक नई चीज देख रहा हूं।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आज जा।
3: और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं फरीदा खानम को।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: और अब श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं सोनू निगम का गाया ये गीत।

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए पहले सुनते हैं मन्नड़े और लता मंगेशकर को फिल्म चोरी चोरी में। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना शंकर जयकिशन की।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: इश्क पर जोर नहीं, आइए सुनते हैं इस फिल्म में। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत एस डी बर्मन का है।
3: मैं जाऊं
4: अपने दिल से पूछो।

0: जय हिंद।
1: पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: और अब श्रोताओ, आइए सुनते हैं गुलजार का लिखा, हेमंत कुमार का संगीतबद्ध फिल्म खामोशी का ये गीत। इस गीत को गाया है हेमंत कुमार ने।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: गाइड, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म में मोहम्मद रफी को। गीत रचना शैलेंद्र की है और संगीत रचना SD बर्मन की।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं

0: दूर जब दिन।
1: और अब श्रोताओ कार्यक्रम के समापन में आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। फिल्म है एन इवनिंग इन पेरिस, गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब थोड़ी देर में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल

0: परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप H में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labor migration, digital technology and defense, following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank.

एफएम बैंड 14.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी